हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर। आज सोमवार है। शख्स

संवत 1948 के आषाढ़ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 6 जुलाई सन 2026 सवेरे के 5:57 होने वाले हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की
1: यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रबन्नन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें

0: 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस एनसीडी और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़ा दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है। विम्बलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियोलिन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 106वीं एकल जीत है। उन्होंने विम्बलडन पुरुष एकल में 105 जीत का रोजर फेडरर का कीर्तिमान भी तोड़ा। इस चैंपियनशिप में केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने ही 120 एकल मैच जीते हैं। वहीं महिला एकल में कैरोलिना मुचोवा ने पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेस्चिकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना।

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये भूमि केवल हमारी जन्मस्थली नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, सभ्यता, स्वाभिमान और असंख्य बलिदानों की अमर गाथा है। जिन वीरों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर हमें स्वतंत्र आकाश में सांस लेने का सौभाग्य प्रदान किया, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का सबसे श्रेष्ठ माध्यम राष्ट्रभक्ति है। आइए मातृभूमि के गौरव, शौर्य और आत्मगौरव को नमन करते हुए एक ओजस्वी देशभक्ति गीत की प्रस्तुति का स्वागत करें।

श्री गणेशाय नमः। सनातन परंपरा में प्रत्येक मंगल कार्य का शुभारंभ विघ्न विनाशक बुद्धि एवं सिद्धि के अधिपति भगवान श्री गणेश के स्मरण से होता है। उनकी कृपा से प्रत्येक बाधा दूर होती है और जीवन में मंगल, सौभाग्य तथा सफलता का प्रवेश होता है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री गणेश का स्मरण करते हुए प्रस्तुत है मनोहारी गणेश वंदना।

नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभूम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। भगवान शिव केवल देवों के देव नहीं, वे करुणा के अथाह सागर, त्याग की परम प्रतिमूर्ति और अनंत करुणामय पिता हैं। वे शमशान की निस्तब्धता में भी जीवन का संदेश देते हैं और कैलाश की दिव्यता में भी अद्भुत सरलता का परिचय कराते हैं। जो समस्त संसार के विष को स्वयं कंठ में धारण कर लेते हैं किंतु अपने भक्तों के जीवन में अमृत बरसाते हैं, जो एक बेलपत्र और निर्मल हृदय से प्रसन्न हो जाते हैं, जो अश्रुओं को आशीर्वाद में और पीड़ा को शक्ति में परिवर्तित कर देते हैं, ऐसे ओघरदानी भोलेनाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम। कहा भी गया है, शिवम शांतम जगन्नाथम लोकानुग्रह कारकम भक्त वत्सल मद्वेतम वंदे देवम उमापतिम। आइए अपनी समस्त चिंताओं, अहंकार और विकारों को महादेव के श्रीचरणों में समर्पित करते हुए भाव विभोर होकर सुनते हैं एक भक्तिमय शिव भजन।

रामो विग्रहवान धर्मः। प्रभु श्री राम केवल एक राजा नहीं बल्कि सत्य, मर्यादा, कर्तव्य और आदर्श जीवन के सर्वोच्च प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें धैर्य, विनम्रता, त्याग और धर्म के पथ पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। आइए प्रभु श्री राम की भक्ति में स्वयं को समर्पित करते हुए एक मधुर राम भजन का रसास्वादन करें।

संत कबीर ने अपने दोहों के माध्यम से मानवता, प्रेम, सत्य और आत्मचिंतन का जो अमूल्य संदेश दिया वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आइए हम भी अपने जीवन में प्रेम, सद्भाव, करुणा और विनम्रता को स्थान दें, क्योंकि यही सच्ची भक्ति का सार है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आज का चिंतन। आज का विषय है आत्मसमर्पण।
1: भारतीय संस्कृति में त्याग और समर्पण को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषियों, मुनियों और महापुरुषों ने ये सिखाया है कि संचय करने में नहीं बल्कि बांटने और समर्पित होने में ही जीवन की सार्थकता है। त्याग का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं को छोड़ना नहीं बल्कि अपने स्वार्थ, अहंकार और संकीर्णता का परित्याग करना है। वही समर्पण का अर्थ है किसी महान उद्देश्य या व्यक्ति के प्रति स्वयं को पूरी तरह सौंप देना। ये कायरता नहीं बल्कि अदम्य साहस का प्रतीक है। महान दार्शनिकों का मानना है कि त्याग के बिना प्राप्ति संभव नहीं है। जब एक विद्यार्थी अपने नींद और सुख सुविधाओं का त्याग करता है तब वो विद्या प्राप्त करता है। यदि समाज में हर कोई केवल अपने बारे में सोचेगा तो संघर्ष पैदा होगा। त्याग ही वो सूत्र है जो लोगों को जोड़कर रखता है। मन से क्रोध, लोभ और मोह का त्याग ही मनुष्य को महामानव बनाता है। समर्पण त्याग से एक कदम आगे की अवस्था है। इसमें मय की भावना समाप्त हो जाती है। जब एक भक्त ईश्वर के प्रति, एक सैनिक देश के प्रति या एक माँ अपनी संतान के प्रति समर्पित होती है तो वहां कोई शर्त नहीं होती। सीमा पर खड़े सैनिक अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं क्योंकि वे राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। उनके लिए स्व से बड़ा देश है। कर्मयोगी वही है जो अपने कार्य को ही पूजा मानकर उसमें डूब जाए। आज के भौतिकतावादी युग में जहां हर तरफ प्रतिस्पर्धा और स्वार्थ का बोलबाला है, त्याग और समर्पण की भावना लगातार कम होती जा रही है। लोग पाने

0: की दौड़ में अपनी शिक्षा, ज्ञान और योग्यता को साझा करना भूल गए हैं। त्याग और समर्पण का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन यही मार्ग शांति और अमरता की ओर ले जाता है। जिस प्रकार एक बीज स्वयं को मिट्टी में समर्पित कर देता है, तभी एक विशाल वृक्ष का जन्म होता है। उसी तरह मनुष्य भी त्याग के माध्यम से ही अपने जीवन को फलदायी बना सकते हैं। आज की पीढ़ी को ये समझने की आवश्यकता है कि सफलता केवल बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आपने समाज के उत्थान में कितना योगदान दिया। यदि हम आज अपनी विलासिता का थोड़ा त्याग करें, तभी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य समर्पित कर पाएंगे। रिश्तों की नींव ही त्याग पर टिकी होती है। एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करना और उनके सुख के लिए अपनी इच्छाओं को गौण रखना ही परिवार को जोड़ता है। हृदय में दूसरों के प्रति करुणा रखना और निस्वार्थ भाव से सेवा करना ही मानवता की सच्ची सेवा है। हमें अपने जीवन में छोटे छोटे त्यागों से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि यही छोटे छोटे कदम एक दिन बड़े परिवर्तन का आधार बनते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। आज का विषय था त्याग और समर्पण। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं खेती की बातें। इसमें आज आप जानेंगे बागवानी उद्यान में मौसम अनुसार समसामयिक कार्यों के बारे में।
4: किसान भाइयों के राम राम। किसान भाइयों, खेती की बात मैं आज अपन बात करांगा कि अपना किसान भाइयों बागवानी की जो फसल है ओ में इना बरसात का मौसम माए टेम का अनुसार समसामयिक कृषि कार्य कौन कौन सा करी सके है, जिससे कि उनके अच्छी उपज मिली सके ने उनकी जो गुणवत्ता रहे वे भी मिली सके। जहाँ की जलवायु अपना हिसाब से रहे, जैसे फल हुआ, सब्जी हुई, फूल, इनकी खेती सारू मौसम जैसे कि बरसात का अनुसार अपना के अलग अलग तरीका से प्रबंध करनो जरूरी होवे। जैसे साग भाजी की बात करा तो साग भाजी में जुलाई का महीना में वर्षा ऋतु की शुरुआत का साथेज कई प्रमुख सब्जियों की बुवाई ने रोपनी करी जावे है। एक सारू जैसे खेत की तैयारी, इसमें अपना किसान भाइयों खेत की तैयारी करी लेवे ओका साथेज, जैसे कि अपनी भिंडी हुई, बैंगन हुई, मिर्ची हुई, अपना आल हुई, कद्दू और खीरा जैसी वर्षाकालीन सब्जियों की खेत की अच्छी तरह से अपना खेत जुताई करी लेनी है और ओका बाद जल निकासी को उचित प्रबंधन करी लेनो है। पौधशाला ने नर्सरी सारू अपन अगर लगानो चाहवा तो इका सारू अपन टमाटर, फूल गोभी ने पत्ता गोभी की बुवाई नर्सरी में करी सका, जिका से कहीं होएगो कि थोड़ा दिन बाद उनकी जो मुख्य खेत है नी ओ में अपन रोपाई करी सका। हाँ, फल उनकी बात करा तो अगर अपना के नवा बाग लगाना हो

0: पौधा ना है जिनमें कि सूखी टहनियाँ होए उखे काटी के अलग करी देवा, पत्तियाँ जो दिख रही पीली पीली उनके हटाई देवा। इन तरीका से अपन उनकी छटाई कटाई करी सका हम। कीट ने रोग नियंत्रण सारू अपना के कई करना है कि बरसात का मौसम में नमी ने उमस घनी हुई जावे तो जिका कारण कहीं हो कि फफूंद जनित रोग और कीट उनको प्रकोप अधिक देखने के मिले है। इक्का सारू इना बरसात का मौसम में जो फफूंद और कीट जनित जो रोग है ओको नियंत्रण करा। पत्तियों फल को जो है नी वे इन्हें बखत सड़ने लगी जावे है तो उनके सड़ने से बचाने सारू कापर ऑक्सी फ्लोराइड या अन्य अनुशंसित फफूंद नाशक को छिड़काव अपनों पे करी देवा। खेत में पानी नहीं भरने देवा, खेत में पानी की निकासी की उचित प्रबंध करी देवा। जल भराव से कहीं हो कि जड़ सड़न की समस्या हुई जावे है। इक्का सारू जरूरी है कि अपन एक को सबको ध्यान रखा ने खास करी ने अपन ने जो बगीचो लगाया है जी में अपन अगर वर्षाकालीन अपन सब्जी ना ले रही हाँ साग भाजी ना ले रही हाँ तो उका सारू अपना के जरूरी है कि अपन खेत की अच्छी तरह से जुताई भी करी लेवा। जुताई करने का बाद अपना के जो भी साग भाजी लगानी है वो लगाने और खास करी ने इना बरसात का मौसम है अपनों जो खेत है उनमें जल निकासी की व्यवस्था अच्छी तरीका से रखा, क्योंकि अगर जल निकासी की व्यवस्था नहीं होगी जल भराव रहेगा तो सड़न लगने को डर रहेगा, मतलब अपना जो पौधो है वो बढ़ ही नहीं पाएगा क्योंकि वो सड़ने लगेगा। इक्का सारू जरूरी है कि अपन जल निकासी की व्यवस्था करा और साथ ही साथ अपना के अगर नया पौधा ना लगाना है जैसे कि अपना आम है अमरूद है नींबू है तो उका सारू अपन बरसात नहीं होए ओका पहले ही गड्ढा ना खोदी ना और उमें जैविक खाद और मिट्टी को मिश्रण भरी ने अपना जो पौधा लगाना है अपना के आम का अमरूद का नींबू का वे लगाई देवा। इना तरीका से अपना किसान भाई होन बागवानी या उद्यानिकी में जो समसामयिक कृषि कार्य है वे करी सके है बरसात का मौसम में। तो अपना किसान भाई होन के आज इतना ही कहना थो, किसान भाई होन राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज आपने जाना बागवानी उद्यान में मौसम अनुसार समसामयिक कार्यों के बारे में। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग। कलाकार हैं रविंद्र साठे।

पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने श्री राम अवतार की कथा सुनाते हुए ब्रह्म के निर्गुण तथा सगुण रूपों की व्याख्या की। जो निर्गुण अर्थात अरूप, अव्यक्त और अर्जन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जिस प्रकार जल और ओले में कोई भेद नहीं, दोनों जल के ही रूप हैं, उसी प्रकार सगुण और निर्गुण भी तत्वतः एक ही हैं। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को समझ पाने में असमर्थ होता है, इसी कारण वो प्रकाश पुंज पुराण पुरुष श्री रामचंद्र पर एक मानव की भांति मोह के आवरण में लिपटे होने का आरोप लगाता है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग। कलाकार थे रविंद्र साठे। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको देते हैं आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी कार्यक्रम विवरण में। सवेरे 7:20 पर आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आज केंद्रित होगा हरियाली महोत्सव पर। इस कार्यक्रम में आज का विषय होगा हरियाली महोत्सव, जीवन का हरित महोत्सव। साथ ही वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर राम रक्षेश जी से बातचीत सुनवाई जाएगी। युवा समाज सेवी हैप्पी गदिया और बलूनी मेहता से बातचीत होगी और ग्रुप कमांडर एनसीसी इंदौर के ब्रिगेडियर संजीव कुमार से सेना द्वारा किए जा रहे पर्यावरण संरक्षण के कार्यों के विषय में बातचीत होगी। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी शिखा साहू। 8:30 सुनिएगा फिल्म संगीत। 9:00 सुनिएगा मराठी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में चर्चा होगी वन महोत्सव पर। ज्योत्सना गदेवाड़ीकर का कविता पाठ सुनवाएंगे। विख्यात बांसुरी वादक सलील दाते से मुलाकात सुनिएगा। साथ ही ज्येष्ठ दिग्दर्शिका विजय मेहता पर बात होगी। शास्त्रीय संगीत का समय रहेगा 9:30 का। अब्दुल सलाम नौशाद का क्लेरियोनेट वादन होगा, राग अहिर भैरव। साथ ही विठल राजपुरा का एकल पखावज वादन भी सुनवाएंगे। सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन का समय रहेगा हमेशा की तरह 10:05 से 11:00 तक। इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता अगर हमसे बात करना चाहते हैं और अपनी पसंद के गीत सुनना चाहते हैं तो हमारे नंबर नोट करें 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड 0731। तो समय

याद रखिएगा सवेरे 10:05 से 11 बजे तक कार्यक्रम MH हॉटलाइन में। युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी होगा शाम 5 बजे। इस कार्यक्रम में आरंभिक चर्चा होगी विश्व जूनोसिस दिवस पर। आज का क्रम कुछ बातें कुछ गीत भी सुनवाए जाएंगे। 5:45 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। संध्या 6 बजे का समय रहेगा NCERT के प्रायोजित कार्यक्रम का। सुगम संगीत में प्रकाश पारनेरकर को सुनवाएंगे। समय रहेगा संध्या 6:30 का। 6:45 पर प्रादेशिक समाचार दर्शन आकाशवाणी भोपाल से रिले होगा। संध्या 7:20 पर ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम सुनिएगा। इस कार्यक्रम में आज की बात होगी, वार्ता सुनवाई जाएगी, घरेलू टिप्स घरेलू व्यंजन जैसे क्रम भी होंगे। रात 8 बजे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले होगा सुर्खियों में। 8:15 पर कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। 9:15 पर चित्रगीत और 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले होगा। 10 बजे श्रोताओं के फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन सुनवाया जाएगा। और 10:30 शास्त्रीय संगीत में अब्दुल सलाम नौशाद का क्लेरियोनेट वादन सुनिएगा राग बागेश्री में। तो श्रोताओं, एक बार फिर हम आपको याद दिला दें कि सवेरे 10:05 से 11 बजे तक आप सुनेंगे MH हॉटलाइन कार्यक्रम। सवेरे 8:30 सुनिएगा फिल्म संगीत और रात 10 बजे सुनिएगा श्रोताओं के फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन भावन। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। सवेरे के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले होंगे, पहले संस्कृत में और उसके बाद हिंदी में। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्यारभ्य इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड देशानां षड् दिवसीय यात्रायै प्रस्थितः। अस्याः त्रिदेशीय यात्रायाः प्रथमे चरणे असौ अद्य इंडोनेशिया देशं प्राप्स्यति। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः इयं चतुर्थ इंडोनेशिया यात्रा वर्तते। अत्रावधेयं यत् स्वयात्रावधौ प्रधानमन्त्री इंडोनेशिया देशस्य नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिना प्रवोवो सुभियान्तो इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तालापं विधास्यति। संधेः प्रगतिमालक्ष्य समीक्षां च करिष्यति। तदीय मुख्याः आधिकारिकाः कार्यक्रमाः जकार्ता नगरे भविष्यन्ति। परं असौ योग्यकर्ता इति कञ्चन ऐतिहासिकं सांस्कृतिकं च नगरम् अपि गमिष्यति। जकार्ता नगरे प्रधानमन्त्री सुविशालं भारतीय प्रवासी समुदायं सम्बोधयिष्यति। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह अद्य नव देहल्याम् आयोजितम् सहकारिता मंत्रालयस्य पंचमं स्थापना दिवस समारोहम् अलंकरिष्यति। मंत्रालयेन ज्ञापितं यत् अयं समारोहः सहकारात् समृद्धिः इति राष्ट्रिय संकल्पनामाधृत्य विधीयते। अस्मिन् मंगल प्रसंगे श्री शाह अनेकासां प्रमुखाभिनव परियोजनानां शिलान्यासं उद्घाटनं च विधास्यति। एतासु योजनासु द्वात्रिंशदधिकद्विशत अन्न संग्रह भण्डारानां लोकार्पणं सहकार वनस्य भूमिपूजनं उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र राज्ययोः ट्रिशु कल्चर इति सुविधायै भूमिपूजनं राष्ट्रिय सहकारी डेटाबेस एनसीडी 3.0 इत्यस्य भौगोलिक चिन्हांकन दूरभाषानुप्रयोगस्य च आरम्भः। जम्मू कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेशे प्रचलन्त्यां वार्षिक श्री अमरनाथजी यात्रायां श्रद्धालूनां महत्सम्मर्धः दृश्यते। यत्र यात्रायाः प्रथमेषु त्रिषु दिनेष्वेव 650,000+ जनाः पवित्र गुहा मन्दिरे समागताः। रविवासरे प्रायः 25,000 भक्तैः बाबा बर्फानी इत्यस्य दिव्य दर्शनं विहितम्। इतः पूर्वं द्वितीय दिने प्रायः 20,000 जनाः उद्घाटन दिवसे च 12,000+ तीर्थयात्रिणः भगवतः दर्शनं लब्धवन्तः। अनेन सहैव जम्मू कश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोज सिन्हा श्वः नुवान पहलगाम इति आधार शिबिरस्य निरीक्षणं विधास्यति। सममेव ह्यः तत्र तीर्थयात्रिभ्यः कल्पितानां व्यवस्थानां प्रबन्धानां च सूक्ष्म पुनरीक्षणं तेन कृतम्। देशस्य विशालेषु भूभागेषु प्रावृत् स्थितिः अत्यधिकं तीव्रीभूता सञ्जाता, येन हि अतिवृष्टिः मेघगर्जनं विद्युत्पातः प्रचण्ड चक्रवात वायुः च प्रचलति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्षु दिनेषु गुजरात राज्यस्य कतिपय भागेषु हरियाणा पंजाब राजस्थानेषु च प्रावृत् स्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। विभागेनाद्य छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश राजस्थान कर्नाटक उत्तराखंड राज्येषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतम्। अपरतः आगामिषु द्वित्रिदिनेषु राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां उत्तर प्रदेशे पंजाबे चंडीगढ़ क्षेत्रे विकीर्ण रूपेण वृष्टिः संभाव्यते। विम्बल्डन टेनिस प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ सर्बिया देशस्य लब्ध प्रतिष्ठेन क्रीडकेन नोवाक जोकोविचेन रूस देशस्य रोमन सफ्यूलिनं पराजित्य पुरुषेकल क्रीडायाः प्रागुपान्त्य चक्रे स्थानं सुरक्षितम्। इतः परं असौ फेलिक्स नगरे उत डेविवोचिस इत्यनेन सह क्रीडां करिष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रम्बनन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। जकार्ता में प्रधानमंत्री भारतवंशियों को भी संबोधित करेंगे। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि सत्र में सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य हितधारक उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की

0: परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस एनसीडी और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ भी शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास को बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालैंड ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़त दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। ब्राजील की हार के बाद नेमार जूनियर ने संन्यास की घोषणा कर दी। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे अब तीसरी टीम है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं।
2: अरे मौसा जी जल्दी चलो, अरे गाड़ी आ गई है, अरे शादी में चल रहा है ना?
3: अरे मैं नहीं जाता कहीं शादी में, मैं तो सुन रहा हूँ मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर। तुम जाओ शादी में जाना हो तो।
4: पार्टी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
5: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
6: बड़े अच्छे लगते हैं
7: क्या
6: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
7: और
5: आकाशवाणी इंदौर। सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
8: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
9: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
8: तो सुनते रहिए मालवा की शान
10: आकाशवाणी इंदौर।
9: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
11: GST काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। HS कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए

0: ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट्स सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती GST दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्म गीत,
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
3: GST से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई GST नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह GST छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
4: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
5: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
4: तो सुनते रहिए मालवा की शान
6: आकाशवाणी इंदौर।
5: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
7: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आकाशवाणी इंदौर आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर और गूगल पर आकाशवाणी इंदौर लाइव सर्च करें तो भी सुन सकते हैं। सवेरे के 7:10 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से रिले होंगे।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा आज से शुरू। 40 वर्षों बाद हो चुकी न्यूजीलैंड की पहली द्विपक्षीय यात्रा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में करेंगे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिवपुरी में रखी अदाणी डिफेंस फैक्ट्री की आधारशिला। रक्षा क्षेत्र में मिलेगी मजबूती। और प्रदेश में मॉनसून की जोरदार बारिश जारी। सागर, दमोह सहित 9 जिलों में आज अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में वे इंडोनेशिया पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर भी जाएंगे। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड में होंगे, जो पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। तीनों देशों में प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ.

0: मोहन यादव आज भोपाल के सतगढ़ी में 173 एकड़ में विकसित होने वाले डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन करेंगे। इस परियोजना में 10,000 क्षमता वाला विश्व स्तरीय कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर भी विकसित किया जाएगा। कार्यक्रम में देश प्रदेश के करीब 200 से अधिक उद्योगपति और निवेशक शामिल होंगे। इस परियोजना से 15,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल शिवपुरी जिले के पाली में लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ग्रुप के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा,
1: मध्यप्रदेश में निवेश का एक नया मार्ग खुला है। ग्वालियर अंचल में हमारा डिफेंस कॉरिडोर का पहला प्रोजेक्ट लगभग 2,500 करोड़ से 3,000 करोड़ का, जहां मिसाइलें बनेगी, मिसाइल से लगा करके सारे प्रकार के आर्म्स की जो आवश्यकता है वो सारे विकास के साथ साथ यहां पर रोजगार भी मिलेगा। साथ साथ 211 करोड़ के अलग अलग विकास कार्यो का लोकार्पण भूमि पूजन भी यही सम्पन्न हुआ। सब मिला के 4-5 हजार करोड़ के काम यहाँ लगातार प्रारंभ होने की स्थिति में आए हैं।
0: वहीं श्री सिंधिया ने कहा कि यह प्लांट भारत की रक्षा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगा और हजारों युवाओं को रोजगार देगा। इस मौके पर शिवपुरी जिले के लिए करीब 211 करोड़ रुपए की लागत के 38 विकास कार्यों का ई लोकार्पण और ई भूमि पूजन भी किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत जी राम जी योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने योजना के संचालन के लिए 25,863 करोड़ रुपए की पहली किश्त भी जारी की। उन्होंने बताया कि मनरेगा से इस योजना में ट्रांजिशन पूरी तरह सहज और सुचारू रहा है, अब तक कोई तकनीकी शिकायत नहीं मिली है। श्री चौहान ने कहा,
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए इसमें 2 हिंदू सदस्यों को भी शामिल किया है। अधिकारियों के अनुसार वक्फ अधिनियम संशोधित 2025 के तहत गठित ये देश का पहला राज्य स्तरीय वक्फ बोर्ड है जिसमें हिंदू सदस्य शामिल किए गए हैं। इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना जारी कर सनवर पटेल को 10 सदस्यीय बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव को हिंदू सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश नया अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेहनत, आधुनिक तकनीक और सामूहिक प्रयास से खेती की तस्वीर कैसे बदल सकती है, इसकी मिसाल खंडवा जिले का जावर गांव बन रहा है। यहां किसान उत्पादक संगठन यानी FPO के माध्यम से उगाया जा रहा खीरा और टमाटर अब दुबई तक निर्यात हो रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं खंडवा से हमारे संवाददाता हीरा लाल लोंगरे।
4: खंडवा जिले के जावर गांव के किसान अश्विन बादल सिंह रावले ने 4 वर्ष पहले मात्र 2 एकड़ में खीरा और टमाटर की खेती शुरू की थी। बेहतर उत्पादन मिलने पर उन्होंने गांव के किसानों को जोड़कर FPO का गठन किया। आज इस संगठन से 160 किसान जुड़े हैं, जो करीब 400 एकड़ में टमाटर, खीरा, करेला, लौकी और नींबू जैसी फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। इनकी उपज देश के बड़े बाजारों के साथ साथ दुबई तक पहुँच रही है।
5: मैं अश्विन सावले, ग्राम जावर, जिला खंडवा से हूँ। सोलर ड्राई के माध्यम से सब्जियों का मूल्य संवर्धन कर किसानों की आय बढ़ा रहे हैं। किसान संगठित होकर वैज्ञानिक तरीके से खेती करे तो बेहतर आमदनी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँच सकते हो आप।
4: उद्यानिकी विभाग के सहयोग से गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के कारण जावर का FPO आज क्षेत्र के किसानों के लिए एक सफल मॉडल बन चुका है। उद्यानिकी विभाग के उप संचालक श्री अजय चौहान ने बताया कि
6: शासन का हमेशा से ये प्रयास रहता है कि

0: किसान की आय में वृद्धि हो, इसी तारतम्य में उद्यानिकी विभाग द्वारा कृषकों को उद्यानिकी की ओर प्रेरित किया जा रहा है। किसान की आय परंपरागत खेती की तुलना में उद्यानिकी फसलों से अधिक प्राप्त होती है।
1: आकाशवाणी समाचार के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे।
2: प्रदेश पुलिस की राज्यव्यापी सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत प्रदेश भर में साइबर जागरूकता गतिविधियां जारी हैं। कल इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने 6000 से अधिक नागरिकों के साथ साइबर जागरूकता मैराथन आयोजित की। भोपाल में आरडी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में करीब 1500 छात्र छात्राओं को डिजिटल अरेस्ट और फिशिंग जैसे साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए गए। वहीं खंडवा, राजगढ़, टीकमगढ़ सहित कई जिलों में स्कूलों, पंचायतों और सरकारी कार्यालयों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। भोपाल के शौर्य स्मारक में कल अंतर्राष्ट्रीय अनघ मंच द्वारा आदिवासी क्रांतिवीर स्मृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। देश मेरे तुम भूल न जाना वन वीरों का बलिदान थीम पर आधारित यह कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई में हजारों आदिवासी क्रांतिकारियों के बलिदान को इस महोत्सव के जरिए याद किया जाएगा। कार्यक्रम में देश के 50 से ज्यादा वक्ता काव्य गोष्ठी के माध्यम से आदिवासी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री दुर्गादास उइके ने कल बैतूल में आयोजित स्कूल बैग विद एजुकेशनल डेस्क वितरण कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। मंत्री उइके ने कहा कि डेस्क युक्त स्कूल बैग बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी और नवाचारपूर्ण पहल है, ताकि बच्चे कहीं भी सुविधापूर्वक बैठकर अध्ययन कर सकें। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून जमकर बरस रहा है। अब तक औसत 6.4 इंच पानी गिर चुका है। मौसम विभाग ने आज सागर, दमोह, बैतूल सहित 9 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि रतलाम, उज्जैन सहित कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिले को वर्ष 2027 तक पूर्ण साक्षर बनाने के लक्ष्य को लेकर डायट कल्याणपुरा में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अमृत 2.0 योजना के तहत सांसद रोडमल नागर ने कल आगरमालवा में पौधरोपण की शुरुआत की। भोपाल शहर के जहांगीराबाद स्थित बापू कॉलोनी से 70 श्रद्धालुओं का एक जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। नर्मदापुरम जिला प्रशासन ने प्रोजेक्ट दामिनी की शुरुआत की है, जिसके तहत जिले के प्रत्येक गांव के घरों तक आकाशीय बिजली से बचाव का संदेश पहुंचाया जाएगा। खंडवा में मानसून अवधि के दौरान प्रभावी आपदा प्रबंधन हेतु आज से 12 जुलाई तक 7 दिवसीय सिविल डिफेंस वॉलेंटियर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। डिंडौरी में जनजाति कल्याण केन्द्र महाकौशल बरगांव के केशव सभागार में करियर गाइडेंस कार्यशाला का आयोजन किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर रिकॉर्ड पहली बार महिला T20 विश्व कप का खिताब जीता। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर, प्रस्तुतकर्ता शिखा साहू।

0: गुड मॉर्निंग इंदौर। जी हाँ श्रोताओं, आपके इस मनपसंद कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर को लेकर आ गई हूँ मैं आपकी अपनी दोस्त शिखा। तो स्वीकार कीजिए इस सुनहरी सुबह में मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: गुड मॉर्निंग इंदौर।
0: श्रोताओं, सुबह केवल एक नया दिन नहीं होता। जब पहली किरण पेड़ों की पत्तियों पर ठहरती है, उसकी बूंदे मोतियों से चमकती है, पक्षियों का कलरव वातावरण में संगीत घोलता है, तब लगता है मानो धरती स्वयं हमें जीवन का सबसे सरल और गहरा पाठ पढ़ा रही है। प्रकृति से जुड़कर ही श्रोताओं जीवन की असली ताजगी मिलती है। श्रोताओं, इन दिनों इंदौर पर बादल कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। जी हाँ, खूब बारिश हो रही है। पर आपको पता है बारिश क्यों होती है? जी हाँ श्रोताओं, बारिश इसलिए होती है ताकि उन पेड़ों को भी पानी मिल सके जिन्हें कोई पानी देने नहीं जाता। श्रोताओं, प्रकृति हर किसी का ख्याल रखती है, हर किसी के लिए दोनों हाथों से अपनी नेमतें लुटाती है। श्रोताओं, आज सुबह की एक बड़ी खूबसूरत बात आपको बताती हूँ। आज सुबह सड़क किनारे एक छोटा सा नीम का पौधा दिखा, उस पर दो चिड़िया बैठी थी। मेरी गाड़ी तो आगे बढ़ गई लेकिन मन वही ठहर गया। मैं सोचने लगी कि यह पौधा किसने लगाया होगा, शायद उसे मालूम भी ना हो कि आज इसकी नन्ही सी डाल पर दो परिंदों ने सुबह सुबह अपना पहला गीत गाया है। कुछ वर्षों बाद जब श्रोताओं यही पौधा किसी राहगीर को तपती दोपहर में छांव देगा, कोई बच्चा इसकी डाल पर झूला डालने का सपना देखेगा, कोई थका हुआ मजदूर दो पल इसकी छाया में बैठकर सुकून की सांस लेगा, तब शायद वह व्यक्ति जिसने इसे लगाया था वहां होगा भी नहीं। इसीलिए तो कहते हैं श्रोताओं कि पेड़ हमें निस्वार्थ प्रेम का सबसे सुंदर अर्थ सिखाते हैं। वो बिना नाम पूछे छाया देते हैं, बिना किसी अपेक्षा के प्राणवायु देते हैं और बिना कोई हिसाब रखे पूरी उम्र देते ही रहते हैं। शायद इसलिए हमारे यहाँ पेड़ लगाना केवल पर्यावरण का काम नहीं माना गया बल्कि बहुत पुण्य का काम माना गया है, क्योंकि एक पेड़ केवल धरती को हरा नहीं करता, वह इंसान के भीतर एक उम्मीद जगाता है। जी हाँ श्रोताओं, इन दिनों पूरा देश पूरा प्रदेश हरियाली महोत्सव मना रहा है, पौधे लगाए जा रहे हैं, हरियाली का संकल्प लिया जा रहा है। लेकिन आज सुबह उस छोटे से नीम ने एक बात मुझे सिखा दी कि पेड़ लगाना आसान है, पेड़ बनाना कठिन है। एक पौधे को पानी चाहिए, थोड़ी सी मिट्टी चाहिए, थोड़ा सा संरक्षण चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए अपनापन। तो आज गुड मॉर्निंग इंदौर में हम बात करेंगे केवल पौधे लगाने की नहीं बल्कि उन्हें सहेजने संवारने और जीवन भर उनका साथ निभाने की। आइए इस खूबसूरत सुबह की शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जिसमें प्रकृति की अनुपम छटा का अद्भुत चित्रण है। तो आगे की बातें इस गाने के बाद।

0: श्रोताओं, इंदौर के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि आज बहुत से युवा पर्यावरण को सहेजने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये केवल पौधे लगाने का संदेश नहीं देते बल्कि उन्हें प्रकृति से भावनात्मक रूप से जोड़ने का काम भी करते हैं। और इसी कड़ी में अब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं हैप्पी गादिया और ब्लूमी मेहता। तो आपको बता दूं श्रोताओं कि ये दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये काम करते हैं, इंदौर को हरा भरा बनाने का ये बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं। तो आप दोनों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: नमस्ते।
2: नमस्ते।
0: तो हैप्पी जी, सबसे पहले आप बताइए कि इस इनिशिएटिव के पीछे क्या सोच रही?
2: जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा विकास हो रहा है इंदौर में, मतलब इंदौर सिर्फ कॉन्क्रीट से नहीं बना है, इंदौर में एक भावना है और हरियाली धीरे धीरे खत्म हो रही है। इंदौर जैसे स्वच्छता के लिए जाना जाता है, हम चाहते हैं स्वच्छ के साथ साथ वो हरियाली पूर्वक भी बने।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी सोच है। ब्लूमी, आप किस सोच के साथ आज इंदौर को हरा भरा बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं?
1: तो मैं 4 साल से इस प्रयास में लगी हुई हूँ। हम हर साल कोई ना कोई नया इवेंट करते हैं और हम पिछले 4 साल से यही देख रहे हैं

0: लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि बस जो विकास हो रहा है उसके मज़े ले और हमें हरियाली के लिए कुछ भी नहीं करना है। पर अब वो समय आ चुका है कि हमें हमारे हरियाली पेड़ पौधों के लिए भी काम करना बहुत ज़रूरी हो गया है।
1: तो आप किस तरह का काम करती हैं?
0: तो सबसे पहले तो जैसे ही बारिश का मौसम आ जाता है, हम घर में जितने भी फ्रूट्स खाते हैं तो उसका हम सीड बॉल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हमारी कम्युनिटी में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब इसमें कार्यबद्ध हो जाते हैं। उसके बाद में हम जितना घर में सीड बॉल बना पाते हैं उतना घर में, बाकी बाहर से खरीद कर फिर हम सीड बॉल के टूवर्ड्स जाते हैं कि हम जितने सीड बॉल दूर दूर तक फेंक सके उतना करें। और उसके साथ साथ ही सीड बॉल के साथ में हम अलग अलग जो गार्डन्स हैं नगर निगम के, तो हम उनमें जुड़ जाते हैं, हम कैसे उनको और सुंदर बनाएं, उनको कितना हरा बना सकते हैं, तो हम वो करने लग जाते हैं।
1: अच्छा, तो आप नगर निगम के साथ भी इस काम में जुड़ा हुआ है आपका ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, आप बता रही हैं कि सीड बॉल्स आप लोग बनाते हैं, तो ये किस तरह से बनते हैं और इसको बनाने की तैयारियां आप कितने दिन पहले से शुरू कर देते?
0: तो सीड बॉल बनाना हम लोगों को ऐसा दिखाते हैं कि सीड बॉल बनाना बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो वैसे हम लोगों को जोड़ते हैं और उसमें अलग अलग सीड्स हम पहले इकट्ठा कर लेते हैं, वो मार्केट से खरीदना पड़ते हैं, और जो हमारे पास रहते हैं जैसे अगर अपनी अपनी आम की गुठली हो गई, अपना जामुन का बीज हो गया, तो उसे लेकर हम बैठ जाते हैं, उसको पूरा पानी से साफ कर लो सबसे पहले तो, और उसके बाद में थोड़ी गीली मिट्टी, एकदम सूखी नहीं, थोड़ी सी गीली मिट्टी में आप हल्का सा एक छोटा सा, मतलब आप समझ सकते हैं ना, अपनी छोटी उंगली जितना आप थोड़ा सा आप मिट्टी लीजिए, उसके अंदर सीड डालिए और उसको एक छोटी सी बॉल बना लीजिए और उसको धूप में सुखा दीजिए, और जैसे ही वो सूख जाती है फिर आप सीड बॉल अलग अलग जगह पर फेंकने के लिए निकल जाइए।
1: क्या बात है, मतलब आप सभी दोस्त इकट्ठे होते हैं और जो ढेर सारे सीड बॉल्स आपने बनाए हैं उनको लेकर जाते हैं और शहर के आसपास ही उसको बिखरा कर आते हैं।
0: जी,
1: बहुत ही मजेदार काम आप लोग कर रहे हैं। हैप्पी जी, सीड्स तो बिखरा दिए, पौधे भी निकल आए और वो पेड़ भी बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या, उनकी देखभाल का क्या करते हैं आप लोग?
2: हम लोग वृक्षारोपण करते हैं, तो सिर्फ वृक्ष लगाने का काम नहीं होता है, वृक्ष को एक छोटे शिशु की तरह ध्यान रखना होता है, उसका उसका पूरा केयर करना, ऐसा नहीं कि सिर्फ वृक्ष लगा दिया हमने वो होता रहेगा, उसकी देखभाल करना।
1: वाकई ये आज सबसे बड़ी समस्या है कि लोग पौधे तो लगा देते हैं, वृक्षारोपण तो कर देते हैं, लेकिन उसकी सही देखभाल नहीं कर पाते, तो इस सोच को हम कैसे बदल सकते हैं ब्लूमी?
0: इस सोच को सिर्फ एक तरीके से बदला जाता है जो हम हमारी कम्युनिटी में करते हैं, कि जैसे ही हमने जहाँ पर प्लांटेशन कर दिया तो हम कहते हैं, हम जैसे ही वृक्ष थोड़ा बड़ा होने लगता है तो हम उसमें ना बर्ड हाउसेस लगाना शुरू कर देते हैं। तो उस तरीके से कैसा होता है, लोग बार बार जो हमने वृक्ष लगाया है उसको जाकर देखने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले ना आपको लोगों को वो परिवर्तन दिखाना पड़ता है कि आपने जब कोई पौधा लगाया है तो उसके बाद वहां पर क्या इम्पैक्ट आया है, क्या परिवर्तन आया है, वो जब लोग देखते हैं, हम रील्स के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू जब ये करने की कोशिश करते हैं, तो लोगों को लगता है कि नहीं यार, अगर हमने वृक्ष लगाया है तो उसको संभालना भी हमारी जिम्मेदारी होती है।
1: जी, आप दोनों काफी यंग हैं और इतने अच्छे, इतने शुभ काम से आप जुड़े हुए हैं। आज आपने इंदौर को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया है, लोगों को किस तरह से जोड़ते हैं इन सब चीजों से?
0: लोगों को हमें ना जो मजेदार पार्ट होता है ना वो बताना पड़ता है, कि जैसे मैंने आपको बोला सीड बॉल का, तो फिर आपको राइड एंजॉय करने को मिलेगा, आपको सीड बॉल बनाने को मिलेगा, आपको नई कम्युनिटी मिलेगी, आपको नए दोस्त मिलेंगे, तो उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो हमें अट्रैक्ट वैसे करना पड़ता है, बट उसके बाद जब वो काम करते हैं, वो काम करते हुए देखते हैं ना, तो उनके अंदर वो एक भावना पैदा हो जाती है कि नहीं, हमें ये करना है, हमारी शहर के लिए करना है, हमारे एनवायरमेंट, हमारे प्रकृति के लिए हमें करना है। तो वो शुरू तो वैसे ही होता है, उनको कुछ मजेदार चीज दिखाकर हमें से ललचाना पड़ता है और फिर उनसे, फिर वो अपने आप ही प्रयासों में जुड़ जाते हैं, कैसे हम ये अच्छा काम कर सकते हैं।
1: क्या बात है, आप एक से दो हुए और दो से पचास और फिर पचास से कई हजारों में आज ये संख्या बढ़ती चली जा रही है, और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें इस वक्त बहुत सारे हमारे श्रोता सुन रहे हैं, और निश्चित ही ये जो आपने सीड बॉल्स का एक बड़ा प्यारा सा आइडिया दिया है ना, तो वो भी इसे बनाएंगे, और इसे बनाना बहुत कठिन नहीं है श्रोताओं, इसे बनाइए, जो भी फल गुठली आपके घर में होती है उसका बीज होता है उसको मिट्टी में लपेट कर आप एक प्यारा सा सीड बॉल बनाइए, अपने दोस्तों के साथ जाइए, आउटिंग का मजा लीजिए, एक पिकनिक भी हो जाएगी और साथ में पौधारोपण भी हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि समय समय पर जाकर उसका ध्यान रखना है कि उस पौधे की क्या स्थिति है, क्या वो पनपा है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप दोनों, बहुत अच्छा लगा मुझे आप दोनों से बात करके। अभी मैं यहाँ पर जानना चाहती हूँ आपकी पसंद का कोई बड़ा प्यारा सा गाना, जो आज हम सुबह सुबह हमारे श्रोताओं को सुनवाए और उनकी इस खूबसूरत सुबह को और खूबसूरत बनाए।
2: आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे

0: के तले,
1: जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले।
2: क्या बात है, बहुत खूबसूरत गीत, और निश्चित ही ये गाना हमारे श्रोताओं को भी बहुत पसंद आएगा। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हैप्पी और ब्लूमी। एक बार चलिए सभी को साथ में मिलके कहते हैं
3: गुड मॉर्निंग।

0: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर अपनी दोस्त शिखा के साथ। और श्रोताओ, बढ़ता प्रदूषण, घटते जंगल, बदलता मौसम और जल संकट, ये केवल समाचारों की सुर्खियां नहीं बल्कि आज हमारे भविष्य के सामने खड़े बड़े गंभीर प्रश्न हैं। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने और यह समझने के लिए कि हम सब मिलकर पर्यावरण संरक्षण में अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं, आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने प्रकृति को केवल पढ़ा नहीं बल्कि उसे जिया है। तो आकाशवाणी के कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर में अब मैं स्वागत करने जा रही हूँ प्रोफेसर डॉक्टर राम रक्षेश जी का। आपको बता दूं श्रोताओं कि डॉक्टर राम वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक हैं और पर्यावरण, प्रकृति और पेड़ पौधों से लगाव की वजह से इन्हें यूनाइटेड नेशन ने धरती पुत्र के नाम से सम्मानित किया है। तो ऐसे धरती पुत्र डॉक्टर राम का हम स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर में। सर नमस्कार।
1: नमस्कार शिखा जी।
0: सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये हरियाली, हरे भरे पेड़ पौधों से आपके इतने ज्यादा लगाव की वजह क्या है?
1: तो सबसे पहले मैं आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं। आप सभी मेरी बातों को और शिखा जी की बातों को ध्यान से सुने और इस रास्ते पे चलने का थोड़ा सा प्रयास करें, आपको बहुत आनंद आएगा। तो थोड़ी सी अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो मैं जहां पैदा हुआ, यहां से 6 घंटे का रास्ता है। यहां से जब आप बॉम्बे जाते हैं तो एक बड़ौदा करके एक सिटी आती है
0: जी।
1: तो माय फादर वाज सर्विंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जहां मेरा जन्म हुआ वहां 25,000 पौधे हैं
0: जी,
1: आम के पेड़ है। तो मैं आम के पेड़ों पे चढ़ के उनसे आम तोड़ करके, तो जब मुझे घर में खाना नहीं मिलता था या घर में खाना अच्छा नहीं लगता था तो इन पेड़ों ने मुझे खाना खिलाया
0: जी।
1: इस तरह से मैं पेड़ों से कनेक्ट हुआ। तो मैं जहां भी जाता हूं यही कोशिश करता हूं कि उस इलाके में पेड़ पौधे ज्यादा हो। उसके बाद जब मैं इंदौर में पापा का यहाँ पे ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पे कृषि मंत्रालय के पास में, तब भी यहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे। मालवा मीर गहन गंभीर, पक पक रोटी डग डग नीर। नौलखा को नौलखा इसलिए कहा जाता था कि यहाँ पे इंदौर निवासियों ने आम की गुठलियों से 9,00,000 पेड़ लगाए थे। कंचन बाग, आपके जितने भी बाग बगीचे हैं, ये सब बाग बगीचे इंदौर की शान हुआ करते थे और इंदौर की प्राचीन सभ्यता पेड़ पौधों के संरक्षण में, पंछियों के घोंसलों में। यहाँ पे आप रिगल के पास आज भी जाइए, आपको 50-60 हजार तोते मिल जाएंगे। वो तोतों को रहने का घर है वो
0: जी।
1: पेड़ पेड़ नहीं है, 100 साल का पेड़ 10,00,000 जीव जंतुओं को संरक्षण देता है, उनका घर है, उसको संभाल के रखना चाहिए
0: जी। सर वाकई हमें संभाल के रखना चाहिए। तो सर, हम आम लोगों को इस पर्यावरण संरक्षण की मुहिम से कैसे जोड़ सकते हैं?
1: देखिए, ये जो गैस के नाम पे जो हम अभी दोहन कर रहे हैं प्रकृति का, पहले आज से 10 साल के पहले अर्थ ओवरशूट डे होता था, यानी

0: घर कोई तोड़ने आता है तो हमारे पास एग्जिबिट 5 है, हम तुरंत लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं कि भाई हमारा राइट टू लिव है एंड हमारा एड्रेस जो है उसको रहने दो, तो आपका स्टे ऑर्डर से वो बुलडोजर आपका रुक जाता है। पंछियों को आप वो भी नहीं दे रहे हो ताकि उनको कम्युनिकेट तो करो कि भाई हम तुम्हारा घर काटने आ रहे हैं, तुम अपनी घोंसले दूसरी जगह पे करो। अभी खंडवा रोड बना है, 1,90,000 पेड़ कटे हैं। मैंने खुद ने जाकर के चोरल में 172 छोटे छोटे 5-6-7 दिन के तोतों के बच्चों को मैंने देखा हुआ है, चिलचिलाती धूप में तड़पते हुए। कुछ को तो लेके आ गया, कुछ सर्वाइव कर गए, कुछ नहीं कर पाए।
1: जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम विकास की राह पे जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं साथ ही हम प्रकृति का उतना हनन कर रहे हैं। चूंकि आज आप हैं और आपने समस्या को बहुत नजदीक से देखा है, उसको समझा है और उसे सुधारने, उसे बदलने की दिशा में आप काम कर रहे हैं, तो मैं कुछ ऐसी छोटी छोटी आदतें अगर हम सब में बदलना चाहें तो वो क्या हो सकती हैं जिससे हमारा जो पर्यावरण है, हमारे पेड़ पौधे हैं, वो सहज।
0: देखो, दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं, मेरा एक बहुत फेमस डायलॉग है, हम सबके हाथ में 8 उंगलियां हैं, 2 अंगूठे हैं, तो हमें पेड़ पौधे, पर्यावरण को, अपनी सुख शांति समृद्धि को अंगूठे नहीं दिखाने चाहिए। अपनी उंगलियों का साथ मिला करके 2 फलों के, 2 फूलों के, 2 औषधियों के, 2 वनों के, 2 सब्जियों के पेड़ लगाने।
1: जी,
0: मैं ये सपना देख रहा हूं बहुत सालों से कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 हो गया, इतने साल हो गए, तो उसके साथ साथ मतलब जो कचरा डाल रहा है, जो प्लास्टिक बॉटल रैपर, कूड़ा कचरा, बीमारी, बेरोजगारी फैला रहा है, वो इंदौर का निवासी नहीं हो सकता। ठीक है, ये अभी नगर निगम का प्रकल्प चला हुआ है, मैं पुष्यमित्र भार्गव जी के साथ था, उन्होंने कहा कि बस आई थी, बस जो है उसमें 1 पन्नी फेंकी, 2 पन्नी फेंकी, 3 पन्नी फेंकी, तो उन्होंने बताया कि वो अपनी गाड़ी लेकर के, मेयर की गाड़ी लेकर के उस बस के पीछे गए, उस बस को रोका और उनको पूछा आप कहां से आए हो, तो उनको शांति हुई कि भाई मेरे इंदौर के बच्चे ऐसा गंदगी नहीं फैला रहे। हम आम तौर पे जाते हैं मार्केट में, एक नारियल का पानी पी लिया, नारियल का पानी आपको 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए में मिल जाता है। मैंने आफूस का एक बॉक्स लिया कहीं भी किसी भी दुकान से, घर में ला करके उस आफूस का आनंद लिया। अब उसके बाद वो जो गुटली बची है और जो नारियल का खोखा है उसको हम डस्टबिन में डाल देते हैं। अब उसको दोनों को डस्टबिन से नहीं डालना है, उस नारियल के खोखे में पीछे 3-4 होल कर दो, उसमें वर्मी कंपोस्ट डालो, कोकोपीट डालो और उसमें आम की गुटली को अंदर फिक्स कर दो। उससे जो ऊपर से बारिश गिरेगी उसमें से आपका 3 महीने में 1 फीट लंबा आम का पौधा तैयार हो जाएगा। एक पैसा नहीं लगा आपका, क्योंकि आपने पैसे तो नारियल पानी को और को खरीद के दे दिए। अब उसका जो वेस्ट है वो आपको जितने 1,500 में, 2,500 में, 3,000 में आम खरीद के लेके आए हैं, वो आम आपको 10 साल के बाद में उसको फ्री में मिलेंगे आपको।
1: जी,
0: इसी तरह से बोला था मैंने, मालवा मीर गहन गंभीर, पग पग रोटी डग डग नीर, यानी मालवा में रहने वाला हर निवासी इतना गंभीर सोच वाला है कि वो बगैर पैसों के भी पेड़ लगा सकता है। इंदौर का एक निवासी 50 लाख लोग है, एक निवासी एक आम की गुटली या जामुन की गुटली या चीकू की गुटली और उसके साथ में नारियल का खोखा, ये दोनों आपको फ्री में अवेलेबल है, कोई पैसा नहीं लेगा।
1: जी, और इतने में मुझे लगता है बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा,
0: बहुत बड़ा।
1: तो बहुत अच्छा लगा मुझे डॉक्टर राम आपसे बात करके, और निश्चित ही आप एक ऐसी समस्या पे काम कर रहे हैं जिस पर काम किया जाना चाहिए और बहुत बड़े स्तर पर किया जाना चाहिए। तो मैं चलते चलते आपसे जानना चाहूंगी एक बहुत प्यारा सा कोई संदेश जो आप हमारे श्रोताओं को दें।
0: देखिए, मैं इंदौर से एनसीसी से, मैंने 1 MPA स्क्वाड्रन से मैंने फ्लाइंग किया, यहां से मुझे स्कॉलरशिप मिला था और मुझे निशुल्क रूप से हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग मिली। तो मैं जब हवाई जहाज उड़ाता था तो मुझे नीचे पेड़ों का झुंड, जैसे आप राला मंडल चले जाइए या तो जहां जहां पेड़ रहते हैं उसको देखना बड़ा प्यारा लगता है ऊपर से हवाई जहाज से। जहां भी ऐसा बिल्डिंग्स होगी वहां पर माचिस का डब्बे दिखेंगे और अगर आप पेड़ पौधे देखेंगे तो बहुत अट्रैक्टिव दिखता है जहां से झरना जा रहा है। जैसे आप IIT के पास में चले जाइए, उस जंगल में ओंकारेश्वर के फील्ड पे चले जाइए, तो बड़ा अट्रैक्टिव होता है। हम सब भारत माता के बच्चे हैं, तो मैं यही बच्चों से कहूंगा कि पूरे संसार में मानव जीवन में मालवीय मूल्यों का पतन हो चुका है और इसकी रोकथाम के लिए हर शिक्षित जिम्मेदार नागरिक को एक व्यक्तिगत प्रयास करके, इसे एक पौधा बना करके, उसको लगा करके, उसको 3 से 5 साल बच्चे की तरह उसको पालन पोषण करके उसको रेज करना है, यानी एक व्यक्ति एक पेड़ बस। तो हर एक व्यक्ति रेन वाटर हार्वेस्टिंग करे, बारिश आने वाली है, अपनी छतों का सारा पानी फिल्टर करके अपनी जो बोरिंग की जो पाइप जहां से आप पानी निकालते हैं उसमें वापिस डालिए। यहां पर जो 800-900 पुरानी बावड़ियां, तालाब और छोटे मोटे जो थे, जो मैंने सुना यहाँ पे ज्ञानी लोगों से, छोटी मोटी पहाड़ियां होती थी, वो पहाड़ियां पेड़ों से लदी होती थी, वो पहाड़ियां गायब हो गई, पेड़ गायब हो गए, तो कहीं ना कहीं हम सबको मिलकर के वापस, चाहे आप इंदौर के रहने वाले नहीं है, दुनिया के किसी भी कोने से माइग्रेट होकर के यहां पर आए, पर आप इंदौर में रहते हैं और इंदौर में आपने घर लिया है, आप यहाँ के निवासी हैं, तो एक पेड़ लगाएं। अपने नाम से। असल में जितनी आपकी

0: पावर है उतनी आपके पेड़ पृथ्वी के ऊपर होने चाहिए। तो जो जितनी उम्र का है वो अभी कैलकुलेट कर ले, और जो पुराने पेड़ नहीं लगाए वो अभी लगाए।
1: जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है। वाकई श्रोताओं, प्रकृति हमें हर दिन देती ही रहती है शुद्ध हवा, निर्मल जल, अन्न और जीवन। अब हमारी बारी है कि हम उसे केवल धन्यवाद न कहें बल्कि अपने व्यवहार से उसका ऋण भी चुकाएं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे डॉक्टर राम आपसे बात करके, और आज चूंकि आप हमारे मेहमान हैं और हमारे कार्यक्रम की रवायत है कि हम हमारे मेहमान की पसंद का एक गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाते हैं, तो कोई एक बहुत प्यारा सा गीत बताइए जो आज हम आपकी तरफ से हमारे श्रोताओं को सुन।
0: तो बॉम्बे में मैं जब गया था तो वो नई बॉम्बे फिल्म आई थी
1: जी,
0: तो उसका एक गाना था, तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। ये मेरे पेड़ के लिए है
1: जी, जी जी
0: कि पेड़ नहीं होगा तो हमें सांस ऑक्सीजन कम हो जाएगी।
1: तो बहुत खूबसूरत गाना है। इस गाने को अभी तक हमने दूसरे विचारों के साथ, दूसरे ख्यालात के साथ सुना है, लेकिन आज एक दूसरी मंशा से सुनेंगे। तो चलिए एक बार सभी को साथ में मिलके कह देते हैं गुड मॉर्निंग इंदौर।
0: गुड मॉर्निंग।

श्रोताओं, सीमाओं पर तैनात हमारे सैनिक अपने शौर्य साहस, हाथों में हथियार, आंखों में चौकसी और हृदय में राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाने जाते हैं। पर श्रोताओं, हमारी सेना, हमारे सैनिक केवल सीमाओं की प्रहरी नहीं बल्कि प्रकृति के भी सजग संरक्षक हैं। जी हाँ श्रोताओं, भारतीय सेना अपने मौन के साथ पर्यावरण को सहेजने, जल बचाने और वृक्षारोपण के कार्यों में अपनी उसी मुस्तैदी के साथ अपना योगदान दे रही है। और इन्हीं प्रेरक प्रयासों के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है ब्रिगेडियर

0: जीव कुमार। श्रोताओं, आपको बता दूं कि भारतीय सेना के कई सारे अहम दायित्वों का निर्वाह करते हुए आप आर्मी वॉर कॉलेज महू के सीनियर इंस्ट्रक्टर रहे हैं और वर्तमान में आप ग्रुप कमांडर एनसीसी इंदौर हैं और सेना में आने वाली भावी पीढ़ी को तैयार करने का दायित्व निर्वाह कर रहे हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर में। नमस्कार, जय हिंद।
1: जय हिंद शिखा जी, अपने हमारा इस अपने लोकप्रिय प्रोग्राम में स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए भी कि आज का जो विषय आपने चुना है
0: जी,
1: पर्यावरण, वो मेरे हृदय के बहुत करीब है। और आज जब हम बातें करेंगे पर्यावरण के ऊपर, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार सेना अपना योगदान पर्यावरण के लिए दे रही है।
0: जी सर, आमतौर पर है ना, हम सेना को केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से जानते हैं और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों में सेना की जो भूमिका है वो कितनी व्यापक है, क्या सोच के साथ सेना इस तरह के कार्य को करती है? सर
1: शिखा जी, आपने एकदम सही कहा है कि आम जनता जो सेना को देखती है वो सुरक्षा से जोड़कर देखती है, पर बहुत कम नागरिकों को पता है कि सेना पर्यावरण के लिए व्यापक रूप से काम कर रही है
0: जी।
1: तो इसके तहत मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेना ने पर्यावरण को पुनर्जीवित करने के लिए इको टास्क फोर्स का गठन किया है। 1980 के दशक में मसूरी की पहाड़ियों में अवैध खनन के कारण हुए विनाश को रोकने के लिए इस बल की शुरुआत की गई थी
0: जी।
1: इसने बंजर भूमि को हरे भरे जंगलों में बदलने और मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। सो 1980 के दशक के बाद ऐसे कई टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो आज देश के विभिन्न प्रांतों में कार्यरत, और इसकी सफलता को देखते हुए सरकार ने गंगा एक्शन प्लान के तहत टास्क फोर्स बनाया है जो गंगा की सफाई में कार्यरत है, और 3 साल पहले
0: जी
1: यमुना के सफाई के लिए भी यमुना टास्क फोर्स गठन किया गया है और वो आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं
0: जी। क्या बात है सर, हम भारतीय है ना, अपनी सेना के प्रति इतने कृतज्ञ रहते हैं, हमेशा नतमस्तक रहते हैं क्योंकि वो हमारी सुरक्षा के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ सीमाओं पर तैनात हैं। पर आज जो पर्यावरण को सहेजने की दिशा में सेना जो काम कर रही है और जिसकी जानकारी आप हमें दे रहे हैं ना, उसे सुनकर मन में कृतज्ञता का ये जो भाव है ना, कई गुना बढ़ गया है सर। अब सर हम बात करते हैं इंदौर की, तो इस वक्त आप और आपकी टीम पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए कौन कौन से काम कर रही है?
1: शिखा जी, मैं ग्रुप कमांडर एनसीसी इंदौर हूं और मेरा दायित्व है जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है उस इलाके के बच्चे जो हैं उनमें अनुशासन और एकता का भाव जागृत करें
0: जी।
1: साथ में एनसीसी को यह भी मैंडेट दिया गया है कि सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत
0: जी
1: विभिन्न कार्यक्रमों में राज्य सरकार और निजी संस्थाओं के साथ भाग ले। इसी के तहत 2024 में यहाँ पे जो रेवती रेंज है
0: जी,
1: वहाँ पे एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया था और हमारे एनसीसी के हजारों बच्चे वहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया था
0: जी।
1: इस साल भी हमें टारगेट दिया गया है DGNCC द्वारा कि हमारे अंदर जो 17,000 से अधिक कैडेट्स हैं
0: जी,
1: वो हर एक बच्चा, हर एक कैडेट एक पेड़ लगाएगा
0: जी।
1: इस अभियान को इस साल हमने एक पायदान ऊपर ले जाने का सोचा है, जिसके तहत यहाँ पे इंदौर के जाने माने मिस्टर राम, जो कि पर्यावरण वैज्ञानिक हैं, और यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर
0: जी
1: हमने ये सोचा है कि एनसीसी बच्चों को पेड़ पौधों के बारे में जानकारी दें और उन्हें प्रेरित करें कि वो अपने घर से जो भी फल खाते हैं उसका बीज लेके आएं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उनको सिखाएंगे कि किस प्रकार उस बीज को आप जब लगाते हैं और उसका संरक्षण करते हैं और उससे जो पौध तैयार होता है
0: जी,
1: वो उनके लिए एक अपने बच्चे की तरह होगा
0: जी, जी।
1: और अगले साल जब हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे तो ये बच्चे, ये कैडेट्स इन्हीं पौधों को लगाएंगे। तो ये इस साल का हमारा नई पहल है जो हम इस साल करने जा रहे हैं।
0: सर, इन दिनों हरियाली महोत्सव मनाया जा रहा है और ऐसे अभियान जो है ना वो जागरूकता बढ़ाते हैं लोगों में, क्या आपका विभाग भी नागरिकों और युवाओं को इसमें जोड़ने का प्रयास करता है, और अगर हाँ तो कैसे?
1: शिखा जी, फौज अभी से नहीं, कई सालों से स्थानीय लोगों को जोड़ने का काम, उनके साथ मिलकर पर्यावरण की संरक्षण का काम करते आए हैं। अगर हम बात करें इंदौर की, तो इंदौर के पास में ही महू कैंटोनमेंट है और जिन श्रोताओं को नहीं पता है, MHOW का मतलब था मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर। सो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर वो फौज की छावनी है जहां पे जितने भी ऑफिसर्स और जवान हैं

0: वो अपने कार्यकाल में कभी न कभी तो वहां आते हैं किसी न किसी ट्रेनिंग के लिए।
1: जी
0: तो आज की डेट में हम आर्मी वॉर कॉलेज के साथ मिलकर बिरछा रेंज है वहां पे बड़े पैमाने में वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं।
1: जी तभी सर वो जो रास्ता है इंदौर से महू तक जाने का, इतना खूबसूरत और हरियाली से भरा हुआ दिखाई देता है ना कि मन प्रसन्न हो जाता है सर। और उसके पीछे आप लोगों की, आप सेना की, एनसीसी कैडेट की और जो पर्यावरण प्रेमी है उन लोगों की बहुत सारी मेहनत है सर। सन 2047 में हम अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे कर लेंगे। हम विजन 2047 की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा सपना है कि भारत जो है अपनी आजादी के जब 100 साल पूरे करेगा तो विकास की एक नई परिभाषा जब हम गढ़ने जा रहे हैं। तो विकास भी आवश्यक है सर और पर्यावरण भी आवश्यक है। तो पर्यावरण और विकास, हम दोनों का किस तरह से संतुलन कर सकते हैं?
0: शिखा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है और ये निहायत जरूरी है कि पर्यावरण और विकास का संतुलन हो
1: जी।
0: और वो संतुलन तभी हो सकता है जब नागरिक के अंदर ये भाव आए कि इसमें हमारी भी हिस्सेदारी है
1: जी।
0: जिस वक्त वो जिम्मेदारी हर एक नागरिक समझेगा, पर्यावरण और विकास में संतुलन अपने आप बनेगा
1: जी।
0: अभी मैं कई लोगों से इंदौर के अंदर जब बातें करता हूँ तो सोशल मीडिया के द्वारा सबको ये पता है कि वृक्ष लगाने के फायदे क्या हैं। तो मैं आपको उसके बारे में नहीं बताना चाहूंगा
1: जी।
0: मैं आपको बताना चाहूंगा जो उनकी मुश्किलें हैं, और उनकी मुश्किलें ये हैं कि वो आजकल मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में, फ्लैट्स में रहते हैं और उनके पास जगह नहीं है प्लांट्स लगाने की
1: जी।
0: तो आपके जरिए मैं उन नागरिकों को ये बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप भी इसके भागीदार बने तो आप अपने एरिया में जो लोकल आपके प्रतिनिधि हैं, लोकल समाज सेवक हैं, एनजीओज हैं जो बड़े बड़े पैमाने वृक्षारोपण की कार्रवाई कर रहे हैं, आप उनके साथ हाथ बटाएं, एनसीसी के साथ हाथ बटाएं। हम जहां पे वृक्षारोपण की कार्रवाई कर रहे हैं हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा नागरिक उसमें हिस्सा लें
1: जी।
0: और विकास में अपना सहयोग दें
1: जी। सर बहुत अच्छी बात है और इस वक्त हमें बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और आपने जैसे बात कही कि वो आपका साथ दे सकते हैं, और कहते हैं ना कि अगर कोई साथ मिलता है, कोई रास्ता दिखाने वाला मिलता है तो बड़े से बड़े काम जो है बड़ी आसानी से हो जाते हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर संजीव कुमार जी से, और सर इस वक्त आपको पूरा इंदौर सुन रहा है, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो कोई एक अच्छा सा संदेश इस हरियाली महोत्सव के अवसर पर पर्यावरण को सहेजने की दिशा में लोग कर सकते हैं, हम आपसे आपका एक संदेश चाहते हैं।
0: सो इंदौर वासियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप लोगों ने मिलजुल कर इंदौर को पिछले 8 सालों से नंबर 1 पोजीशन पे रखा है स्वच्छता के लिए। अब समय आ गया है इस अचीवमेंट को एक पायदान आप ऊपर ले जाएं और इंदौर को हरा भरा शहर बनाने में अपना योगदान दें। तो इंदौर वासियों, मेरी गुजारिश है कि अगर आप पेड़ लगाएं तो उसे अपनाएं, उस वक्त तक अपनाएं जब वो छोटा सा पौधा
1: जी
0: बड़ा होकर एक पेड़ नहीं बन जाता है। अगर आप ये कर सकते हैं तो इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन पर्यावरण के लिए कुछ नहीं हो सकता है। मेरा इंदौर वासियों से निवेदन है कि वो आए और मिलके ये संकल्प लें कि हम अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे, लगाए गए प्रत्येक पौधे की सुरक्षा एवं देखभाल करेंगे, हम सब मिलके कम से कम एक पौधा को वृक्ष बनाएंगे, समाज में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता फैलाएंगे और बीज से पौधा और पौधे से हरियाली का संदेश बाकी नागरिकों में भी पहुंचाएंगे।
1: जी बिल्कुल, ये संकल्प जो है वो आज हम सभी को लेना होगा, तभी हमारी धरती हरी भरी होगी और मुस्कुराती रहेगी। बहुत अच्छा लगा सर मुझे आपसे बात करके, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आज आप हमारे कार्यक्रम में हमारे मेहमान बने। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर आपकी पसंद का कोई एक गीत जो आज हम आपकी तरफ से हमारे श्रोताओं को सुनवाएं।
0: शिखा जी, मेरे जहन में जो गीत अभी आ रहा है वो है ये हसीन वादियां, रोजा फिल्म का है। इस गाने में जो है कश्मीर वादियों को दर्शाया गया है और ये फिल्म मेरे हृदय के बहुत करीब भी है क्योंकि उस वक्त मैं यंग ऑफिस था और अपनी पहली पोस्टिंग में कश्मीर में था। जो गीत मैंने बोला AR रहमान जी की पहली कंपोजिशन है, तो मैं चाहूंगा कि आप ये हसीन वादियां सॉन्ग प्ले करें हमारे श्रोतागण के लिए।
1: जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत गाना है और बहुत सारे श्रोताओं की पसंद का ये गाना है, तो आइए सुनते हैं इस गीत को। श्रोताओं, हमसे बात कर रहे थे ग्रुप कमांडर NCC इंदौर ब्रिगेडियर संजीव कुमार जी। तो संजीव सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार सभी को साथ में मिलके कहते हैं गुड मॉर्निंग इंदौर।

0: तो श्रोताओं, हमारे इन एक्सपर्ट से बात करके ये तो समझ में आया कि पेड़ लगाना एक दिन का उत्सव है, लेकिन पेड़ सहेजना जीवन भर का संस्कार है। हम पेड़ नहीं लगाते, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए छाव बोते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये तो था आज का गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम। सवेरे के 8 बजे हैं, अब समाचार दिल्ली से रिले होंगे।
2: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
3: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
5: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद

0: है जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और जकार्ता के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
2: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
3: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नीत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। यह बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
4: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइको एक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
5: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में SIT की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और मोदन शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के

0: संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉ मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
2: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गई। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉ मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के

0: निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया संन्यास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू एम्बार्क ऑन अ 6-डे विजिट टू इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बिगिनिंग टुडे। India to chair UNCTAD's 9th session of Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection in Geneva. India to host 2-day BRICS Women Working Group meeting at Kochi in Keralam beginning today. Sri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust convenes meeting at its members in Ayodhya this afternoon. Nation pays homage to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary today. Prime Minister describes him as a timeless example of courage, nationalism and selfless service. And Neymar Jr. announces retirement from international football after 5-time world champion Brazil suffers stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. In the first leg of his 3-nation tour, he will reach Indonesia this evening on a 2-day visit. This will be Mr. Modi's 4th visit to Indonesia and his first bilateral visit since the elevation of India-Indonesia ties to the level of comprehensive strategic partnership in May 2018. During the visit, the Prime Minister will hold bilateral discussions with Indonesian President Prabowo Subianto tomorrow and review the progress made in the partnership. Our correspondent has filed this report.
3: The entire island nation is buzzing with excitement and optimism as the Prime Minister Modi arrives here this evening for a 2-day state visit. Mr. Prabowo Subianto and Prime Minister Mr. Narendra Modi are expected to discuss on strengthening the comprehensive strategic partnership with a focus on defense cooperation, trade and investment, food and energy security and cultural collaboration. The highlight of the Jakarta's program will be Prime Minister Modi's address to the Indian diaspora, which is drawing excitement across the country. Communities from Bali, Medan, Semarang, Surabaya and Jakarta are preparing a grand welcome complete with cultural performances. Thousands of Indian nationals and people of Indian origin are expected to gather in the venue, describing the visit as a matter of pride and an opportunity to strengthen their connection with the motherland. Shundipan Dashgupta, Jakarta, Indonesia.
2: In the second leg of his tour, Mr. Modi will reach Melbourne on 8th of this month on a 3-day visit, where he will participate in the 3rd India-Australia Annual Summit with Australian Prime Minister Anthony Albanese. On the last leg of

0: Forces seek larger retention of Agniveers after end of four-year tenure with Navy, likely to seek 75% retention, Army and AIAF up to 50%. The Hindu reports government issues notice to Meta on child sexual abuse ads. Hindustan Times writes about the International Cricket Council meet discussing proposals for a structural overhauling of the sport, including shortening ODIs, introducing continental championships, a World Cup championship for T20s, and a fixed window for formats. The Times of India mentions about a survey's report which says childcare housework keeps 69% urban women out of labour force in India. And finally, the Pioneer mentions the passing away of the legendary Pandavani exponent Tijan Bhai, whose commanding voice became the global face of Chhattisgarh's folk tradition under the headline, "A voice that brought beam alive falls silent. Her legend lives forever." And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Nina. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to embark on a six-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. India to chair UNCTAD's ninth session of Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection in Geneva. India to host two-day BRICS Women Working Group meeting at Kochi in Kerala beginning today. Sri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust convenes meeting of its members in Ayodhya this afternoon. Nation pays homage to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary today. Prime Minister describes him as a timeless example of courage, nationalism and selfless service. And Neymar Jr. announces retirement from international football after five-time world champion Brazil suffers stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार। दोस्तों, आज सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की लोक आत्मा और पंडवानी की अप्रतिम साधिका पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई की, जो अब हमारे बीच में नहीं है। 1956 में जन्मी तीजन बाई अपने नाना को महाकाव्य महाभारत के प्रसंग सुनते हुए देखकर बड़ी हुई और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने बिना किसी ट्रेनिंग के संस्कृत महाभारत के सभी 18 पर्वों को मात्र 21 दिनों में याद कर लिया था। 13 साल की उम्र में जब उन्होंने महाभारत की कहानियां सुनाना शुरू किया, तब शायद ही किसी ने ये सोचा होगा कि जिस आदिवासी लड़की को गाने के लिए समाज से बाहर कर दिया गया था, वह छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा का वैश्विक चेहरा बन जाएगी। कोस्टा साड़ी, गिलट की भारी करधनी, गले में सिक्कों की माला और मुंह में पान की लाली, पैरों में लाल महावर और तंबूरा थामे तीजन बाई जब मंच पर आती थी और कापालिक शैली में द्रौपदी और चीरहरण का प्रसंग सुनाती थी, तो सामने बैठी कई महिलाएं रो पड़ती थी। उनकी दमदार आवाज, हाव भाव और मंच पर मौजूदगी महाभारत के हर किरदार में जान डाल देते थे। वे कलाकार नहीं, मंच की जादूगरनी थी। उन्होंने साबित किया कि सच्ची कला बड़े साधनों की मोहताज नहीं होती। तीजन बाई कभी गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा पाई थी, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा के जरिए साक्षर हुई और जब भी विदेशों में जाती थी, टी बाई लिखकर अपना ऑटोग्राफ दिया करती थी। ऐसी बेटियां बाबुल की रानियां नहीं होती, बल्कि देश की भी रानियां होती है, और हमें ऐसी बहुत प्यारी बेटी पर, ऐसी बहुत गुणी बेटी पर हमेशा गर्व है।

श्रोताओं, आज 6 जुलाई उन अनगिनत लोगों के लिए विशेष दिन है जो देशभक्ति और निस्वार्थ सेवा के आदर्शों को मानते हैं। आज हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहे हैं, जिनका जीवन साहस और मां भारती के प्रति अटूट समर्पण का एक कालातीत उदाहरण है। आधुनिक भारत में ऐसे बहुत कम नेता हुए हैं जिनमें बुद्धि, जनसेवा और नैतिक दृढ़ता का अद्भुत संगम देखने को मिलता हो। युवा श्यामा प्रसाद का जन्म ऐसे परिवेश में हुआ था जहां उन्हें आसानी से एक सुरक्षित और आरामदायक जीवन मिल सकता था। उनके पिता अपने समय के प्रमुख शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों में से एक थे। भाग्य ने उन्हें सुख सुविधाओं का मार्ग दिखाया, इसके बावजूद उनकी अंतरात्मा ने उन्हें त्याग और राष्ट्र सेवा के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्हें पक्का यकीन था कि वे अपने समय की उथल पुथल भरी परिस्थितियों में मूक दर्शक बने नहीं रह सकते। चाहे वो सांप्रदायिकता या मानवीयता के खिलाफ लड़ाई ही क्यों ना हो, या फिर उपनिवेशवाद की चुनौतियों के खिलाफ कोई संघर्ष ही क्यों ना हो। इस यात्रा में उन्होंने कई व्यक्तिगत त्रासदियों का सामना किया, लेकिन बावजूद इन त्रासदियों ने उनके संकल्प को और सुदृढ़ किया और सेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को मजबूत किया। अगर कोई एक आदर्श था जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सार्वजनिक जीवन को सबसे ज्यादा परिभाषित करता था, तो वह था भारत की अखंडता।

विभाजन के उथल पुथल भरे दौर में भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मजबूती से डटे रहे और उन्होंने सुनिश्चित किया कि पश्चिमी बंगाल भारत का अभिन्न अंग बना रहे और कुछ साल बाद यही विश्वास उन्हें जम्मू कश्मीर की ओर ले गया। उन्होंने अनगिनत लोगों से दूर लोगों की पीड़ा को अपना उद्देश्य बनाया था। डॉक्टर मुखर्जी ने भारत और भारतीय मूल्यों को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने ऐसे संस्थान बनाए और ऐसी प्रणालियां विकसित की जो समय की पारंपरिक सोच को चुनौती देती थी। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने। अपने विशिष्ट अंदाज में उन्होंने ऐसे सकारात्मक बदलाव किए जो देशभक्तिपूर्ण और भविष्योन्मुखी थे। आपके नेतृत्व में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने अनूठे प्रयास किए, जैसे पुस्तकालय अवसंरचना में सुधार करना, विज्ञान में शोध को बढ़ावा देना, कलाकृतियों के अध्ययन को प्रोत्साहित करना और कृषि में पाठ्यक्रम स्थापित करना, खेल शिक्षण प्रशिक्षण और छात्र कल्याण पर भी आप

का विशेष ध्यान रहा। भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री के तौर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कार्यकाल एक ऐसे राजनेता की छवि को पेश करता है जिनके विकास का दृष्टिकोण बहुत समग्र और व्यापक था, मानवीय था। आपने उद्योगों को नव स्वतंत्र राष्ट्र में सम्मान, अवसर और आत्मविश्वास को पुनर्स्थापित करने का साधन माना। आप धन सृजन और मूल्य संवर्धन का सम्मान करते थे। दामोदर घाटी निगम, सिंदरी उर्वरक संयंत्र और मजबूत औद्योगिक नीति जैसे महत्वपूर्ण पहलों के माध्यम से आधुनिक और औद्योगिक भारत की आधारशिला रखते हुए आपने सुनिश्चित किया कि भारत की पारंपरिक खूबियों की अनदेखी ना हो। हाथकरघा, कुटीर उद्योग, कारीगरों और वस्त्र मजदूरों को डॉक्टर मुखर्जी के रूप में एक ऐसा समर्थक मिला जो उनके लिए पूरी तरह समर्पित था। दोस्तों, इतिहास में ऐसे पल आते हैं जब किसी व्यक्ति का अंतिम बलिदान राजनीति से परे जाकर राष्ट्रीय स्मृति में शामिल हो जाता है। डॉक्टर मुखर्जी की अंतिम यात्रा भी एक ऐसा ही पल रही।

0: देशभक्ति और निस्वार्थ सेवा के जनक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हमारा शत शत नमन और वंदन।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोता हम बात करते हैं एक ऐसे लड़के की जो बचपन से ही फिल्मों का दीवाना था, और जब उसने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा तो उसे शुरुआत में कई रिजेक्शंस झेलने पड़े, कास्टिंग काउच जैसे कड़वे अनुभवों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि एक दिन जब वह काम की तलाश में अपना पोर्टफोलियो लेकर एक प्रोड्यूसर के घर पहुंचे तो प्रोड्यूसर ने उसके पीछे कुत्ता छोड़ दिया, और वही लड़का आज बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक माना जाता है। उसने अपने करियर में धुरंधर, धुरंधर 2, पद्मावत और बाजीराव मस्तानी जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी। जी हाँ श्रोताओं, आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं रणवीर सिंह की, जिनका आज जन्मदिन है।

श्रोताओं, आप सभी को ये जानकर आश्चर्य होगा कि बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह कभी पढ़ाई के दौरान पार्ट टाइम जॉब किया करते थे। फिर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद रणवीर सिंह को YRF की बैंड बाजा बारात से डेब्यू किया गया। धीरे धीरे किस्मत ने उनका ऐसा हाथ पकड़ा कि वे बॉक्स ऑफिस के किंग बन गए। हालांकि इस मुकाम को हासिल करना उनके लिए काफी मुश्किलों भरा रहा। रणवीर सिंह एक नॉर्मल एक्टर से सुपरस्टार बनने की एक बेहद और काबिले तारीफ जर्नी है। आज कई फिल्मों में उन्होंने अपने आप को, अपने मुकाम को हासिल किया है। जी हाँ दोस्तों, रणवीर ने हर तरह के रोल में कई लोगों का दिल जीता है, चाहे वो पद्मावत हो, बाजीराव मस्तानी हो या सिम्बा हो। उन्होंने अपनी फिल्मों में सिर्फ शानदार करियर को ही स्थापित नहीं किया, बल्कि अपने करियर को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। अपने दमदार किरदार, शानदार स्क्रीन प्रेजेंस और बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन ने उन्हें इंडस्ट्री के सबसे बुलंद सितारों में शामिल कर दिया। और कुछ फिल्मों के ये गीत तो उनका सिग्नेचर स्टाइल बन चुके हैं। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का एक ऐसा गीत जिसे सुनकर आपके हाथ अपने आप उस सिग्नेचर स्टाइल की तरफ बढ़ जाएंगे।

रणवीर सिंह अपनी जिंदगी में और अपने करियर में हमेशा ऊंचाइयों को हासिल करते रहे। इन्हीं शुभ दुआओं के साथ एक बार फिर उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं मराठी कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे मराठी कार्यक्रम, हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अब्दुल सलाम नौशाद खान का क्लेरियोनेट वादन, तबले पर संगत मुकेश रसगाया की है, विलंबित रचना एक ताल में और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अब्दुल सलाम नौशाद खान का क्लेरियोनेट वादन। तबले पर संगत कर रहे थे मुकेश रजगाया। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 10 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले होगी। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है छतरपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुनील पांडे, वाचन स्वर दीपा सिंह। छतरपुर में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री तथा सांसद डॉ. वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक हुई। बैठक में जिले के विकास कार्यों की एक एक कर समीक्षा की गई। 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने, हर घर नल जल योजना पूरी होने पर पंचायतों को हैंड ओवर करने और नियमित पानी सप्लाई के निर्देश दिए गए। जनप्रतिनिधियों से भी अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों की लगातार निगरानी करने को कहा गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने जिले में पल्स पोलियो अभियान चलाया। पहले दिन पोलियो बूथों पर और उसके बाद घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। जिले में करीब 3,04,000 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके लिए 2,000 से ज्यादा बूथ बनाए गए। अभियान की शुरुआत जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने की। जल संरक्षण को लेकर चल रहा जलगंगा संवर्धन अभियान भी अब सम्पन्न हो गया है। समापन कार्यक्रम मोटे के महावीर परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें वन और पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार शामिल हुए। उन्होंने प्राचीन बावड़ी के जीर्णोद्धार का लोकार्पण किया और लोगों से बारिश के पानी को बचाने, जल स्रोतों की सफाई और खेतों में मेड़ बंधान तथा तालाब बनाने की अपील की। जिले के युवाओं के लिए जिला प्रशासन ने लोक सेवा गुरुकुल और सेंट्रल लाइब्रेरी की शुरुआत की है। यहाँ आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निशुल्क प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग मिलेगी। आज से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी खुद विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। दूसरी तरफ जिले के सरकारी स्कूलों में नए शिक्षा सत्र की पढ़ाई भी नियमित रूप से शुरू हो चुकी है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कई स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। शिक्षकों को समय पर स्कूल पहुंचने और बेहतर पढ़ाई करने के निर्देश दिए गए। वहीं लापरवाही मिलने पर कुछ शिक्षकों के वेतन काटने और समूहों को नोटिस जारी करने की कार्रवाई भी की गई। छतरपुर में बन रहा मेडिकल कॉलेज अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर हॉस्टल, ऑपरेशन थिएटर, क्लासरूम, इमरजेंसी और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। किनबितवा लिंक परियोजना से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास को लेकर कलेक्टर पार्थ जायसवाल और पुलिस अधीक्षक रजत सकलेजा ने करोंदिया पहुंचकर विस्थापित परिवारों से मुलाकात कर सुविधाओं का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने पेयजल व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अतिरिक्त बोरवेल कराने के निर्देश दिए और विस्थापित परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष शिविर आयोजित करने को कहा। उन्होंने डूढ़न और खरियानी गांव का भी दौरा कर उन ग्रामीणों से चर्चा की जिन्होंने अभी तक अपने आवास खाली नहीं किए हैं। मॉनसून की दस्तक के बाद जिले में किसानों ने खरीफ की बुआई तेज कर दी है। अब तक 70% से ज्यादा रकबे में बोनी हो चुकी है। किसान मूंगफली, उड़द, सोयाबीन की फसल लगा रहे हैं। कृषि विभाग और किसान FPO के माध्यम से उन्नत बीज भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिले के जरूरतमंद मरीजों के लिए भी राहत की खबर है। गंभीर बीमारियों से पीड़ित 7 लोगों को मुख्यमंत्री स्वच्छ अनुदान मद से इलाज के लिए कुल 3.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मंजूर की गई है। प्रशासन ने अवैध खनिज परिवहन और भंडारण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। खनिज विभाग ने 5 मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 17,45,300 रुपए का जुर्माना लगाया है। छतरपुर के लक्ष्मण कॉलोनी सटई रोड में बाल विभाग की सूचना मिलने पर महिला बाल विकास, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर बाल विवाह रुकवाया। टीम ने दोनों पक्षों को समझाते हुए बाल विवाह करने पर कानूनी कार्रवाई और सजा के प्रावधानों की जानकारी भी दी। छतरपुर के मऊ सहानिया में 2 दिवसीय विरासत महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें महाराजा छत्रसाल के शौर्य वीरता ने दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी। समापन दिवस पर मुस्कान चौरसिया ने बुंदेली गायन और संप्रिया पूजा ने पनभानी शैली में महाभारत का प्रसंग प्रस्तुत किया। अंतिम प्रस्तुति सुमित मिश्रा द्वारा संयोजित धन्य धन्य बुंदेल धरा रही, जिसमें कविता शर्मा के गीतों के साथ 16 लोक नृत्य कलाकारों ने बुंदेलखंड की गाथा प्रस्तुत की और अंत में बात विश्व योग दिवस की।

के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो के पश्चिमी मंदिर समूह परिसर में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों ने सामूहिक योग अभ्यास किया। कार्यक्रम में वन और पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार भी शामिल हुए और प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण भी लोगों ने देखा। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को विजया जैन का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज का एमएच हॉटलाइन लेकर मैं हाजिर हो चुकी हूँ आप सभी के साथ, आपकी दोस्त, है ना। तो मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बिल्कुल तैयार होंगे और जल्दी जल्दी हमें नंबर पर कॉल कर रहे होंगे और अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते होंगे। तो बिल्कुल हम आपके फोन कॉल्स उठाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर नंबर बता देते हैं जो हमारे नए श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए। नंबर है 2710223 और 2710224। अगर आप इंदौर से बाहर हैं और इंदौर के बाहर से हमसे बात करना चाहते हैं तो एसटीडी कोड 0731 लगाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज आपके फोन कॉल्स का ये सिलसिला। तो आइए देखते हैं कि हमारे पहले कॉलर इस वक्त हमारे बीच में कौन है। हेलो।
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं, और आप कैसी हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मैं सागर से नंदिनी तिवारी बात कर रही हूँ।
0: सागर से नंदिनी तिवारी बात कर रही है। नंदिनी जी, क्या करती हैं आप?
1: मेरी बीएससी फाइनल हो गई है।
0: अच्छा, बीएससी फाइनल हो गई है आपकी, तो अभी एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं आपके, मतलब?
1: जी।
0: तो अभी क्या कर रही हैं आप, आगे फर्दर स्टडी की प्रिपरेशन कर रही हैं या छुट्टियां मना रही हैं?
1: अभी फिलहाल मैं तो छुट्टी पर ही है।
0: अच्छा, छुट्टी पर ही है। तो क्या करने का प्लान है आगे?
1: अभी तो बस आगे और पढ़ाई करेंगे।
0: अच्छा, आगे और पढ़ाई करेंगे। चलिए बता दीजिए आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: आज गीत सुनूंगी मैं, मूवी का नाम है बरसात, और इसी का मतलब बरसात के दिन आए। और अच्छा, आज मैं एक बात बोलना चाहती हूँ।
0: हाँ हाँ,
1: मेरी रानी दीदी का बर्थडे है तो उनके लिए हैप्पी बर्थडे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी रानी दीदी मतलब आपकी बड़ी सिस्टर?
1: हाँ, रानू दीदी।
0: अच्छा, मतलब आपकी बड़ी बहन का जन्मदिन है आज?
1: हाँ, तो उनके लिए हैप्पी बर्थडे।
0: अच्छा, तो वो आपके साथ है अभी इस वक्त या फिर कहीं बाहर रहती हैं?
1: नहीं, वो ससुराल में है, मैं मायके में हूँ।
0: अच्छा, वो ससुराल में और आप मायके में। तो आज क्या खास करने वाली है वैसे बड़ी बहन के लिए? ये तो सरप्राइज होगा उनके लिए फिर ना?
1: जी, बट अभी तो कुछ नहीं बट।
0: अच्छा, सरप्राइज है तो बता भी नहीं सकती है अभी।
1: जी
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए रानू जी, आप और आपकी बहन दोनों खुश रहें, और आपकी बहन को हमारी ओर से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और सुनिए आपकी पसंद का ये बहुत ही खूबसूरत गीत फिल्म बरसात से।
1: जी मैम, थैंक यू। नमस्ते।
0: नमस्ते, थैंक यू।

0: हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रही हैं?
1: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ, देवास से, आपके पास से।
0: अच्छा, मेरे पास से ही बात कर रही हैं आप, मुझे तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल मेरे पास में ही बैठी हैं इस वक्त।
1: जी जी जी जी, सिस्टर का फोन लगा था सागर से।
0: मतलब आप दोनों बहनों की कुछ तो भी ना खतरनाक वाली केमिस्ट्री है, मतलब दोनों का फोन बैक टू बैक और साथ में लग गया तो बहुत बड़ी बात है। हमारे बहुत सारे श्रोता है ना, बहुत कोशिश करते हैं उसके बावजूद भी उनका फोन नहीं लगता है, और आप दोनों का फोन
1: बताओ।
0: हाँ जी बिल्कुल,
1: भोपाल में कॉल करते हैं, आकाशवाणी भोपाल हमारा फेवरेट है।
0: अच्छा,
1: वहाँ कॉल करते हैं तो आप मानोगे नहीं, बहुत बार ऐसा हो चुका है, मतलब 90% तो उसका लगेगा तो मेरा लग जाएगा, मेरा लगेगा तो, बट वो वहाँ के अनाउंसर हम लोगों को पहचानते हैं ना।
0: क्या बात है, मतलब दो जिस्म एक जान हो आप लोग।
1: जी बिल्कुल, तो उसको थैंक यू।
0: तो रानू जी चलिए बताइए, आज कौन सा गीत आप सुनेंगी? आपकी बहन ने तो आपके लिए सॉन्ग बड़ा प्यारा सॉन्ग डेडिकेट किया था, अब आप अपनी बहन को कौन सा सॉन्ग सुनवाने वाली हैं?
1: मूवी का नाम है दाग द फायर, उसी में एक सॉन्ग है दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, आपको डेडिकेट रहेगा।
0: अच्छा अच्छा, मुझे नहीं नहीं, आज तो आपका दिन है और बहन को डेडिकेट करिए, वो ज्यादा खुश हो जाएंगे।
1: और मेरी बहन नंदिनी के लिए, और एक आपके यहाँ ना तृप्ति लटपट्टी मैम है ना,
0: हाँ हाँ,
1: उनसे बात करके मुझे बहुत खुशी होती है, अगर वो सुन रही है तो उनके लिए भी रहेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब हमसे बात करके खुशी नहीं हो रही है आपको ज्यादा? नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। देखिए बिल्कुल, हमारी आवाज और आपकी आवाज हमारे श्रोताओं तक, हमारे सभी लिसनर्स तक पहुँच रही है, और जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: सबने किसी की बुराई नहीं
0: करी। नहीं नहीं नहीं, अरे अरे अरे, आप इतना दिल पे मत लीजिए, देखिए थोड़ी मस्ती तो बनती है। आज आपका, मेरे ख्याल से आज आपका जन्मदिन भी है, राइट?
1: जी जी,
0: चलिए आपको बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और आपको आपकी पसंद का एक गीत सुनवाते हैं, ठीक है?
1: नमस्कार।
0: ओके नमस्कार।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन।
1: जी नमस्ते
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: जी। प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: अच्छा, प्रेम सिंह सिसोदिया जी बात कर रहे हैं।
1: जी हाँ
0: क्या
1: जी।
0: कर रहे हैं सर अभी इस वक्त?
1: जी मैं अभी फिलहाल स्कूल से बच्चों को छोड़ के आया हूँ घर पे, और आपका कार्यक्रम सुन रहा हूँ।
0: अच्छा, तो कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: जी हीरो फिल्म का सुनवा दीजिएगा, तू मेरा
0: हीरो
1: हीरो
0: फिल्म
1: है,
0: का
1: तू
0: कौन सा गीत सुनना है आपको?
1: मेरा हीरो है।
0: तू मेरा हीरो है। ओके, तो बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आपके?
1: बड़ी वाली लड़की 11th में है, और उसके बाद में लड़का है वो 9th क्लास में पढ़ रहा है।
0: तो दोनों को रोज छोड़ने जाते हैं और लेने जाते हैं आप?
1: हाँ छोड़ने जाते हैं, लेने पास में स्कूल है।
0: अच्छा, पास में स्कूल है। ओके, और आप क्या करते हैं?
1: मैं खेती किसानी का काम कर रहा हूँ,
0: अच्छा,
1: और
0: खेती
1: तुम?
0: किसानी के काम के साथ मैनेज हो जाता है बच्चों को लाना और छोड़ना?
1: हाँ अभी सुबह का टाइम खाली रहता है ना, तो छोड़ने चले जाते हैं, और वापस 4 बजे छुट्टी होती है, तो वापस चले जाते हैं गाड़ी लेकर।
0: अच्छा। तो अभी तो बारिश थोड़ी हो गई है, तो बुवाई की तैयारी हो गई होगी अगली फसल की?
1: हाँ जी सोयाबीन की फसल लगा दी है हमने।
0: अच्छा, सोयाबीन की फसल लगा दी है, तो बिल्कुल आपकी फसल बहुत अच्छी उपजे और बहुत सारा धन धान्य हो, है ना? तो चलिए आपकी पसंद का गीत सुनवा दें आपको।
1: जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैं मोबाइल ऐप से कार्यक्रम सुनता हूँ, और
0: जी
1: आकाशवाणी इंदौर का नियमित श्रोता हूँ, 2005 से सुन रहा हूँ।
0: जी जी जी बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, आप हमेशा हमारे नियमित श्रोता बने रहें और हमारे प्रोग्राम सुनते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें, है ना?
1: जी बिल्कुल,
0: चलिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच।

0: सो योर प्लेस और माइन।
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से, और आकाशवाणी इंदौर आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं, और साथ ही आप गूगल पर आकाशवाणी इंदौर सर्च करेंगे तब भी आप इसे सुन सकते हैं। इस वक्त आप सुन रहे हैं हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन, और एक बार फिर नंबर बता देते हैं हमारे सभी श्रोताओं को। हमारे फोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर के बाहर के श्रोता एसटीडी कोड 0731 लगाना बिल्कुल ना भूलें। और आइए देखते हैं एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम में अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो
4: हेलो दीदी को राधे राधे।
3: राधे राधे, कैसे हैं सर आप?
4: बहुत बढ़िया दीदी, केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ, बेरसिया जिला भोपाल से।
3: बेरसिया जिला भोपाल से केसरी सिंह जी बात कर रहे हैं। केसरी सिंह जी कौन सा गीत सुनेंगे आज?
4: आज आप सुनवा दीजिएगा दीदी हो तो ऐसी मूवी का नाम है।
3: हाँ हाँ,
4: ओ फूल गुलाब का।
3: क्या बात है, बहुत ही अच्छा गीत चुना है आपने। क्या करते हैं आप वैसे?
4: मैं दीदी आर्टिस्ट हूँ, पेंटर।
3: अच्छा, पेंटिंग करते हैं। हाँ, तो किस तरह की पेंटिंग करते हैं, मतलब वॉल पेंटिंग करते हैं या फिर कैनवास पेंटिंग करते हैं?
4: वॉल पेंटिंग।
3: अच्छा, तो घरों के बाहर और दीवालों पे आप पेंटिंग करते हैं?
4: हाँ जी हाँ।
3: तो क्या बनाते हैं मेनली, किस तरह की डिमांड आती है आपको पेंटिंग में?
4: पेंटिंग में दीदी सभी प्रकार की डिमांड आती है, जैसे अपनी नगर पालिका में चित्रकारी हुई, साफ सफाई।

0: के बारे में लिखना हुआ, साफ सफाई दरकाना हुआ, चित्रकारी हुई, पेड़ फूल पौधे सब बनाना।
1: सब बनाते हैं आप? और कितने सालों से कर रहे हैं ये काम?
0: इसको होगा लगभग दीदी 15 साल होगा।
1: 15 साल हो गए। कहीं सीखा है आपने?
0: सीखा नहीं दीदी, बचपन से ही शौक था तो उसी में फिर टाइम दे दिया थोड़ा और धीरे धीरे सफलता मिलती चली।
1: क्या बात है, बचपन से। अच्छा, शौक को आपने अपना पेशा बना लिया है।
0: हाँ जी, हाँ जी, उसमें दीदी खुशी भी रहती है अपना काम।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, हमारी मन का पसंद का काम हो तो हमें बहुत खुशी मिलती है वो काम करने में, और थकान भी नहीं होती है, सबसे बड़ी बात है ना।
0: थकान भी नहीं होती है दीदी, अपनी मर्जी का काम है। जैसे किसी कस्टमर की कॉल आई तो उनसे बोल दीजिए भाई आज फ्री नहीं है, दो घंटे बाद आएंगे, तो उसमें बहुत बड़ा सुकून है। नहीं तो आजकल क्या होता है कि बहुत सारे नौकरियां हैं उनमें टाइम टू टाइम करना पड़ता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: दीदी नहीं जा पाता।
1: ये बात तो है। देखिए, अपनी स्वयं के रोजगार के अपने सुख होते हैं और अपनी अपने को खुशी भी मिलती है, तो जो काम मन को अच्छा लगे वो जरूर करना चाहिए, है ना
0: जी। जी, और उसमें अपन टाइम देते हैं तो
1: बिल्कुल
0: अपने को फल जरूर मिलता।
1: हाँ,
0: है।
1: हाँ, ये बात तो सही है, बिल्कुल। आप मेहनत करेंगे तो फल जरूर मिलेगा।
0: बिल्कुल, फल जरूर मिलता है। और दूसरी चीज की अगर संतोष रखेंगे तो काम और सुखी जीवन का संतोष सबसे बड़ा धन है।
1: सच्ची बात है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और ये बात आज हमें सीखने की आवश्यकता है, जो हमारे युवा साथी हैं जो दूसरे दूसरे कामों में अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हैं, उनको सीखने की आवश्यकता है कि अपना कोई हुनर, अपना कोई शौक, उसे डेवलप करें और उसको अपना रोजगार बना सकते हैं हम, है ना
0: जी। बिल्कुल, रोजगार बना सकते हैं। और एक अपना वो गाना भी है कि दाल रोटी खाओ फिर भूखे
1: प्रभु के गुण गाओ,
0: तो थोड़ी में मौज मनाओ।
1: क्या बात है, क्या बात
0: करना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: इतना और उतना, क्योंकि आजकल देखने को जे मिल रहा दीदी कि किसी के पास कितना भी कुछ हो जाए पर उसकी नियत नहीं भरा।
1: सही बात है, सही बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात की आपने, और मुझे उम्मीद है कि आपकी बातों से हमारे जो दूसरे श्रोता हैं वो जरूर सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए, मुझे आपका गीत भी मिल चुका है तो आपकी पसंद पूरी कर देते हैं।
0: सबसे पहले आप सुनेंगे लोकेन वर्मा जी, भगवान सिंह परमार जी, और प्रेम सिंह सिसोदिया जी और रानू जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं।
1: चलिए, वो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सब आपने जितने नाम लिए वो सभी भी हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, तो आप सभी को सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: जी, थैंक यू। राधे राधे।
1: राधे राधे, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो हेलो।
0: एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम।
1: हाँ, एमएच हॉटलाइन। नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
1: जी दीदी, मैं महेश बिलाला बात कर रहा हूँ, जिला आगरमालवा, ग्राम मनासाती।
0: ग्राम मनासा से बात कर रहे हैं महेश बिलाला।
1: जी दीदी।
0: ओके, तो महेश जी क्या करते हैं आप?
1: जी दीदी, हम खेती किसानी करते हैं दीदी। इन
0: अच्छा, खेती
1: दिनों सोयाबीन
0: किसानी।
1: लगा दिए दीदी, और बारिश के इंतजार है दीदी, बारिश कम हो रही है।
0: हाँ, बारिश कम हो रही है। एक्चुअली इस बार अनुमान ये भी है कि बारिश पिछले सालों से थोड़ी कम आएगी,
1: जी दीदी।
0: है ना? तो एक्चुअली हमें भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये बारिश इसी तरह से कम ना होती जाए। पर्यावरण के लिए, पौधों के लिए, पेड़
1: हाँ
0: रोपण
1: दीदी,
0: करने के लिए हमें भी
1: जी
0: ध्यान
1: दीदी।
0: रखना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि सारे श्रोता इस बात का ध्यान रखेंगे, और जितने भी लोग हैं, अगर हम एक एक पेड़ भी रोज लगाएंगे तो बहुत सारी हरियाली प्रकृति में होगी, और हमें, मुझे लगता है कि फिर कभी बारिश की कमी महसूस नहीं होगी,
1: जी दीदी।
0: है ना?
1: हेलो
0: चलिए, कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: जी दीदी, बॉर्डर पिक्चर का सुनवा देना हुआ है, जाते हुए लम्हा। दीदी,
0: अच्छा,
1: हम थोड़ा सा आपको रोकने चाहेंगे यहाँ पे।
0: हाँ हाँ बोलिए।
1: हमारे बड़े भैया बात करना चाहते हैं आपसे।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, करवाइए।
2: हेलो मैम। नमस्कार
0: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
2: मैम जी, कैसे हो?
0: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
2: बहुत ही बढ़िया, और आपकी आवाज सुन के, आपके जो प्रोग्राम होते हैं सुनकर हम बहुत अच्छे हो जाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये तो, और धन्यवाद आपका कि आप हमारे प्रोग्राम सुनते हैं। आप क्या करते हैं?
2: जी मैं दृष्टिबाधित हूँ।
0: अच्छा, दृष्टिबाधित है। ओके ओके, तो चलिए कोई बात नहीं, गीत सुनकर मनोरंजन करते हैं भाई के साथ।
2: बिल्कुल
0: चलिए, तो आपकी पसंद पूरी करें।
2: जी, बहुत
0: चलिए,
2: बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर, और लीजिए आपकी पसंद का बॉर्डर फिल्म का ये गीत आप दोनों भाइयों के लिए।

0: हेलो
1: विजय जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं विवेक व्यास बोल रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी डोंगरगांव महू से।
0: अच्छा, डोंगरगांव महू से बात कर रहे हैं। कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: आज मुझे विजय जी आप सुनवा दे फिल्म का नाम है मृग तृष्णा और लता जी की आवाज है, गाने के बोल है। सुन मन के नीत मोर प्रेम गीत तू आजा आजा रे, ये वाला गीत।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा गीत है और बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं आप तो।
1: जी मैंने म्यूजिक सीखा है भी।
0: घर पे आपकी मैडम बड़ी खुश रहती होगी, इतना अच्छा गुनगुनाते हैं तो।
1: अब ये तो मुझे नहीं पता,
0: उनकी फरमाइश पूरी करते हैं कि नहीं कभी आपकी? उन्होंने डिमांड किया कि आज ये गीत आप मुझे अपनी आवाज में गा के सुनाओ, तो आप गा के सुनाते हैं कि नहीं उन्हें?
1: नहीं नहीं, वो क्या है, वो ये कहती है कि आपसे अच्छा तो रेडियो।
0: अच्छा अच्छा, चलिए। नहीं, अच्छा गाते हैं वैसे आप, काफी अच्छा गुनगुनाते हैं और अब आपकी पसंद का गीत भी मुझे मिल चुका है, तो चलिए फरमाइश पूरी करूं आपकी।
1: जी धन्यवाद, नमस्कार।
0: धन्यवाद, नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन कौन साहब बात कर रहे हैं?
1: हाँ नमस्कार, मैं कमलेश त्रिपाठी जोशी 53 गीतानगर इंदौर से बोल रहा
0: अच्छा, कमलेश जोशी जी इंदौर से बात कर रहे हैं आप।
1: सीनियर
0: क्या
1: सिटीजन।
0: करते हैं कमलेश जी आप?
1: मैं सीनियर सिटीजन हूँ, बैंक
0: अच्छा
1: बैंक में था, इंदौर बैंक में रिटायर हो गया।
0: अच्छा बैंक से रिटायर्ड हैं आप। ओके, तो कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: आकाशवाणी भेजाते सुबह से रात तक सुनता हूँ मैं,
0: अच्छा
1: बहुत सहारा रहता है, बहुत अच्छा लगता है।
0: बहुत अच्छी बात है ये तो। बिल्कुल, आपका टाइम पास भी होता है और हमारे श्रोता भी हमसे जुड़े रहते हैं, है ना? तो कौन सा
1: अपना
0: गीत आज आपको सुनवा दें?
1: अभी गुड मॉर्निंग इंदौर में शिखा जी ने पर्यावरण का बहुत अच्छा कार्यक्रम दिया था
0: जी,
1: और सबके लिए, तो उसी में एक पुरानी फिल्म है दुनिया झुकती है, तो
0: हाँ
1: मोहम्मद रफी का गाना है
0: हाँ
1: फूलों
0: हाँ
1: से दो कांटों से यारी।
0: क्या बात है। तो आप भी कुछ करते हैं पर्यावरण के लिए कि नहीं करते हैं?
1: हाँ ज्यादा तो कुछ नहीं करता, मेरे पास घर में
0: बिल्कुल, लेकिन इतने प्यारे गीत सुनते हैं तो पर्यावरण के लिए भी थोड़ा हमें करना चाहिए। ज्यादा नहीं तो इस मौसम में एक-एक पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करें, है ना? तो
1: एकदम
0: बिल्कुल ये सब
1: आपका
0: करिए और प्रकृति को सुरक्षित रखना हमारा भी दायित्व बनता है, तभी ऐसे गीतों की सार्थकता रहेगी, है ना?
1: बहुत बहुत बहुत धन्यवाद विजय
0: जी
1: सर।
0: जी जी चलिए, आपकी पसंद का गीत हमें मिल चुका है तो आपकी पसंद पूरी
1: नमस्ते
0: करते हैं और सुनवाते हैं आपको
1: नमस्ते,
0: ये गीत।
1: नमस्कार,
0: नमस्कार।
1: थैंक यू।

0: सो योर प्लेस और माइन।
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से, और आइए देखते हैं हमारे अगले श्रोता कौन है। हेलो एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम
4: जी, विजय जी को नमस्कार।
3: नमस्कार, कैसे हैं सर?
4: एकदम मस्त, बढ़िया है।
3: बिल्कुल, क्या कहाँ से बात कर रहे हैं और कौन बात कर रहे हैं, आपका परिचय जान सकती हूँ?
4: जी मैं अरविंद अग्रवाल, श्रीनगर जिला महुआ।
3: महुआ से नाम क्या बताया आपने अपना?
4: अरविंद अग्रवाल।
3: अरविंद अग्रवाल जी, तो अरविंद जी सबसे पहले तो गीत बताएं, कौन सा गीत सुनेंगे?
4: जी फिल्म का नाम रहेगा राम तेरी गंगा मैली।
3: राम तेरी गंगा मैली का कौन सा गीत सुनेंगे आप?
4: एक राधा एक मीरा।
3: क्या बात है, हाँ जी बहुत ही अच्छा और खूबसूरत गीत चूज किया है आपने। क्या करते हैं अरविंद जी आप?
4: जी मैं किराने की दुकान है मेरी, वहीं पे बैठ के आपको सुनता हूँ।
3: अच्छा, किराने की दुकान है आपकी, महू में ही है आपकी?
4: श्रीनगर जिला महोबा।
3: अच्छा महुआ, ओके ओके ओके ओके, ठीक है। तो इस वक्त बारिश की स्थिति क्या है वहाँ पर, बारिश हो रही है कि कम है या अच्छी हो रही है?
4: एक दो पानी तो गिर गया है। अच्छा
3: अच्छा, एक दो पानी गिरा है, पर अभी और आवश्यकता है ना?
4: बहुत, अभी तो बहुत आवश्यकता,
3: बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी जल्दी अच्छी बारिश आए। और
4: आपके यहाँ भी एक फोन पे दो बात हो रही क्या
3: जी?
4: ऐसी भोपाल में करते थे लोग, एक फोन लग गया, दो लोग बात करते थे कॉन्फ्रेंस में लेके।
3: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। अगर किसी ने सामने से चल के बोला है कि हमारे भाई हैं बहन हैं इनसे बात कर लो, तो फिर हम कर लेते हैं बात।
4: नहीं ऐसा नहीं है, एक से दो पे बात हुई है आज।
3: अच्छा अच्छा अच्छा, हो सकता है ऐसा हुआ होगा, ठीक है, ध्यान रखा जाएगा उसको, पर ठीक है।
4: पहली दो कॉल है।
3: चलिए अभी तो आपकी पसंद का गीत मिल चुका है, तो जल्दी से फरमाइश पूरी करते हैं आपकी, है ना
4: जी?
3: तो चलिए आप सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।
5: माय फादर स्लेप्ट एट ड्रैंक वेंट डिड ऑल नथिंग बट। माय फादर स्लेप्ट एट ड्रैंक वेंट डिड ऑल नथिंग बट हिज मूवी। एक राधा एक मीरा, ये गाना पापा ने दिल्ली में।
3: फिल्म राम तेरी गंगा मैली का ये खूबसूरत गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, आइए सुनवाते हैं हमारे एक श्रोता की पसंद पर।
5: And he signed him for Ram Teri Ganga Maili. That's how Ram Teri Ganga Maili came. The beautiful part was that the way that man portrayed Ram Teri Ganga Maili. किस तरीके से इस फिल्म को बनाया, इसको सिंबलाइज किया, इसे कन्वे किया लोगों को।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम।
1: दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन साहब बात कर रहे हैं?
1: दीदी दूल्हे सिंह यादव, ग्राम बागचा, जिला आगर मालवा, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। दीदी
0: दूल्हे सिंह बागचा जी, क्या करते हैं दूल्हे सिंह जी?
1: यही खेती का एक काम धंधा है दीदी हमारे तो।
0: अच्छा, आपका नाम बड़ा यूनिक है, दूल्हे। तो किसने रखा है नाम मम्मी पापा में से?
1: ये दीदी हमारे क्या बचपन में जब जन्म होता है तब पंडित जी आके ना नाम निकालते हैं, जब से ही हमारा नाम यही है दीदी।
0: अच्छा, तब से ही आपका ये नाम है। अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। अच्छा गीत बताएं, कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: ये घायल फिल्म है दीदी, सनी देओल वाली, उसका गाना सुनना है, वो माहिया।
0: अच्छा, ये फिल्म देखी थी आपने?
1: देखी नहीं दीदी, बहुत बार देखी है तो।
0: अच्छा, तो कौन है आपके फेवरेट हीरो, कौन है?
1: दीदी फेवरेट हीरो तो सभी हीरो अच्छे हैं दीदी, लेकिन जितेंद्र की बहुत ज्यादा फिल्में देखते थे दीदी पहले हम।
0: अच्छा, जितेंद्र की फिल्में बहुत देखा करते थे आप। ओके, तो साथ में श्रीमती जी को भी ले जाते हैं कि अकेले ही देखाते हैं?
1: अरे दीदी जब पहले की बहुत बात है तो 90 से पहले फिल्में देखते थे हम सिनेमा थिएटर में जाके।
0: अच्छा,
1: अब तो सिनेमा ही नहीं रहा दीदी हमारे शहर में।
0: सही बात है। और घर में कौन कौन है आपके?
1: घर में दीदी माता जी है, पिताजी है, भाई है, दो
0: अच्छा
1: बेटे भी है दीदी मेरे।
0: अच्छा, पूरा पूरा संयुक्त परिवार है आपका?
1: हाँ पूरा परिवार है दीदी।
0: चलिए, पूरे परिवार के साथ बैठ के एंजॉय करते हैं मतलब।
1: हाँ
0: चलिए, आपकी पसंद का गीत सुनवा दें आपको।
1: हाँ सुनवा दीजिए दीदी, धन्यवाद।
0: चलिए धन्यवाद, लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो
0: एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम।
1: हाँ, मैं राजू अग्रवाल बोल रहा हूँ, राजा राम नगर देवास।
0: जी राजू अग्रवाल जी, बिल्कुल आदेश करिए, कौन सा गीत सुनाए आपको?
1: गीत सुनवा दीजिए, बारिश के मौसम में दीदी, ये प्यासा सावन पिक्चर का गीत है, मेघा रे मेघा मत परदेश जा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये गीत है
0: अभी तो बिल्कुल मेघा को ये बोलना ही पड़ेगा कि मेघारे मेघारे बद परदेश जा और यहीं बरस जा, है ना?
1: अच्छे लगेंगे अभी, उसके अलावा कोई दूसरे गीत पसंद ही नहीं।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो बारिश के मौसम को खूब एंजॉय करते हैं आप अग्रवाल जी?
1: जोरदार, बिल्कुल
0: जोरदार, बिल्कुल। तो क्या करते हैं खास, पकौड़े वगैरह बनवाते हैं घर में कि नहीं बनवाते हैं?
1: हाँ, पकौड़े वगैरह तो जैसे चलते ही रहता है महीने में जी दीदी।
0: चलिए चलिए, अच्छी बात है, बारिश का मौसम एंजॉय कीजिए।
1: और उनसे कहना चाह रहा हूँ कि बार बार फोन मत लगाए, यही श्रोता रोज फोन लगाते हैं, इसमें आपको नहीं मालूम है, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि रोज फोन नहीं लगाए।
0: जी जी बिल्कुल, आपकी
1: बाकी वो समझ ले अगर वो सुन रहे हो तो।
0: सही बात है, देखिए हम भी सबसे निवेदन करते हैं कि रोज फोन ना लगाए, लेकिन
1: फोन लगा रहे,
0: सच्ची बात है। अभी अगर आप थोड़ा अंतराल रखेंगे तो आपको भी नए श्रोताओं से जुड़ने का अवसर मिलेगा, है ना? तो चलिए, आपका गीत तैयार है तो पहुंचाते हैं आप तक, है ना? सुनिए।
1: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: अभी आप सुन रहे थे एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में अगला प्रसारण होगा, कृपया सुने और प्रतीक्षा करें।

अनाड़ी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थीं अलका याग्निक और कुमार सानू की, गीतकार थे समीर और रतस बनाई थी आनंद मिलन ने। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

कश्मीर की कली इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की, SH बिहारी की बोल थी और तर्ज बनाई थी OP नैयर ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और कुमार सानू के युगल सुरों में ये दिल की फिल्म का नगमा।

फिल्म संगीत में आइए अब आपको सुनवाते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में रानी मलिक के लिखे हुए नगमे को, जिसे तर्ज से सजाया है अनु मलिक ने और फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी।

आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में आनंद असद भोपाली के लिखे बोलों को, जिसकी तर्ज बनाई है राम लक्ष्मण ने। तो आइए सुनते हैं मैंने प्यार किया फिल्म का ये नगमा।

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में हम तुम्हारे हैं सनम फिल्म का गीत। गीतकार थे परवीन और संगीतकार थे डब्बू मलिक। फिल्म संगीत का कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल सुरों में मिस्टर बेचारा फिल्म से ये नगमा, जिसे लिखा है नवाब आरजू ने और तर्ज बनाई आनंद मिलंद ने।

आइए आपको सुनवाते हैं कुर्बान फिल्म का नगमा, जिसे आवाज़ें दी हैं अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर ने। गीतकार हैं समीर, संगीतकार आनंद मिलन।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। वे आज इंडोनेशिया में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 8 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे और 10 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे, जो पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा आज भोपाल के सतगढ़ी में 173 एकड़ में विकसित होने वाले डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में 200 से अधिक उद्योगपति और निवेशक शामिल हो रहे हैं। इस परियोजना से 15,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन की राजपत्र अधिसूचना जारी कर सनवर पटेल को 10 सदस्यीय बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि मनोज मालपानी और अनिमेश पारगो को हिंदू सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण 13 जुलाई से शुरू होगा। अभियान में 5,72,000 पशुपालकों को भेंट करने का लक्ष्य है। शौर्य स्मारक भोपाल में कल आदिवासी क्रांतिवीर स्मृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में देश के 50 से ज्यादा वक्ता काव्य गोष्ठी के माध्यम से आदिवासी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अधिकांश जिलों में भारी बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है आपकी फरमाइश कार्यक्रम। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सरमती पंचोलिया। बड़वा से प्रवीण, शिमाली, मीना, आदित्य, आदिति, शिवानी और मीनूराज शिमाली। तो आइए आप सभी की पसंद पूरी करते हैं और

आप सभी की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का मर्डर फिल्म का ये नगमा, जिसे आमिर जमाल ने आवाज़ दी है। सईद कादरी के बोल हैं और अनु मलिक की तर्ज। तो आइए सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये नगमा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आइए, अब सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। संभाजी नगर से राजेश, राजदीप, राशि और शीतल। आप सभी ने सुनना चाहा है बरसात फिल्म का नगमा, आवाज़ें सोनू निगम और अलका याग्निक की, गीतकार समीर और तर्ज बनाई नदीम श्रवण ने। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राशि रक्षित, चितरंजन कमल उमेश सरोज आरती रेखा रितिका ऋचा रिया रीत ऋषभ और इनके परिवार के सदस्य, गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर और आरती। आप सभी ने सुनना चाहा है बरसात की रात फिल्म का नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। साहिर लुधियानवी की बोल हैं, तस बनाई रोशन ने।

सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हमीदा, अस्मा, सालिया, शुएब, मुश्तबा, रऊफ़ और शाहिद। गांधीबाग अकोला से रमेश और वैशाली। मुरादाबाद से अयूब खान, इरम, गुड़िया और शुएब। आप सभी ने सुनना चाहा है क्रिश फिल्म का नगमा सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। इब्राहिम अश्क के बोल हैं और राजेश रोशन ने इसकी तर्ज बनाई। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं क्रिश फिल्म से ये नगमा।

0: इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
4: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
4: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
4: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
1: अरे
4: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
4: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
4: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: अरे मौसा जी जल्दी चलो, अरे गाड़ी आ गई है। अरे शादी में चल रहा है ना?
9: अरे मैं नहीं जाता कहीं शादी में, मैं तो सुन रहा हूँ मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर। तुम जाओ शादी में जाना हो तो।
10: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
11: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
12: बड़े अच्छे लगते हैं
13: क्या
12: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
13: और
11: आकाशवाणी इंदौर। सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
14: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
15: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
14: तो सुनते रहिए मालवा की शान
16: आकाशवाणी इंदौर।
15: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
17: GST काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। HS कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट्स सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती GST दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
18: मालवा की शान
19: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत।
18: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
20: GST से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई GST नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह GST छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
0: मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं धारावाहिक हंसना मना है का पांचवा भाग।

0: लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी। वैलेंटाइन डे किसी को अच्छा लगा तो किसी को बुरा, कोई खुश हुआ तो कोई खफा हो गया। अरे लाख मना करें आप, मगर गोपाल तिवारी कहां मानने वाले।
1: एक फेस्टिवल अभी घुसपैठिए की तरह हिंदुस्तान में घुसाया, और घुसा ऐसे कि हिंदुस्तान तो त्योहारों का देश है, यहां तो हर दिन त्योहार है। कैसे त्योहार? बैठकी, भैया दूज, धनतेरस, नरक चौदस, दिवाली, पंचमी, छठ, नाग पंचमी, दुर्गाष्टमी, रामनवमी, दशहरा, गन्ना ग्यारस, भीमसेनी द्वादशी, धनतेरस, नरक चौदस, दिवाली। अब ये बताओ कौन सा दिन खाली। मतलब त्योहारों का देश हिंदुस्तान, लेकिन जिन देशों में त्योहार नहीं है अब वो क्या करे, उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। यार हिंदुस्तान तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे रोज त्योहार है, वहां कभी कुछ पकवान बन रहे हैं, कभी होली खेली जा रही, तो कभी ईद, तो कभी दिवाली, तो कभी क्रिसमस। यानी स्वर्ग की कहीं कल्पना है तो हिंदुस्तान में है, क्योंकि विश्व के जितने त्योहार हैं उसमें से अधिकांश हिंदुस्तान उसका जनक है। एक त्योहार विदेश से आया और वो त्योहार धीरे धीरे संक्रमित कर रहा है हमारी युवा पीढ़ी को, उस पर एक व्यंग है और मजा लीजिए। मैं उसके विरोध में भी बात नहीं कर रहा, उसके पक्ष में भी बात नहीं कर रहा, केवल आनंद लेने की बात है। आइटम का नाम है वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे एक ऐसा त्योहार जिसे पाश्चात्य संस्कृति में मनाया गया, जिस दिन किसी संत ने यह कहा कि हम एक दूसरे में प्यार बांटे, एक दूसरे के साथ स्नेह बांटे, ये इसका सच्चा मैसेज था। और अभी जो उसका जो रूप हो गया है विकृत, वो भी हम देखेंगे इस आइटम के अंदर। वैलेंटाइन डे के कम से कम 2-4 दिन पहले लड़कों में विशेष तैयारी होती, और कैसी तैयारी वो देखिए साहब, लड़कों की तैयारी। 4-6 लड़के हैं और लड़कों में चर्चा चल रही है। तुम बता संजू कैसा क्या तुम्हारा कलर? अरे यार गुरु, यार जींस ले ली है, अब टी शर्ट की यार जगह नहीं हो रही, तुम दिलवा दो। तुम्हें काम करो, 20 पड़े हैं। हाँ पड़े, तुम्हें काम करो, वहाँ चलो, वहाँ गोल बाजार के वहाँ सब सेकंड हैंड मिलते हैं। अरे कोई पहचान जा, अरे कुछ नहीं अपन दे रहे हो चलेंगे। यार तुम्हारी क्या व्यवस्था यार? अरे यार जब क्या हुआ, पिछले बार कुर्ता पहन के गए रहे तो वो यार उन्हें अच्छा रिस्पांस नहीं। इस बार क्या व्यवस्था तुम्हारी? यार लेदर वाली जैकेट मिल जाए। अरे तुम भी बड़े भाई ना, उधारी के चक्कर में हर समय रहते, तुम आओ एक काम करो, शाम को आओ, हम दिलवाते हैं, वो चच्चा की है, हम दिलवा देंगे सेटिंग से, चिंता नहीं करो तुम। तुम्हारी क्या व्यवस्था यार? यार मतलब कुर्ता मिल गया। हाँ मिल गया कुर्ता, और मतलब जीन्स भी सब मिल गई। अब यार बड़े भाई यार जूते की बहुत दिक्कत, क्या? अरे बोले यार वो जूते यार ढीले पड़ रहे हैं यार, और छोटे भाई के लिए तो वो बहुत गड़ रहे हैं, काट रहे हैं यार। तो बोले फिर क्या व्यवस्था? पैसे की व्यवस्था करी यार, 250-300 रुपये। हम सोच रहे हैं यार सदर से मतलब जाके ले लें जूते। अरे यार तुम सदर जाने क्या जरूरत, हर चीज सदर जाना, गोरखपुर जाना, यहीं मिल जाएंगे। तुम बोलो ना कितने चाहिए तुम्हें। और विश्वास नहीं है तो तुम मतलब चौदह को चलना, मुफ्त दिलवाएंगे अपन। और सुबह से माहौल बन रहा है, और सब सुबह से अपना बिल्कुल टीम टाम होके, और जो दुकान होती है बार्बर की वहाँ भी भीड़ लगी हुई है, शेविंग वेविंग बन रही है बढ़िया। अरे तो खूंट निकाल दी, अरे यहाँ से, अरे आज बहुत तुम उल्टी भी रेजर चलवा रहे, सीधी भी नहीं गुरु, करीब का मामला है ना, तो जरा गड़ना नहीं चाहिए। अरे वाह सही। अब साहब पूरी तैयारियां हो गई, और सुबह सुबह यहाँ इनकी तैयारी चल रही है, वहाँ दूसरे डिपार्टमेंट की भी तैयारी चल रही है।
2: तुम्हारा कैसा क्या? नहीं हमने तो ना नई ड्रेस बनवाई है, और ये शॉर्ट ब्लाउज, शॉर्ट ये शॉर्ट वो, तू तो बिल्कुल आजकल इतनी शॉर्टकट होती जा रही है। ऐसा नहीं करने की, अल्लाह सब हो गया, बाद में हम लोग को पता चल रहा है। नहीं रे तेरे को तो ना कितनी पक्की सहेली थी ना, हाँ मालूम पक्की सहेली, पिछली बार बुलाया था वहाँ,

0: बाद में कजन बोल नहीं वो कजन ही हमको चार आ रही। एक बात बता जिसको तुम कजन कह रही थी परसों तक तो मेरे कजन थे, तुम आए कैसे हो गए? अब साहब ये सब चर्चाएं, वहां पुलिस महकमा भी जो है अपनी तैयारी में लगा है और आदेश दिए जा रहे हैं।
1: ऐसा है कि देखिए देश में ये जो त्योहार आ रहे हैं इनसे बड़ी दिक्कत हो रही है, समझ रहे नहीं आप, हमारी युवा पीढ़ी बिगड़ती चली जा रही है। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी जगह हैं खासकर पॉइंट है ना, कॉलेज वगैरह हो गए, गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल, कॉफी हाउस और जहां जहां मीटिंग पॉइंट है पूरे में सब में रहेंगे। और सुनो तुम इधर आओ, रेखा, सुशीला, श्यामा तुम इधर आओ, कर लो तुम भी जाओ। एक चीज ध्यान रखो कि कल तुम लोग विदाउट यूनिफॉर्म रहो।
0: क्यों सर, यू विदाउट यूनिफॉर्म?
1: समझो बात, जितनी कह रहा है मिशन है हमारा, विदाउट यूनिफॉर्म रहोगी और अगर कोई फूल दे तो ले लेना।
0: नहीं सर, हम किसी से भी,
1: अरे तुमको फूल लेने का मतलब हम ऐसा नहीं बोल रहे, फूल दे तो ले लेना और उसके बाद फिर मतलब झुराई चालू, समझ गए नहीं समझ गए?
0: ये पूरा वहां भी आदेश चल रहा, वहां भी बड़ी तैयारियां हो रही साहब। अब सुबह जब हुई वहां फूल वाले भी अपना जुगाड़ करके फूल लाए हैं और 2 रुपए की कली 20 रुपए में बेचने के चक्कर में है, कुछ प्लास्टिक की कलियां भी लाए हैं, उनकी भी तैयारियां हैं। और देखिए सुबह का वक्त और सब अपने अपने मुहिम में चल पड़े और कॉलेज के पास, स्कूल्स के पास, बच्चों में सब में बड़ा जोश है त्योहार को मनाने का। जो त्योहार नहीं मनाने देना चाहते उनमें भी बड़ा जोश है, क्यों नहीं मनाने देना चाहते? उसमें कुछ लोग नए शामिल हुए दूसरी पार्टी से, क्यों बोले पिछले साल तो तुम विरोध नहीं कर रहे थे बाबा, इस बार? अरे नहीं यार, पिछले बार हम फूल लेके गए तो यार मना कर दिया हमने, बोला ठीक है स्वच्छ विरोधी में शामिल हो जाओ। बोले गुरु इस बार तो बहुत मतलब चटकाना है। बोले तुम क्यों, तुम उसको मारे क्यों रहे पिछली बार? अरे वैलेंटाइन का तो बहाना रहा, कोई बोलता नहीं हो, चक्कर में मरना ही चक्का दो। ये सब चर्चाएं हुई। अब जो फूल देते हैं और लेते हैं, जिनका मामला पहले से पटरी में है उनकी बात अलग है, और जो पहली बार हौसला बढ़ाते हैं उनके साथ बहुत गजब बात होती है। कैसी बात? अब मान लीजिए लड़का दे रहा है तो वो 3-4 बार सोचेगा कि कहीं दे ऐसा ना हो कि रिवर्स में झापड़ पड़ जाए। माने एक बड़ा डर रहता है और लड़कियों को भी डर रहता है, लेकिन उन्होंने भैया ना देख ये वो बाजू वाला देख रहा हूँ, शिकायत कर देगा। अब जैसे ही उसने फूल दिया, एक्सक्यूज मी फूल, मुझे आपसे बात नहीं करनी,
1: हम आपको बहुत मतलब चाहते हैं, आप चाहो या ना चाहो, आप जा नहीं तो हम बोल देंगे अभी शोर मचाएंगे, आप फालतू ने नाटक नहीं करो, आप प्लीज दे लीजिए
0: माम। अच्छा रहने दीजिए, हम जा रहे, वो भागा। ये साहब ऐसी कई घटनाएं घटी। अब दोस्तों की चर्चा चल रही है, एक चौबारे पे मैं गया, काफी दोस्त बैठे हुए हैं, शाम का वक्त है और उनकी समीक्षा चल रही है कि बॉस फूल मंडी में क्या स्थिति है, कॉलेजेस में क्या स्थिति है, यहाँ क्या स्थिति है और क्या चर्चा हो रही है। देखिए साहब, एक उसमें से गैंग लीडर है और वो सबको एक एक को बुला के पूछ रहा, अरे तुम आओ बेटा, तुम बताओ तुम्हारे फूल देने का क्या हुआ, तुम भी बताओ फूल मिले कि नहीं मिले। अरे भैया यार फूल देना तो है लेकिन मंडी में फूल नहीं है यार। तो तुम एक काम करो ना, तुम वहाँ चले जाओ फूल मंडी बड़े बाजार के पास चले जाओ। अरे भैया कह रहे यार, गुड्डू भी कह रहा, क्या हुआ भैया? गुड्डू से पूछो क्या तुम रो कह रहे यार, भैया हुआ क्या?
2: भैया हम फूल लेने गए थे यार, 20 रुपया के 3 कली की बात है यार, बाप रे ऐसा टल्ला टल्ला आ रहा है, बाप रे कमर अड़ गई गुरु, बहुत बड़ा मारा माँ कसम बहुत मारा।
0: और जा फूल लेने। ये घटनाएं हमने एक से पूछा, अच्छा एक काम करो, तुम्हारे इधर लगे रहे फूल, तुम्हारे इधर के फूल का क्या हुआ? अरे विजय रात ही में कोई चुरा के लेकर, हमने सोचा सुबह ताजा देंगे, वो ताजे के चक्कर में भाषा भी चला गया विजय। और तुम्हारे इधर, तुम इधर आ, तुम्हारा क्या नाम?
3: हमारा नाम झोरी लाल।
0: अरे बहुत सुंदर झोरी, झोरी बेटा तुम्हारे तो बगीचा लगा ना, तुम्हारे कौन से फूल लगे?
3: हमारे इधर तो गेंदा के लगे।
0: अरे गेंदा के फूल नहीं दिए जाते यार, तुम आओ, तुम्हारा क्या नाम है?
3: जी खजूरी।
0: क्या नाम?
3: खजूरी।
0: अरे बहुत सुंदर खजूरी, तुम्हारे इधर बेटा कौन से फूल लगे?
3: हमारे इधर तो, रात रानी के लगे।
0: अच्छा। रात रानी के फूल नहीं दिए जाते यार,
3: नहीं तो हम तो देंगे।
0: अरे रात रानी के फूल नहीं दिए जाते, कब दोगे तुम?
3: दिन में नहीं देंगे, बहुत डर लगता है, रात रानी के फूल रात में कल्टी

0: अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारा कलर मैचिंग है, तुम फूल कौन सा दे रहे हो?
1: ये ऐसा है, गोरा कलर होता तो अपन लाल वाला फूल गुलाब का दे देते, लेकिन पक्के कलर की हम सोच रहे हैं कि मतलब मैया को जासौन का चढ़ा दे।
0: अब ये साहब फूलों की चर्चा चल रही, एक से बुलाया तुम इधर आओ, तुम कहा के फूल दे?
2: अरे भैया हम नहीं दे रहे फूल, फूल के पीछे बहुत दिक्कत।
0: तुम क्यों नहीं?
2: अरे कह रहे फूल देने यार, हम लाइन में लगे भैया, 400 जन के फूल ले रही हूँ, वापस आ गए।
0: क्यों तुम्हारे के लिए नंबर ही नहीं आया भैया? तो फिर
2: हम भी लेके आ फूल, अब दूसरा वाला दें।
0: कौन सा दोगे?
2: बेशरम का।
0: ये अलग अलग फूलों की चर्चा चल रही। एक को पूछा क्या भाई तुम काहे के फूल दे रहे? कहने लगे गुरु हमारी जो है ना सफेद कपड़े की बहुत शौकीन। क्या झक कपड़े पहनती गुरु मार एकदम। अब कौन कौन सी कंपनी के पाउडर ऑर्डर से धो के बहुत झमाझम कपड़े, सफेद कपड़े, सफेद जूती और सफेद बिल्कुल एकदम बालों में रिवेन रिवेन, मतलब बिल्कुल सफेदी की चमकार है। कहने लगे फिर आप बिल्कुल चांदनी बदन गुरु, हम तो चांदनी बदन को चांदनी रात में आप बिल्कुल सफेद कपड़ों में चांदनी के फूल देंगे।
1: बात अच्छे।
0: अब ये फूलों की चर्चा चल रही है। हमने पूछा काय बड्डा तुम कैसे फूल दे रहे? हम कभी नहीं देंगे बाबा फूल। क्यों?
2: अरे गुरु यार हमने बोला फूल दे तो उसने कहा तुम अप्रैल में आना।
0: एक लड़के को बुलाया और उससे पूछा तुम आओ तुम्हारा नाम?
3: जी झोरी।
0: अरे कैसे कैसे नाम धरते तुम लोग यार, झोरी दरा बेटा तुम कहाँ रहते?
3: जी ग्वारी घाट में।
0: ग्वारी घाट में रहते, बहुत खूबसूरत बात है, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भी रहते हैं। अब ये बताइए ग्वारी घाट बड़ा धार्मिक स्थल भी है, माँ नर्मदा का सरिल है और ग्वारी घाट में बहुत बढ़िया फूलों की खेती भी होती है, नर्सरी लगी है, वहाँ तो फूल जरूर मिल जाएंगे?
2: नहीं भैया वहाँ के सब फूल मतलब पहले ही कट गए, बिक गए भैया, एक्सपोर्ट हो गए।
0: अच्छा एक्सपोर्ट हो गए?
2: हाँ भैया इस बार फूल नहीं है वहाँ, बहुत महंगा गया गुलाब इस बार वहाँ का,
0: तो अभी कोई फूल नहीं मिलेंगे।
2: मिलेंगे ना भैया,
0: तो कौन से फूल?
2: खारी वाले।
0: इसी दौरान मैंने एक पार्क का सर्वे किया, पार्क में देखा कि 2-3 लोग यहाँ वहाँ बैठे हैं और बड़े उदास बैठे हैं। एक मित्र को मैंने देखा कि वो परिचित थे कहीं से, बड़े उदास बैठे। हमने पूछा क्यों क्या हुआ तुमको यार?
2: अरे बोले यार भैया यार बहुत दिक्कत हो गई। बोले क्यों क्या हुआ? बोले यार हमारा मतलब बहुत दिन से सिलसिला चल रहा था, आज फाइनल बात होना थी, तो यार हमारे पिताजी ने कहा कि नहीं उसके पिताजी क्या देंगे, दहेज में कुछ दे नहीं पा रहे हैं, एक काम करो तुम तो वो दूसरी वाली पार्टी उसको हमने यस कर दिया और वहीं शादी करो तुम। तो यार वो वहाँ से मतलब दिल टूट गया यार, क्या बताएं। तो फिर बोले फिर हुआ क्या? तो बोले यार हम क्या बताएं बहुत दुखी हैं। वो शायराना अंदाज के आदमी थे तो उनने उसी अंदाज में अपनी बात बयां की कि मोहब्बत में मेरा सर फूटा, मोहब्बत में मेरा सर फूटा, हाथ टूटा पैरों में दर्द आया है। मोहब्बत में मेरा सर फूटा, हाथ टूटा पैरों में दर्द आया है, और मैं जब निकला उनकी गली से तो उन्होंने अखियों के झरोखों से देखा और फरमाया बाहरो फूल बरसाओ।
0: लोग अलग अलग तरह की शर्त लगाते हैं और शर्तों की बात होती है, लेकिन उसके पहले एक बात, बात वैलेंटाइन डे की चल रही थी। बिटिया जब घर में पहुंची तो पापा पहले से मौजूद थे और पापा ने जैसी बिटिया को आते देखा और क्या बात की।
1: कितना बज रहे हैं?
4: पापा 5:30।
1: अच्छा कॉलेज कितने बजे छूटता?
4: पापा जी 3:30 बजे छूटता।
1: तो इतने देर क्या कर रही थी?
4: नहीं वो सहेली के यहाँ चली गई थी तो इसलिए लेट हो गई।
1: हमें सब पता है सहेली के यहाँ चली गई थी तुम, और ये हाथ पे पीछे क्या है?
4: नहीं पापा कुछ नहीं।
1: हाथ दिखाओ।
4: नहीं वो कुछ नहीं।
1: हाथ दिखाओ, हमने कहा नहीं अभी, अब हाथ दिखाओ। रोने रोने की बात नहीं है।
0: अच्छा मतलब गुलाब की कली, हम समझ गए कहाँ से तुम आ रही हो।
4: पापा मम्मी हमको बोलते।
0: अच्छा तुमको नहीं बोले, किसको बोले?
4: मम्मी को।
0: क्यों मम्मी ने क्या किया? और मम्मी है कहाँ तुम्हारी? मम्मी कहाँ? देखो बेटा
4: मम्मी नहीं है।
0: क्यों कहाँ गई मम्मी?
4: मम्मी वहाँ गई है प्रवचन सुन।
0: क्यों आज किसके प्रवचन हो रहे हैं? कौन संत आ गए?
4: वो संत वैलेंटाइन आए।
0: और जैसी मम्मी आई, आइए कहाँ गई थी?

0: जी आए थे तो उनका प्रवचन सुन। और ये हाथ में क्या तुम्हारे? अच्छा पूरा बुके लेके आई हूँ तुम गुलाब का, बहुत अच्छे। कौन ने दिया ये?
1: नहीं सब सब जन चढ़ाने को लाए, नहीं तो मतलब आखिरी में बचे वाले हम,
0: तो हमको ना बता दो बिल्कुल। ये ऐसी बहुत सारी बातें वैलेंटाइन में हमने सुनी। एक और बिटिया बिल्कुल सबसे अलग, सुबह उठी पूजा की और 200 रुपए की उसने गुलाब की माला दो महीने पहले बुक कर दी थी। वो गुलाब की माला उसने ली और गुलाब के दुकानदार से कहा कि एक कली मुफ्त। हाँ मैडम, बोले आपने 200 रुपए की माला ली, एक कली की बात करने, ये लीजिए। बढ़िया पैक करके उनने खुशबू उशबू डाल के और वो थर्माकोल के बबल और बढ़िया से उसको जरा सजा के वो उसने दिया। और गुलाब की माला उसने ली, साथ में कुछ मिष्ठान लिया और बाबा के दरबार गई। बाबा को एक माला चढ़ाई उसने, हाथ जोड़े आंख बंद बाबा से विनम्र भाव से प्रार्थना की, बाबा मैंने आपका ख्याल रखा, आप मेरा रखिएगा। एक बिटिया फूल लेने के लिए अपने पड़ोस में गई और जैसे ही उसने बगीचे से फूल तोड़ना चाहे, दादी ने फौरन उसको वहीं पर आदेश करके रुका, हाँ हाँ बेटा आज बिल्कुल फूल नहीं।
1: क्यों दादी? मैं तो रोज ले जाती हूँ भगवान जी के लिए फूल और आप आज मना कर रहे हैं, ऐसे में भगवान जी नाराज हो। तुम हमें ना बताओ मतलब कि भगवान जी नाराज हो जाए, हमें मालूम तुम फूल कौन के लाने ले जा रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, सच्ची में मैं भगवान के लिए फूल ले जा रही हूँ। आप बिल्कुल ऐसे में भगवान आपको पाप पड़ेगा और किसी को मना नहीं कर। हमें ना बताओ बेटा, तुम जो उनके लाने फूल ले जा रहे हैं हमें सब मालूम है। आपको क्या मालूम है? ऐसा है बेटा, तुम जितने दिन फूल ले गई आज के बाद फूल ले जाना बंद। क्यों ऐसा क्यों आप कर रहे हैं हमारे साथ जुल्म? ऐसा है बेटा, तुम जौन भगवान के लाने फूल ले जाती हो, वे तुम्हारे वाले भगवान आज हमारी नातिन से एंगेज हो रहे।
2: हंसना मना है,
3: हंसना मना है,
2: रे हंसना मना है,
3: हंसना मना है।
2: कोशिश कोई लाख करे, कहता रहे कि हंसना मना है, मगर लोग हंसेंगे खिलखिलाएंगे। एक बात आपसे खास तौर पे कहना चाहते हैं हम कि इस कार्यक्रम का नाम है
3: हंसना मना है।
2: ले लो भाइयों, ताजे फलों का संसार आपके द्वार पे आ गया। अरे कश्मीर का लाल सेब ले लो, महाराष्ट्र का संतरा ले लो, भुसावल का ले लो केला, सबसे बढ़िया ताजा केला, जबरदस्त और प्यारा मीठा मीठा ताजा केला ले लो भाई साहब।
4: ले केले वाले, ए केले वाले।
2: हाँ बाबूजी, नमस्कार बाबूजी। बोलिए बाबूजी,
4: केले कैसे दिए?
2: ये वाले केले भुसावल के बाबूजी, बड़े प्यारे, बहुत ताजे, बहुत बढ़िया केले हैं बाबूजी, ले लीजिए। अरे भाव क्या लगाए बाबूजी, जो मन करे आपका दे देना, और क्या है।
4: अरे भाई कुछ तो भाव होगा, कैसे दिए आपने केले?
2: अरे आप पूछ रहे तो बता देते, 5 रुपए के 12।
4: 5 के 12?
2: हाँ।
4: अरे यार कुछ कम करो यार।
2: तो 10 ले लो।
5: लाला सेठ जी नमस्कार।
4: नमस्कार नमस्कार, आइए साहब आइए।
5: और क्या हाल दोस्त?
4: और बढ़िया।
5: लाला एक काम करो भैया, जरा जल्दी से 6 साबुन दे दो, नहाने के साबुन।
4: नहाने का साबुन? अच्छा अच्छा, छोटू जरा नहाने के साबुन निकाल लो भैया।
6: सेठ जी नहाने का साबुन खत्म हो गया है। सेठ जी
4: क्या कहा? नहाने का साबुन खत्म हो गया है? भाई साहब नहाने का साबुन तो खत्म हो गया है। एक काम कीजिए कि वो रात को हमारा माल आने वाला है, तो जैसे ही हमारा माल आएगा तो कल वो साबुन आप हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
2: तो एक काम करो, साबुन नहीं है, है ना, आप नाले दे दीजिए, वो पायजामे में जो नाले डाले जाते हैं।
4: अच्छा अच्छा, हाँ। पायजामे का नाला?
2: हाँ,
4: हाँ जी पायजामे का नाला। छोटू पायजामे का नाला देना भैया।
6: सर जी नाला तो पायजामे का खत्म हो गया। सर जी रात में माल आएगा तभी आप आएगा।
4: क्या कहा? पैजामे का नाला भी खत्म हो गया है। भाई साहब क्या है कि वो नाला भी खत्म हो गया है पैजामे का, वो क्या है कि माल आने वाला है और जैसे ही रात को माल आएगा तो हम आपके यहाँ वो नाला और साबुन ये दोनों सामान पहुँचा देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए।
2: माल आने वाला, माल आने वाला। अच्छा फिर आप एक काम करिए, आप बहुत जल्दी से वो जूते की पॉलिश दे दीजिए, वो काले वाली।
4: जूते की पॉलिश?
2: हाँ
4: काली वाली।
2: हाँ, हाँ,
4: वो तो साहब ये रखिए, ये लीजिए, ये काली।
2: हाँ,
4: ये आपने काली मांगी?
2: हाँ,
4: जी ये लाल है, क्या है कि काली जरा खत्म हो गई।

0: वो माल आने वाला है साहब, हमारा जैसी माल आएगा तो हम वैसे आपके यहाँ तीनों सामान पहुंचा देंगे।
1: हमें कोई जरूरत नहीं है, आप एक बात बताइए, आपकी दुकान में ताले हैं?
0: ताले?
1: हाँ ताले, हाँ, ताले।
0: ये देखिए ताले तो सामने रखे, ये देखिए छोटा ताला, ये देखिए बड़ा, ये हरा वाला देखिए कैसा है, ये देखिए।
1: हमें ताले चाहिए नहीं है भाई साहब, हमको ताले नहीं चाहिए हैं। आप एक काम करिए, आप अपनी दुकान का शटर नीचे गिराइए, दुकान बंद करिए, उसमें ताले लगाइए और अपने घर जाइए। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि हंसने से आपकी कितनी मांस पेशियां तनाव रहित हो जाती हैं? नहीं मालूम ना? वैसे एक राज की बात बताऊं, हमें भी नहीं मालूम। मगर अंदाजा है कि 2-400 मांस पेशियों पर असर तो होता होगा, है ना? खैर छोड़िए, विनय जैन एक बार फिर आ रहे हैं आपको हंसाने के लिए।
0: एक साहब डॉक्टर साहब के पास पहुंचे और बोले, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए।
2: क्या बात है
0: डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए।
2: अरे भाई बात क्या है, कहाँ चलूँ मैं? डॉक्टर साहब क्या है कि वो हमारे घर में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। अरे भाई किसकी तबीयत खराब है, जिसकी तबीयत खराब है उसको यहीं ले आऊँ? डॉक्टर साहब वो यहाँ नहीं आ सकती। अरे भाई कौन नहीं आ सकती, आपकी माताजी हैं, आपकी पत्नी हैं, आपकी बच्ची हैं। नहीं डॉक्टर साहब वो क्या है ना कि वो यहाँ मैं उनको ला नहीं सकता। अरे भाई वो हैं कौन? वो डॉक्टर साहब हमारी भैंस बीमार है। भैंस बीमार है? Shut up! Go now! भैंस बीमार है और मेरे जैसे डॉक्टर के पास आप यहाँ पे ये शिकायत लेके आए कि भैंस बीमार है, मैं आपके घर आपकी भैंस को देखने चलूं? मैं मरीज को यहाँ पर देखता हूँ, वो भी जानवरों को नहीं इंसानों को। तुम भैंस की तबीयत खराब लेके मेरे पास आए हो, गेट आउट।
3: अरे डॉक्टर साहब कुछ करो डॉक्टर साहब, हमारी भैंस मर जाएगी। डॉक्टर साहब मैं भैंस को बिल्कुल नहीं ला सकता साहब।
2: ठीक है डॉक्टर साहब को दया आ जाती है, एक काम करते हैं, तुम्हारी भैंस की तबीयत खराब है तो मैं उसको दवाई दे देता हूँ और ये गोली दे देता हूँ, तो तुम ये गोली ले जाओ और भैंस को खिला देना और बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, इसका 50 रुपया लगेगा।
3: हाँ डॉक्टर साहब हम 50 रुपये देंगे।
2: साहब 50 रुपये देते हैं, डॉक्टर साहब उनको 2-3 गोलियाँ देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गोलियाँ देख के साहब उनको खिलाने का तरीका पूछते हैं।
3: डॉक्टर साहब इसको खिलाएंगे कैसे?
2: अरे भाई एक तो भैंस का इलाज बता रहे हैं, वैसे ही हम जानवरों का इलाज करते नहीं है, उसके बाद तुमको हम गोली दे रहे हैं। खिलाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है भाई, तुम चूल्हे फूकने वाली कभी तुमने वो फूकनी देखी है जिससे फूका करते हैं? हाँ साहब हमने फूकनी तो बहुत देखी, बस फूकनी को ऐसा भैंस के मुंह में फंसाना और उसके बाद तुम क्या करना, गोली को लेके फूकनी के बीच में रखना और जोर से एक बार फूंक मार देना, बस गोली अंदर, भैंस की तबीयत ठीक। दूसरे दिन साहब वापस लौट के आए, डॉक्टर साहब ने पूछा कि भाई भैंस की तबीयत ठीक है?
3: बोले साहब भैंस की तो छोड़ो, हमारी तबीयत खराब हो गई।
2: बोले क्या हो गया?
3: बोले साहब जैसे बताया था वैसे ही किया था, फूकनी उकनी सब लगा दी भैंसिया के मुंह में, जैसे ही गोली रखी तो भैंस ने पहले ही फूक मार दी।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हंसना मना है, मगर आपकी न हंसने की कसम तोड़ने के लिए आवाज दे रहे हैं हसोड़ गोपाल तिवारी को।
4: कुछ लोग ऑफिस में भी होते हैं तो ऐसी बात करते हैं कि उसका कुछ मजा ही अलग होता है। एक सज्जन बैठे हुए ऑफिस में अपने कुछ मैटर ड्राफ्ट कर रहे थे और ड्राफ्टिंग के वक्त जो गलतियां होती हैं तो पेपर चूंकि शासकीय होता है तो उसका कैसा भी उपयोग किया जा सकता है, तुरंत उन्होंने 4 लाइन लिखी, नहीं गलत, ऐसा मोड़ा और फेंका उन्होंने, फिर दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, ऐसा कई देर से कर रहे थे। एक बार क्या हुआ कि उन्होंने लिखा कुछ और उसको मोड़ा, फेंकने के लिए विंडो जो होती है, खिड़की होती है, उसमें थोड़ा छेद था, बाहर फेंकने के वो मूड में थे, जैसे ही उन्होंने ऐसा करके फेंका और फेंका तो वो टकरा के वापस आ गया। अरे यार नहीं गया, फिर दिया और फिर फेंका, फिर नहीं गया, 3-4 बार ऐसा हो गया। तो पास में एक जो सज्जन बैठे थे वो इरिटेट हुए और उन्होंने वो कागज उठाया, नहीं भाई साहब ऐसे नहीं फेंकते, देखो निशाना देखना है, और जैसे उन्होंने लिया एक बार में ऐसा फेंका उस तरफ, देखा ऐसे फेंकते हैं। ये ऐसा है हमारे बस की बात नहीं है, आप ही कर सकते हो क्योंकि आप बचपन से फेंक रहे हो। और गजब गजब बातें हो जाती हैं। एक सज्जन गुरंदी बाजार पहुंचे और गुरंदी बाजार पहुंचकर उन्होंने कुछ चीजों के रेट पूछे और रेट कैसे पूछे, क्या बात हुई देखिए। एक तोता बेचने वाला था और तोता बेचने वाले के पास गए और तोते की क्वालिटी वाइज उसके रेट्स थे, वो पूछ रहा है तोते के बारे में, देखिए। अरे भैया ये तोते दिखा रहे जरा। हाँ साहब कौन सा तोता, देखना चाहेंगे जरा? वो वाला दिखाओ, वो जो लोहे के पिंजरे में है, जो आर्डनरी सा, वो जिसकी कंठी इंटी है और बहुत बढ़िया सा है, कैसा तोता, वो दिखाओ जरा, जरा कैसा लग रहा है वो। साहब ये जो तोता है, इस तोते को करण तोता बोलते साहब, ये राम राम सीताराम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलता सर, हेलो बोलता है मिले तो, हाय बोलता है मिले तो, बाय बोलता है जाए तो, और मोहल्ले में कभी मिल जाए, कभी कॉलोनी में मिल जाए तो फौरन बोलता है काय, तो हाय बाय और काय का तीनों का मैच है इसका साहब, बड़ा इंटेलिजेंट को ये जो है तोता है, आप चाहे तो ये ले लीजिए।
5: कितने का है
4: साहब? ये जो तोता है ये मात्र 200 रुपए का है।
5: अच्छा,
4: उसके बाद वो जो बहुत बढ़िया सा प्यारा सा तोता और बिल्कुल गजब लग रहा है, वो तोता दिखाओ जरा, वो चांदी के पिंजरे में उसको दिखाओ। हाँ साहब, ये जो तोता है, ये तोता कुछ काम करता है, इधर के उधर, उधर के इधर करता है साहब। ये तोता, इसकी पगार बहुत कम होती है, लेकिन ये उससे ज़्यादा कमाता है। तोता बहुत काम का है, बड़े बड़े काम कर देता है सर, जो काम आप चक्कर लगवा लगवा के नहीं करवा पाएंगे ये तोते कर देते हैं साहब। ये तोता जो है 2000 रुपये का है, कम बोलता है, यस सर नो सर बोलता है।
5: अच्छा
4: अच्छा, ये जो सोने के पिंजड़े में, सोने के झूले में सुनहरा सा वेल गजब झम तोता दिख रहा है, जो जिस तोते के एक पंख में इतनी शार्पनेस है, इतना बढ़िया शाइन है, ये तोता थोड़ा देखा साहब। जिस तोते की बात आप कर रहे हैं, ये बहुत कॉस्टली तोता है, ये एक्चुअली सर बहुत लर्निड तोता है, बड़ी जुगाड़ के बाद इस पिंजरे में आया साहब, बड़े मुश्किल से कैद हुआ है, और साहब ये जो तोता है केवल ऑर्डर देना जाता है। नो नो दैट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं चलेगा, ये गलत बात है। हाँ ठीक है, तुम्हें मिलेगा भाई, ये ऐसा नहीं है, ये साहब बहुत बढ़िया तोता है, ये बिल्कुल ऑफिशियल जवान जानता है। अच्छा ये कितने का है? ये 10,000 का है। यार तुम गजबत भी हो यार, जो तोता सबसे ज्यादा काम करता है, सबसे बढ़िया बोलता है, सबसे बढ़िया क्वालिटी है जिसकी, और जो लोहे के पिंजड़े में रखा है, उसको तुम खिला रहे वही अपना चना हो गया, मूंगफली हो गई, और जो सबसे बढ़िया वाला तोता है उसको तो हम देख रहे हैं कि तुम हलवा।
6: संग्रहालय से इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे धारावाहिक हंसना मना है की 5वीं कड़ी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
7: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा आज भोपाल के सतगढ़ी में 173 एकड़ में विकसित होने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 200 से अधिक उद्योगपति और निवेशक शामिल हो रहे हैं। इस परियोजना में 15,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। चुनाव आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा पर उपचुनाव होना है। अधिसूचना के अनुसार नामांकन 13 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे और 30 जुलाई को मतदान होगा। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन की राजपत्र अधिसूचना जारी कर सनवर पटेल को 10 सदस्यीय बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव को हिंदू सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश में पशुपालन व डेयरी विभाग द्वारा दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण 13 जुलाई से शुरू होगा। इस अभियान में 5,72,000 पशुपालकों से भेंट करने का लक्ष्य है। शौर्य स्मारक भोपाल में कल आदिवासी क्रांतिवीर स्मृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश के 50 से ज्यादा वक्ता काव्य गोष्ठी के माध्यम से आदिवासी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और प्रदेश में मानसून सक्रिय है, अब तक औसत 6.4 इंच बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि रतलाम, उज्जैन सहित अधिकांश जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
6: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की है।

प्रिय श्रोताओं, आज के स्वास्थ्य दर्पण में मैं प्रेक्षा सक्सेना आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे

सेल्फ केयर और स्वस्थ जीवन शैली की, जो कि एक दूसरे के पूरक हैं। स्वयं की देखभाल करना स्वस्थ जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। अच्छा स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव नहीं, बल्कि संतुलित दिनचर्या, पौष्टिक आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और सकारात्मक सोच का सुंदर समन्वय है। रोजमर्रा की ये छोटी छोटी आदतें मिलकर स्वस्थ जीवन शैली का आधार बनती हैं। पर याद रखिए, एक स्वस्थ जीवन शैली की शुरुआत स्वयं की देखभाल से होती है। इसके लिए कुछ अच्छा समय खुद के लिए निकालना जरूरी है, तभी हम अपने जीवन को स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल बना पाएंगे। श्रोताओं, आइए सुनते हैं ये मधुर गीत।

0: कार्यक्रम में समय हो गया है भेंट वार्ता का। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बारिश के मौसम में बहुत से ऐसे वायरस हैं जो पनप जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। इन बीमारियों की रोकथाम कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर लोकेंद्र दवे को, और इनसे बातचीत की है महक गुप्ता ने। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: श्रोताओं, आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं गांधी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर, श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेंद्र दवे जी। नमस्कार सर।
2: नमस्कार मैडम, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: सर, बारिश के मौसम में अक्सर वायरल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में कभी कभी हम कोई घातक बीमारी भी कैच कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो कैसे हम इस मौसम में खुद को बचा सकते हैं?
2: देखिए, बारिश में हवा में वातावरण में नमी बहुत रहती है
1: जी।
2: और थोड़ा टेम्परेचर भी कम होता है, तो नमी और टेम्परेचर, ये दोनों चीज़ों का जो मिक्सचर है, ये वायरस के पनपने के लिए बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट बनाता है
1: जी।
2: और इसलिए बहुतायत इस वातावरण के कारण से सांस संबंधी बीमारियां समझो, या हम पेट संबंधी रोग समझो, या आँखों से संबंधी, गले के संबंधी, ये सब वायरस की जो बीमारियां हैं, और इसके अलावा कई सारी सीरियस इलनेसेस हैं वायरस रिलेटेड, वो सभी इस समय बहुतायत से हमारे ओपीडी में हम लोग देखते हैं। तो वायरस की जो बीमारियां हैं उसमें अगर हम आँखों की बात करें तो कंजक्टिवाइटिस एक बहुत कॉमन डिजीज़ है, देन अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, नाक संबंधी, गले संबंधी तकलीफें होती लोगों को, और सांस संबंधी तकलीफों के अंदर वायरल ब्रोंकाइटिस और निमोनिया। निमोनिया सबसे जो घातक होता है, वो जिसकी मॉर्टेलिटी रेट भी काफ़ी होती है, अगर हम उस पर समय रहते ध्यान नहीं दें तो कॉम्प्लिकेट होता है। और पेट संबंधी उल्टी दस्त की जो बीमारियां हैं वो कॉमनली इस मौसम में हम लोगों को देखने को मिलती है
1: जी। सर, खासकर जब रेस्पिरेटरी बीमारियों के बारे में हम बात करते हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, घर में अगर कोई बच्चा या कोई बुजुर्ग या कोई भी व्यक्ति बीमार होता है, ये एक संक्रमित बीमारी होती है, वायरल डिजीजेस, हम उनका ध्यान रखते हुए खुद को कैसे बचा सकते हैं?
2: देखिए, वायरस अगर सांस संबंधी बीमारियों की बात करें तो छींकने पर, खांसने पर, बोलने पर करीब करीब एक मीटर के डिस्टेंस में एकदम से फैलते हैं, ये वायरस की प्रकृति होती है। तो क्लोज कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए बीमार व्यक्ति से, इसलिए हम लोग बोलते हैं, जैसे हमने कोविड प्रोटोकॉल में भी यही बातें की थी, क्योंकि कोविड भी एक वायरस था
1: जी।
2: इसी तरह से जो मौसमी वायरस होते हैं उनसे बचाव के लिए भी हम बोलते हैं, यदि घर में किसी को भी सर्दी, खांसी या बुखार आ रहा है तो उससे एक नियत दूरी बना के रखें, और मरीज के मुंह पे कपड़ा या मास्क जो है रहना चाहिए, उसके कांटेक्ट में उसको सेवा करने वाले जो लोग हैं उनके भी जो है मुंह पे, सांस में अवरोध जो मास्क के रूप में एक रहे तो सबसे अच्छी बात है। दूसरा, जो वायरस के जनित मरीजों के रोगी हैं उनकी सेवा करने वाले यदि संभव हो तो या तो ग्लव्स पहने या हाथों को बार बार धोएं साबुन पानी से, क्योंकि हाथ एक और माध्यम है जिसके माध्यम से वायरस एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचता है। तो ये दूसरी तरीका है जिसमें हम ये कर सकते हैं। और एक जो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है खान पान से रिलेटेड, कि इस समय हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे तो वायरस की बीमारी जो है माइल्ड होती है, नहीं तो वायरस की बीमारी अनकंट्रोल्ड हो जाती है। जो कोमोर्बिडिटी वाले लोग हैं उनको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, प्रेग्नेंट वुमेन है, ये सब लोग जो हैं उनको विशेषतर ये कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहती है वायरस की बीमारी से, इसलिए इन लोगों को विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है
1: जी। सबसे ज्यादा जो हमने कॉम्प्लिकेशन देखा है, जैसे कि आपने बोला निमोनिया
2: जी।
1: निमोनिया एक ऐसा शब्द है जिससे अक्सर लोग डरते हैं,
2: बिल्कुल।
1: तो इस बीमारी के बारे में हमें कुछ बताइए।
2: देखिए, निमोनिया किसी भी मरीज को सांस नली में संक्रमण होता है और वो फेफड़े की तरफ बढ़ता है, फेफड़े में सूजन आ जाती है
1: जी।
2: तो ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट का काम है फेफड़े का, वो काम प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो निमोनिया के जो सामान्य लक्षण है, सर्दी, खांसी, बुखार, चेस्ट में पेन, और उसके बाद सांस में लेने में दिक्कत और पसली चलना, जिसको साधारण भाषा में लोग बोलते हैं, तो ये लक्षण यदि दिखाई दें हाई ग्रेड फीवर के साथ तो निमोनिया की संभावना पूरी है, और ऐसे मरीज को तुरंत अस्पताल में इलाज कराएं, क्योंकि घर पे निमोनिया का इलाज करने में कई बार कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकते हैं
1: जी। सर, इसके अलावा इस मौसम में एलर्जीज भी हमने देखा है कई गुना बढ़ जाती है, लगातार छींके आना, नाक बहना, जरा सी धूल से या पोलन से, तो उनसे हम किस तरह से बच सकते हैं?
2: देखिए, इस समय हरियाली ज्यादा होती है, जंगली घास फूस उग जाती है, वो भी एलर्जी का एक बड़ा कारण होता है। हरियाली में पोलन्स, जो आपने जैसा बोला, पोलन्स भी एक इम्पोर्टेंट कॉज है जो एलर्जी का कारण है। मुख्यतः तो शहरों में और गाँवों में इस मौसम में एलर्जी मिलती फंगस की, क्योंकि दीवारों में सीपेज होता है, और फिर जब दीवारें सूखती है तो दीवारों पर काले हरे धब्बे आ जाते हैं, वो धब्बे एक्चुअल में फंगस है, और फंगस ड्राई होने के साथ हवा में उड़ती है तो लोगों को एलर्जी बहुत करती है। दूसरा जो प्रॉब्लम है, इस समय नमी ज़्यादा होती है, सूरज की रोशनी कम निकलती है, तो जो गद्दे होते हैं, सोफ़ा होता है, मोटे गद्दे, तकिया, कालीन, ये सब जो हमारे घर के अंदर चीज़ें होती है, इनमें डस्ट माइट पनपती है। डस्ट माइट डस्ट के साथ होने वाले बहुत माइक्रोस्कोपिक बारीक कीड़े होते हैं जो नज़र नहीं आते आँखों से, लेकिन उनकी एलर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो डस्ट माइट की एलर्जी और पोलन की, फंगस की एलर्जी, इन तीनों की संख्या बढ़ने की वजह से मरीजों की संख्या बढ़ती है। तो ये कॉमन कॉजेज हैं जिनसे हमें दूर रहना है, बचाव करने की जरूरत है
1: जी। इसके अलावा सर, शहरों में प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ रही है, क्या उसका आपने आपकी ओपीडी में कोई प्रभाव देखा है?
2: प्रदूषण देखिए राउंड द क्लॉक समस्या है। बारिश के टाइम में इस मौसम में प्रदूषण का एक समस्या बड़ी है कि जो पानी गिरता है तो उसके साथ में हवा जो होती है ठंडक, उसमें घनत्व ज़्यादा हो जाता है हवा का, तो जो पार्टिकुलेट मटेरियल होता है हवा के अंदर, जो कण होते हैं वो बहुत नीचे तैरते हैं, तो उसका दुष्प्रभाव निश्चित रूप से हेल्थ पर पड़ता है और कई सारी हेल्थ संबंधी समस्याएं प्रदूषण के साथ भी इस मौसम में होती हैं। तो कॉमनली समस्याएं वही हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, वायरस की समस्याएं, एलर्जी की समस्याएं, प्रदूषण की समस्या।

0: हैं, सभी में आँखों में खुजली हो सकती है, तकलीफ हो सकती है, नाक और गले की समस्याएं हो सकती है, फेफड़े की समस्याएं हो सकती है, प्रदूषण की अन्य समस्याओं में हम लोग न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम्स वगैरह ये सब चीज़ें भी देखते हैं, लेकिन वो लगातार लंबे समय रहने पर होती हैं। इस तरह से शॉर्ट टर्म में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, जो इस मौसम के लिए पर्टिकुलरली ध्यान रखने की बात है
1: जी। फेफड़ों की बीमारियों से संबंधित कोई और बीमारी जिस पर आप प्रकाश डालना चाहेंगे?
0: देखिए, जो आपने जैसे एलर्जी का बोला, तो एलर्जी में लगभग 1/3 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें अस्थमा डेवलप होता है
1: जी।
0: तो इस मौसम में अस्थमा के लिए ट्रिगर फैक्टर होता है नमी, हवा की नमी, और बहुत लोग बादलों में आपने देखा होगा सांस के मरीजों को तकलीफ होती है। तो हम लोग हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि इस मौसम में अपने दवाओं पर पूरा ध्यान दें, और इनहेलर्स अगर प्रिस्क्राइब किए तो इनहेलर्स को प्रॉपर लेते रहें ताकि सांस नलियाँ खुले अच्छे से, और कफ बलगम यदि बन रहा है तो बाहर निकले, नहीं तो उसके दुष्परिणाम होते हैं, अस्थमा का अटैक आता है या सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं, मरीजों को तकलीफ होती है, तो इन सब समस्याओं की वजह से फिर मरीज परेशान होते हैं। तो अस्थमा की एक बीमारी है, और बाकी मौसमी समस्याओं में एक हेपेटाइटिस, इस समय बारिश के टाइम में पीलिया जो होता है वो वायरस जो है पानी से फैलता है, तो पीने के पानी में गंदगी रहे तो वायरल बीमारियों की बात करें तो हेपेटाइटिस भी हो सकता है, उल्टी दस्त भी हो सकता है, इसके साथ में दूसरी जो बीमारियां बैक्टीरियल बीमारियां जैसे हैजा है या टाइफाइड, टाइफाइड का भी इस समय बहुत प्रभाव रहता है। तो ये मौसम संबंधी सारी समस्याएं इस समय होती हैं, और मच्छर जन्य समस्याएं जैसे डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया ये भी बहुत होती हैं। तो हमारे लिए एक तरह से देखा जाए तो इस समय मरीज की संख्या बढ़ जाती है और चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। फीवर के साथ यदि व्यक्ति आया है तो क्या बीमारी हो सकती है उसका पता लगाने में थोड़ी मुश्किलें आती है, पर जांच करके सब चीज़ें कर सकते हैं। तो इसलिए टाइमली अपना इलाज कराएं, जांच कराएं, और सही डॉक्टर के मार्गदर्शन में अपना इलाज कराएंगे तो हमें निश्चित रूप से बीमार से स्वास्थ्य की तरफ ले जाएगा वो, और हमको ये चीज़ में प्रायोरिटी देनी चाहिए बारिश के टाइम में, क्योंकि मैंने जैसा बताया बीमारियों के कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाते हैं यदि टाइम रहते इलाज ना किया जाए तो।
1: जी सर, जैसा आपने बोला टाइम रहते इलाज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अक्सर लोगों में ये मानसिकता देखी गई है कि सर्दी है, ज़ुकाम है, श्वास से संबंधित जब भी कोई बीमारियाँ होती हैं

0: होम रेमेडीज से हम काम चला सकते हैं, लेकिन यदि सर्दी जुखाम के साथ बुखार आ रहा है या गले में दर्द पकड़ रहा है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे मरीज को बिल्कुल भी घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसे मरीज को जरूर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। घरेलू इलाज बहुत मामूली सिम्टम्स के लिए हो सकते हैं, जिसमें हम सिंपल पैरासिटामोल लेके और प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स देके पेशेंट को एडवाइस करते हैं रेस्ट करने के लिए, लेकिन माइल्ड सिम्टम्स बहुत कम लोग जो है इसको फॉलो करते हैं, रेस्ट नहीं करते, तो उसके साथ वो फिर कॉम्प्लिकेशन भी किसी किसी को बढ़ जाते हैं। मॉडरेट सिम्टम जहाँ फीवर आने लगता है, गले में तकलीफ होने लगती है, सांस में तकलीफ होने लगती है, तुरंत जाके मरीज को एंटीवायरल और सपोर्टिव मेडिसिन लिखवानी चाहिए, जरूरत हो तो भर्ती भी करना चाहिए। सीरियस मरीज जो है वो तो ऑलरेडी हमारे पास इसी तरह के आते हैं जिनको भर्ती करना बहुत आवश्यक हो जाता है, पर वो स्टेज ना आए तो अच्छा है, क्योंकि सीरियस मरीज निमोनिया के जो होते हैं उनमें 30-40% मॉर्टेलिटी रहती है, मतलब डेथ की संभावना रहती है, तो सीरियसनेस को नहीं पनपने दें, ये मेरा सभी से आग्रह रहता है और इसका सभी को ध्यान रखना चाहिए।
1: थैंक यू सर। आपकी तरफ से कोई और संदेश जो आप हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगे?
0: देखिए, बारिश का मौसम एक वरदान मौसम है मानव सभ्यता के लिए, प्राणियों के लिए, सभी के लिए बारिश बहुत आवश्यक है हमारे लिए जी। लेकिन इस मौसम का लुत्फ उठाएं, साथ में अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी करें, अपना खान पान संतुलित रखें, बाहरी गरिष्ठ चीज़ें ज़्यादा नहीं खाएं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा नहीं खाएं जिसके, और यदि फल फ्रूट वगैरह लाते हैं तो अच्छे से धुलाई करके खाएं, और जो बाहर चाट पकौड़ी वगैरह इस तरह की चीज़ें मिलती है उसमें अपना ध्यान रखना है कि हमें नहीं खाना चाहिए ऐसी चीज़ें, क्योंकि इस मौसम में इन चीज़ों से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। दूसरा, आँखों पर चश्मा लगाना, मास्क बांधना रोड पर, क्योंकि जो डस्ट उड़ती है कीचड़ वाली वो भी बीमारी का एक कारण बनती है प्रदूषण के साथ में, और वायरस के जो अन्य बीमारियां जैसे मैंने बताया कि बीमार व्यक्ति के संपर्क में नहीं जाना ज़्यादा, यदि संपर्क में जाना पड़े तो मास्क लगाना जरूरी है, और हाथों को बार बार साबुन पानी से धोते रहना ताकि हाथ हमारे बीमारी का सोर्स ना बन पाए। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिसे हमेशा ध्यान रखना है हमको। बच्चों को, बूढ़ों को ज़्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनको तेज़ी से बीमारी होती कोई भी जी। उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। डायबिटिक्स और हार्ट डिजीज वाले पेशेंट अपनी बीमारी कंट्रोल रखें और साथ में इन सब चीज़ों का भी पूरा पूरा ध्यान रखें, क्योंकि उनमें भी कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है हमेशा।
1: धन्यवाद सर, हमें आपका कीमती समय देने के लिए।
0: धन्यवाद मैडम।
2: अभी आपने सुनी मौसमी बीमारियों से बचाव विषय पर डॉक्टर लोकेंद्र दवे से महक गुप्ता की बातचीत। आइए सुनते हैं अब ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अब समय हो गया है हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी का। आज हम बात करेंगे कंटिन्यूअस शुगर मॉनिटरिंग की। आज स्वास्थ्य के लिए नई नई तकनीकें आ गई हैं। इन्हीं में से एक है कंटिन्यूअस शुगर मॉनिटरिंग। ये एक छोटी सेंसर आधारित तकनीक है जो त्वचा के नीचे लगाई जाती है और रात दिन ब्लड शुगर का स्तर मापती रहती है। इससे कई बार उंगली में सुई चुभाने की जरूरत कम होती है और शुगर के स्तर में लगातार होने वाले उतार चढ़ावों का पता लग जाता है। यह जानकारी मोबाइल या रीडर पर आसानी से देखी जा सकती है, जिससे मरीज व डॉक्टर दोनों को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। इसका सबसे बड़ा लाभ है समय पर सही कदम उठाना, दवा, भोजन और व्यायाम को बेहतर ढंग से नियंत्रित करना तथा डायबिटीज को सुरक्षित तरीके से संभालना। तो इस तरह की ये तकनीक डायबिटीज के मरीजों के इलाज में बेहद कारगर है। श्रोताओं, अब सुनिए ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, बारिश का मौसम पूरी तरह शुरू हो चुका है। ऐसे में हम आपसे कुछ सेहत सूत्र साझा कर रहे हैं। इस मौसम में संक्रमण, सर्दी जुकाम, पेट की समस्याएं, मच्छरों से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बाहर का खुला और बासी खाना खाने से बचें। हमेशा ताज़ा और गर्म भोजन करें। पीने के लिए साफ, फिल्टर या उबले पानी का प्रयोग करें ताकि पेट की बीमारियों से बचा जा सके। बारिश में भीगने पर तुरंत गीले कपड़े बदलें और शरीर को सुखाएं, क्योंकि गीले रहने से त्वचा संबंधित रोग और सर्दी जुकाम होने का खतरा बना रहता है। घर के आसपास गंदा पानी जमा होने से रोकें, जिससे बीमारियों से बचा जा सके। इस तरह आप मौसम का आनंद ले सकते हैं। श्रोताओं, उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। प्रतिक्रिया हेतु पत्र अवश्य लिखें। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462002। इसी के साथ मैं प्रेक्षा सक्सेना आपसे इजाजत लेती हूँ। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: अरे मौसा जी जल्दी चलो, अरे गाड़ी आ गई है, अरे शादी में चलना है ना?
2: अरे मैं नहीं आता कहीं शादी में, मैं तो सुन रहा हूँ मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर। तुम जाओ शादी में जाना हो तो।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रहना।
0: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: युवाओं के जो

0: जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: GST से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई GST नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह GST छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। हमारे आज के कलाकार हैं छगन लाल वर्मा और साथी। इनके स्वरों में आज हम आपको सुनवाएंगे कुछ बुंदेली लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे छगन लाल वर्मा और साथियों के गाए हुए कुछ बुंदेली लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की थी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए असलम साबरी को। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की है।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे असलम साबरी और साथियों को, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी देर बाद।
1: जल्दी चलो, अरे गाड़ी आ गई है, अरे शादी में चलना है ना।
2: अरे मैं नहीं आता कहीं शादी में, मैं तो सुन रहा हूँ मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर। तुम जाओ शादी में जाना हो तो।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
5: बड़े अच्छे लगते हैं
6: क्या
5: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
6: और
4: आकाशवाणी इंदौर। सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
7: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
6: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
7: तो सुनते रहिए मालवा की शान
8: आकाशवाणी इंदौर।
6: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
9: GST से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई GST नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह GST छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। फिल्म का नाम है अभिनेत्री।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। फिल्म का नाम है बहारों के सपने। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार आर डी बर्मन।

चली जाए, मारना दे डंक नजर को।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। राष्ट्रवादी चिंतक और भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इंडस्ट्रियल पार्क की सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह पार्क औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को गति देगा। लगभग 173 एकड़ में विकसित होने वाला यह स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार का नया आधार माना जा रहा है, जिसमें आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, आईटी एवं एआई आधारित सुविधाएं और लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे। यह परियोजना वर्क लिव ग्रो मॉडल पर आधारित होगी, जिसमें उच्च मूल्य विनिर्माण, गारमेंट, टॉयज, आईटी और एआई से जुड़े उद्योग स्थापित किए जाएंगे।
1: सतगढ़ी में बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क रोजगार के लिए, क्या रहना, खाना, आराम करना, रोजगार पाना, समग्र रूप से भोपाल बदलते समय में एक अलग प्रकार की आर्थिक समृद्धशाली राजधानी बदलने के लिए जा रहा है। मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर अगर कहीं बनेगा तो भोपाल में बनेगा। और रोजगार के लिए आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, पूरे देश के अंदर मध्यप्रदेश वो स्थान है जहाँ सबसे कम बेरोजगार की दर रही है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ग्वालियर में संभाग स्तरीय उन्नत कृषक संवाद सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। ये आयोजन आज शाम राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित होगा। डॉक्टर यादव किसानों से संवाद कर उनके प्राकृतिक खेती के संबंधित अनुभव भी सुनेंगे। मुख्यमंत्री हाईटेक नर्सरी एवं फ्लोरिकल्चर गार्डन का भूमि पूजन भी इसी कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। इस हाईटेक नर्सरी और फ्लोरिकल्चर गार्डन के प्रथम चरण के कार्य के लिए सरकार द्वारा 13 करोड़ रूपये की धनराशि मंजूर की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को इंडोनेशिया की आधिकारिक यात्रा के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता स्थित प्रतिष्ठित प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। ये यात्रा भारत और इंडोनेशिया के बीच 1000 वर्षों से चले आ रहे गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती है। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। मूल रूप से इस परिसर में ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे बड़े मंदिर थे और ये भारत के बाहर भी भारतीय वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यूजी 2026 परीक्षा की फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की समय सीमा 7 जुलाई तक बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में एनटीए ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खातों के विवरण की पुष्टि कर दी है उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एनटीए ने बताया कि अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद इस वर्ष 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द होने के बाद एनटीए द्वारा रिफंड प्रक्रिया चलाई जा रही है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। आज प्रदेश के 23 जिलों में अति भारी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र के अनुसार आज सागर, दमोह, बैतूल, देवास, अलीराजपुर, उमरिया, सिवनी, छिंदवाड़ा और अनूपपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं रतलाम, उज्जैन, धार, शाजापुर, सीहोर, विदिशा, गुना, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी और पन्ना में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया और शिवपुरी सहित प्रदेश के बाकी जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में अब तक औसत 6.4 इंच बारिश हो चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा में कंठाल नदी पर सुसनेर बामनिया खेड़ी के बीच बनने वाले 50 मीटर लंबे पुल का भूमि पूजन कल सांसद रोडमल नागर ने किया। नर्मदापुरम में वन महोत्सव 2026 के तहत हर्बल पार्क से चौरे घाट तक वृहद पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल में कल से 21 दिवसीय संस्कृत रूपक निर्देशन राष्ट्रीय कार्यशाला की शुरुआत हो रही है, जिसका उद्घाटन कल सुबह 10:30 बजे भवभूति सभागृह में किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:15 होने वाले हैं। अब दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीवनोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई है।
3: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
1: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
3: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
4: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उस दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
5: जगन्नाथ सतानेन।
6: दुनिया भर में मशहूर पुरी की रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया, जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
5: जगन्नाथ सतानेन।
1: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
5: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
1: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
7: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किए।
1: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोडोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियोलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमी या एलिजांड्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में तीसरी बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह। गुनगुनाती हुई आती हैं फलक से बूंदें, कोई बदली तेरी पाजेब से टकराई है। जी हाँ श्रोताओं, रिमझिम बारिश का मौसम आ चुका है, धरती की प्यास बुझ गई है, हर मन का इंतजार खत्म हुआ है और मन खुशियों के गीत गुनगुना रहा है। जिंदगी की तपिश मिट गई है, तो आइए ऐसे सुहाने से मौसम में आपके मन की बात करें।

लें। जी हाँ, आपके मन की बात यानी आपके मन के गीत, जिन्हें आपने लिख भेजा है खतों में। और ये पहला खत मेरे हाथ में है धमतरी से आया हुआ, छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले श्रोता हैं रामचंद्र माखीजा काफिर, सविता, बेबी स्वाति, माही, छुटकी, शरद कुमार और इनके परिवार के सभी सदस्य, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम, इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। ये चिट्ठी आई है चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियानामल, पार्वती मोटवानी, राजेश, रेशम मोटवानी, मुकेश भावना, सोमेश्वर यशराज। और ये खत आया हुआ है पेंड्रा छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं देवदास फिल्म का गीत। आवाजें उदित नारायण और श्रेया घोषाल की हैं, संगीत इस्माइल दरबार का और गीतकार नुसरत बद्र। बेगाना वार ऐसे वो गुजरे करीब से, जैसे कि उनको मुझसे कोई वास्ता ही नहीं।

आपकी फरमाइश का अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर है। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारणी, सूरज ज्योति, रियांश और गुड़िया, भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा, कमर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनूराज श्रीमाली, सारणी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारस मणिबाग, पंजाब राव निम्बालकर और संदीप पाटिल। और ये चिट्ठी आई हुई है मुंगेली छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी, योगिता, नितिन, वंशिका और उनके परिवार के सभी सदस्य। और मोटका माफी जिला खंडवा से इसी गीत को पसंद करते हैं जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस पटेल और मन पटेल। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं तमाशा फिल्म का गीत। आवाजें अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की हैं। गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीतकार एआर रहमान। आज कैसी हवा चली कि फिराक आंखें बेख्तियार भर आईं,

कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर है। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। भिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि, जया, जाह्नवी, तृप्तेश और इनके परिवार के सभी सदस्य। छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा। राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। निभोरा से अशोक देशमुख, शरद देशमुख और बबन जोशी। और बुराला खुर्द से आदिनाथ वाघ और अमोल वाघ। और लछनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं आतिफ असलम की आवाज में कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है अजब प्रेम की गजब कहानी। बोल इरशाद कामिल के हैं और धुन प्रीतम की। एक अदना सा करिश्मा है ये उसके इश्क का, मर गया हूँ और मरने

सैन्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है,

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

और अब हम आपको सुनवाते हैं जावेद अख्तर का लिखा हुआ गीत, विशाल शेखर का संगीत। फिल्म का नाम है ओम शांति ओम। आवाज़ें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की हैं। इस गीत को सुनना चाहा है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले ने। इसी गीत की फरमाइश की है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा और मोनिका नूपुर ऋषिका रॉबिन ने। और अगली चिट्ठी है प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शुभा वर्मा, राहुल, ज्योति और अतुल। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत। सूरत गुजरी निगाहों से कितने मेरी, कौन दिल में बसा है तुम्हारी तरह।

0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को इंडोनेशिया की आधिकारिक यात्रा के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता स्थित प्रतिष्ठित प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। ये यात्रा भारत और इंडोनेशिया के बीच 1000 वर्षों से चले आ रहे गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की एक विशिष्ट पहचान है जो व्यक्तियों को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह पार्क औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को गति देगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा UG 2026 परीक्षा की फीस वापसी के लिए बैंक खाते विवरण अपडेट करने की समय सीमा को 7 जुलाई यानी कल तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल में कल से 21 दिवसीय संस्कृत रूपक निर्देशन राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हो रही है, जिसका उद्घाटन सुबह 10:30 बजे भवभूति सभागृह में होगा। प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक आज सागर, दमोह, बैतूल, देवास, अलीराजपुर, उमरिया, सिवनी, छिंदवाड़ा और अनूपपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मुकाबला कल खेला जाएगा, जो मैच भारतीय समय के अनुसार 10:00 बजे टेंट ब्रिज में शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का प्रसारण समय है शाम 5:33, 6:30 और रात 8:15। आज शाम 6 होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। कार्यक्रम आजकल का प्रसारण होगा शाम 6:45 पर। कार्यक्रम आजकल का प्रसारण होगा शाम 6:40 पर और 6:45 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार दर्शन। रात 8 होगा कार्यक्रम सुर्खियों में पब्लिक स्पीक। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 पर। इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा आप सुन सकते हैं रात 10 और आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें आज किसान भाई सुनेंगे

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, वेब्स ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। 3:02 हो चुके हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब संपन्न होती है 5 बजे अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार।

मीडियम वेव यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं हमारी सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत हैं युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवा वाणी।

0: पहले दिमाग में रेबीज का नाम आता है।
1: सही कहा। लेकिन दोस्तों सिर्फ रेबीज ही नहीं, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ब्रुसेलोसिस, लेप्टोस्मारिया भी जूनोटिक यानी जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों की ही श्रेणी में आती है।
0: और पिछले कुछ वर्षों में पूरी दुनिया ने ये भी महसूस किया कि इंसानों, जानवरों और पर्यावरणों का स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आजकल वन हेल्थ यानी कि वन हेल्थ सभी की एक ही सेहत की सोच पर जोर दिया जा रहा है।
1: मतलब अगर जानवर स्वस्थ होंगे तो पर्यावरण साफ रहेगा, पर्यावरण साफ रहेगा तो इंसानों के बीमार होने का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाएगा और पूरी प्रकृति
0: ऐसे बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं।
1: देखो श्रद्धा, बीमारियां सुनने में बड़ी लगती हैं, लेकिन इनके तरीके और बचाने के तरीके बहुत आसान हैं। दोस्तों अगर आपके घर में पालतू जानवर है तो उनका समय समय पर टीकाकरण जरूर करवाइए। उनकी नियमित स्वास्थ्य,
0: जानवर ने काट लिया या खरोंच मार दी तो उसे बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। घाव को तुरंत साबुन और बहते पानी से अच्छी तरह धोइए और बिना देर किए डॉक्टर से संपर्क कीजिए।
1: एक और सलाह ये भी है कि कच्चा दूध या अधपका मांस खाने से थोड़ा बचिए रखिए। हाथ धोने की आदत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाइए।

0: खिलाने के लिए शोर नहीं, खुशबू चाहिए। वे बिना किसी अपेक्षा के खिलते हैं, मुस्कुराते हैं और अपने हिस्से की सुंदरता पूरी दुनिया में बांट देते हैं।
1: तो आइए आज हम और आप ये संकल्प लेते हैं कि जहाँ मिले एक पौधा ज़रूर लगाएंगे। फूलों को सिर्फ तोड़ेंगे नहीं, उन्हें खिलने का मौका देंगे और प्रकृति की इस अनमोल धरोहर को साथ में संजोएंगे।
0: तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब अगली बार जब आप किसी भी याद करेंगे, इसी के साथ इन फूलों से जुड़ा आज का आखिरी गीत।

0: बीज बनते हैं और जीवन का चक्र आगे बढ़ता है।
1: दोस्तों, आपने भी शायद गौर किया होगा कि किसी बगीचियां हमेशा फूलों के आसपास ही दिखाई देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि फूल और तितलियां प्रकृति के बहुत पुराने साथी हैं। एक को भोजन मिलता है तो दूसरे को जीवन आगे बढ़ाने का रास्ता।
0: फूल हमें एक वे कभी अपनी खुशबू अपने लिए नहीं रखते, जो भी उनके पास होता है

0: मुझे उनकी एक बात हमेशा याद रहती है।
1: वो क्या?
0: अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग खुश, अभ्यास कीजिए, और अगर आप खुद खुश रहना चाहते हैं तब भी करुणा का अभ्यास कीजिए। कितनी सरल बात है ना, लेकिन अगर हम इसे अपने जीवन में उतार ली तो शायद बहुत सी समस्याएं अपने आप छोटी लगने लगती है।
1: बिल्कुल सही कहा श्रद्धा। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर बड़ी उपलब्धियों के पीछे अच्छा इंसान बनना भी उतनी ही बड़ी उपलब्धि है। एक मुस्कान, किसी की मदद, किसी की बात धैर्य से सुन लेना, ये छोटे छोटे काम ही समाज को बेहतर बनाते हैं।
0: और शायद यही वजह है कि दुनिया भर के युवा भी उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनका संदेश किसी एक देश, भाषा या धर्म तक सीमित नहीं है। वे इंसानियत की बात करते हैं और यही बात उन्हें पूरी दुनिया से जोड़ती है।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युवा वाणी, ये आकाशवाणी इंदौर है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत, आवाज किशोर कुमार की, बोल मजरू के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: संतोष, श्रीवास, शिव कुमारी।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं। सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम ना।
0: देश एवं विदेश में सुने जाने वाला एकमात्र कार्यक्रम उमंग ही है, जिसे सुनकर मनोरंजन होता है।

आप देते हैं। इसके अलावा आपको दो चीजें और बता दूं कि हमारा इसके अंतर्गत एक चीज और भी आती है, परिचर्चा। परिचर्चा हम 1.5 घंटे का एक सत्र करते हैं जो प्रत्येक शुक्रवार को करते हैं 2:30 से 4 बजे तक। इस 1.5 घंटे के परिचर्चा के अंतर्गत

0: के लिए अभिभावक और शिक्षक, उनकी भूमिका क्या हो सकती है?
1: देखिए, अभिभावक की भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के जीवन में अभिभावक का और शिक्षक का एक महत्व है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात अभिभावक की क्या है, विद्यार्थी को ध्यान पूर्वक सुनना, जो बात वो कहना चाहते हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो शंकाएं हैं
0: जी,
1: उनको बड़े पूर्वक सुनना, ये सबसे पहली बात।
0: बिल्कुल, बहुत जरूरी।
1: कई बार ये होता है कि अगर हमारी बात को कोई अच्छे से सुन ले, समझ ले, तो फिर हमें काफी रिलैक्स फील करता है, राहत मिलती है। दूसरी जो चीज रहती है कि हम

0: मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों के ऊपर बहुत अधिक अपेक्षाओं का हम बहुत अधिक अपेक्षा ना करें, उनको पर्याप्त नींद का हम मौका दें, उनको पौष्टिक भोजन हम करवाएं, और उनको बीच बीच में, जैसे बहुत लंबे समय तक वो पढ़ते तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक उनको दे करके कि ठीक है बहुत लंबा पढ़ लिए, अब थोड़ी देर खेल लीजिए,
1: तो आराम कर लीजिए,
0: आप थोड़ा आराम कर लीजिए। इसके अलावा तनाव प्रबंधन के कुछ सकारात्मक या थोड़ा मेडिटेशन कराने की प्रैक्टिस उनको करा दी, या बीच में जहां वो तनाव में महसूस, उनको थोड़ा सा रिक्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक कोई म्यूजिक आपने सुना दिया, कोई छोटे मोटे गेम उनको करा दिए। और आज के समय में तो बहुत सारे गेम, को जरूरी नहीं है कि ग्राउंड में खेलने वाले गेम हो, इन हाउस भी गेम बहुत सारे होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक गेम ना होने चाहिए, क्योंकि अगेन क्या होगा कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गेम होंगे तो फिर दोबारा फिर उसकी भी एक समस्या रहेगी।
1: जी हाँ।

0: है अध्यापक का और पेरेंट्स यानी कि अभिभावक, अत अच्छा जो कनेक्शन रहे,
1: तालमेल रहे,
0: तालमेल जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, इतनी उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि हमारे श्रोता जरूर इससे बहुत लाभान्वित हों। और वो प्रश्न ये है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और इनके संतुलित उपयोग के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मूल प्रश्न है इनका संतुलित उपयोग।
0: जी, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो संभावित नकारात्मक प्रभाव इसके हो सकते हैं, उनके लाइक अधिक हो गए, हमारे लाइक कम हो गए, यहाँ भी हमने तुलना कर ली,
1: ऐसा होता
0: उसके
1: है।
0: बाद हम क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी भी चीज के ऊपर या सोशल मीडिया में कोई

0: क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय तक अगर वो डिजिटल स्क्रीन को देखेंगे तो उनको नींद आने में समस्या रहेगी और वो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। परिवार के साथ मिलकर के भी हम बहुत सारे नियम तय कर सकते हैं, जैसे आपको पता है कि हमारे जो परिवेश है
1: जी,
0: हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, सो बहुत सारी चीज हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, तो इसके अंदर भी समाज और परिवार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो कवर हो सकती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: जी। तो डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न मेरे मन में आता है श्रोताओं की ओर से कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चों में हीन भावना या नकारात्मकता विकसित हो जाती है। होता यह है कि वे अपनी असफलता को स्वीकार ही नहीं कर पाते। बच्चों में असफलता को स्वीकार करने की क्षमता और सकारात्मक सोच कैसे विकसित की जा सकती है?
0: देखिए, कुछ जो चीजें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं कि जो हमारा विद्यार्थी है उसको किसी भी चीज के सफलता या असफलता के कोई पैरामीटर होते ही नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं होता है।
1: हाँ।
0: एक विद्यार्थी हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हो, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है,
1: हो सकता है,
0: वही पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, वो आर्ट में अच्छा हो सकता है, बाकी किसी अन्य विषय में अच्छा हो सकता है
1: जी।
0: तो हमें ये समझना चाहिए कि उस विद्यार्थी का अच्छा स्किल क्या है, उसका बेटर टैलेंट क्या है, उस टैलेंट को हमें पकड़ना है और उस टैलेंट को पकड़ के उसको और आगे उभारना है
1: जी।
0: पकड़ने से मतलब है कि उसको आइडेंटिफाई करना है।
1: बिल्कुल,
0: उसकी पहचान करनी, और पहचान करने के बाद उसी को आगे और निखारना है
1: जी, उसी को।
0: इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास हो सकते हैं कि केवल परिणाम के अलावा छोटे छोटे लक्ष्य, बड़े जो कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे लक्ष्यों में, छोटे छोटे कार्यों में चरणबद्ध तरीके से हम लेकर के चल सकते हैं
1: जी।
0: जैसे जो बात आपने कही कि किसी को असफलता भी मान लीजिए होती है।
1: हाँ, होती है।
0: असफलता से एक चीज तो सिद्ध होती है कि हमने कोई प्रयास किया, अच्छाई है वो ये है कि हमें उस गलती से सीखने का एक अवसर मिला
1: जी।
0: तो जब हमें सीखने का एक अवसर मिला तो उस असफलता का हमारे लिए कोई नेगेटिव नहीं बचा, हमने कुछ सीखा। देखिए, गलती से भी कुछ सीखा ना।
1: हाँ, होता
0: तो,
1: है।
0: तो इसका मतलब क्या हुआ
1: जी?
0: वो भी एक हमारे तरह से एक तरीके से मोटिवेशन का काम वो करता है
1: जी।
0: आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगा, देखिए विद्यार्थी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। विद्यार्थी की हर छोटी चीज का ध्यान रखें, उनको एक वॉच करें, उनको ऑब्जर्व करें और उनकी गतिविधि को देखें, उनका समय समय पर मनोबल बढ़ाएं और उनके कुछ विशेष जो काम हैं या विशेष गतिविधि, अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाह रहा है तो पेरेंट्स ऐसा ना करें कि उसको स्पोर्ट्स के बजाय किसी दूसरे फील्ड में धकेलने की कोशिश करें। देखिए, विद्यार्थी है, उसका जो रुचि है, रुचि के अनुसार वो अपने विषय चयन करे, विषय के अनुसार वो अपने आगे के जो क्रियाकलाप है वो तय करे। हम किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती विद्यार्थी के साथ ना करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स भी जो चॉइस विद्यार्थियों के बजाय पेरेंट्स की जो चॉइस है,
1: जैसे
0: थोप देते हैं, थोपने के बजाय उनको एक अपना इंडिपेंडेंट निर्णय लेने दें। दूसरा, जो वो निर्णय लें उस निर्णय में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। और जो छोटे छोटे जो काम हैं, जैसे किसी ने कोई काम किया तो उसको मनोबल बढ़ाने के लिए उसको शाबाशी देना।
1: हाँ, प्रोत्साहित करें,
0: प्रोत्साहित करें। इसके अलावा उनको जो एक्टिविटीज हैं, खास करके अगर हम देखें तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, किसी भी विद्यार्थी का गेम्स का, स्पोर्ट्स का, बाकी चीजों में ध्यान रखें और हम ये कोशिश ना करें कि विद्यार्थी केवल एक नंबर लाने की मशीन है
1: जी।
0: उसको भी एक ह्यूमन बीइंग समझें और उसके खास करके जो उसकी रुचि के विषय हैं उनमें भी समय दें। और एक जो चार्ट, ये जो हम कहें टाइम टेबल
1: जी,
0: नियमली हम बनाएं, टाइम टेबल हम एक बनाएं, उस टाइम टेबल में भी हम देखें कि कौन कौन से काम उसके हो सकते हैं, तो टाइम टेबल के अनुसार उसका हम काम करवाएं।
1: तो डॉक्टर साहब, अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे और वो ये है कि बच्चे या अभिभावक मनोदर्पण से कैसे जुड़ सकते हैं?
0: देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि मनोदर्पण से जुड़ने के लिए आपको बता देता हूं
1: जी,
0: 8440433 8440433 ये हमारी मनोदर्पण का टेली हेल्पलाइन नंबर है, जिस करके रात्रि 8 बजे तक 12 घंटे के लिए हमारे काउंसलर्स उपलब्ध होते हैं। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभिभावक और कोई भी शिक्षक इनसे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरी जो एक टेली हेल्पलाइन है जो टेली मानस की है, वो नंबर भी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, 14416। ये टेली हेल्पलाइन है टेली मानस की, इस पर भी वो अपने हैं। यहाँ पर स्कूल काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक उपलब्ध होते हैं
1: जी।
0: और अगर किसी प्रकार का कोई ऐसी बात दिखती है कि उनको कोई समस्या दिखती है, आप हमें ईमेल के माध्यम से भी manodarpansail@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, हमारे सहयोग सेशन को वो देख सकते हैं, परिचर्चा सेशन को वो सुन सकते हैं, और एनसीईआरटी के वेबसाइट पर यूट्यूब में भी हमारे सारे के सारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं, तो विद्यार्थी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं।
1: जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए, साथ ही साथ इतना अच्छा परामर्श देने के लिए। तो श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि इस प्रसारण को सुनने के बाद आप आज के श्रोता संवाद कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियाँ, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-806-32 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, इस पर हम आपसे प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा करेंगे, जरूर लिख भेजिएगा।
2: और श्रोताओं, अब इसी के साथ हम होता है तो अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे।
2: नमस्ते। उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

ये आकाशवाणी इंदौर है। सुगम संगीत लीजिए। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में सुनिए प्रकाश पारनेरकर की आवाज में गाई ये रचना।

प्रकाश पार्नेरकर की आवाज में गाई कबीर की इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी इंदौर है। 6:45 हुए हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन भोपाल से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार श्रोताओं, साहित्य कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन, मैं हूं नवनीत चौबे। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली रिपोर्ट है अनूपपुर जिले से, जहां ग्राम पंचायत बदरा में वीबी जी रामजी मिशन का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। पेश है अनूपपुर से हमारे संवाददाता अजीत मिश्रा की यह रिपोर्ट।
1: वीवी रामजी मिशन का जिला स्तरीय शुभारंभ अनूपपुर जनपद के बदरा ग्राम में हुआ। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रीति रमेश सिंह ने कहा कि विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण एक अत्यंत प्रशासनिक एवं दूरदर्शी पहल है। उन्होंने कहा कि आज का दिन देश, प्रदेश, जिले तथा विशेष रूप से ग्रामीण भारत के लिए स्वर्णिम अध्याय के रूप में इतिहास में दर्ज होगा। गांव की समृद्धि ही राष्ट्र के प्रगति का आधार है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण का शुभारंभ किया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रीति रमेश सिंह ग्राम पंचायत बदरा में आयोजित विकसित भारत रोजगार जिला स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प वर्ष 2047 के रूप में स्थापित करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग ग्रामीण भारत के समग्र विकास से होकर गुजरता है। इसके लिए यह मिशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रादेशिक अनूपपुर से मैं अजीत मिश्रा।
0: हमारी दूसरी खबर है उमरिया जिले से, जहां साइबर जागरूकता के तहत 24 जून से 8 जुलाई तक सेफ क्लिक 2.0 अभियान चलाया जा। हम नागरिकों को सुरक्षित वेबसाइट पर क्लिक करने, मोबाइल ओटीपी, यूपीआई पिन आदि किसी दूसरे व्यक्ति से साझा नहीं करने की सलाह दी जा रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे उमरिया संवाददाता अरुण कुमार त्रिपाठी।
2: उमरिया जिले में पुलिस अधीक्षक विजय भागवानी के निर्देशन में साइबर जागरूकता के तहत सेफ क्लिक चलाया जा रहा है। अभियान का शुभारंभ 24 जून 2026 से किया गया है, जो 8 जुलाई तक चलेगा। इस अभियान के तहत आम नागरिकों को सुरक्षित वेबसाइट पर क्लिक करने, मोबाइल ओटीपी, यूपीआई पिन आदि किसी दूसरे व्यक्ति से साझा नहीं करने की सलाह दी जा रही है। अभियान में पुलिस अधीक्षक से लेकर आरक्षक तक हिस्सा ले रहे हैं। नागरिकों को साइबर ठगी से बचाने के लिए जिले भर के स्कूल, कॉलेजों और सार्वजनिक जगहों पर पुलिस लोगों को जागरूक करने की सलाह दे रही है। इसके अलावा डिजिटल अरेस्ट या किने की संभावना पर नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करने की सलाह दी जा रही है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं उमरिया के एसडीओपी।
3: पुलिस द्वारा सेफ क्लिक साइबर जागरूकता का कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में उमरिया पुलिस के द्वारा भी लोगों को लगातार साइबर जागरूकता के प्रति, साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वाकई में आज के डिजिटल युग में साइबर अपराधी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह सतर्क रहे, जागरूक रहे। कभी भी यदि कोई अनजान व्यक्ति आपसे ATM डिटेल, खाता डिटेल, UPI पिन या आपकी निजी जानकारी मांगता है तो बिल्कुल कभी उसके साथ शेयर न करें, आप धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं।
2: समाचार दर्शन के लिए उमरिया से मैं अरुण कुमार त्रिपाठी।
0: हमारी अगली खबर है सीधी से, जहां एक बगिया माक के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा पर्यावरण संरक्षण के साथ महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। ज्यादा जान संवाददाता सचिंद्र मिश्र।
4: सीधी जिले में मुख्यमंत्री मोहन यादव की पहल पर संचालित एक बगिया माँ के नाम अभियान के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा पर्यावरण संरक्षण के साथ महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। अभियान के तहत जिले की सभी जनपद पंचायतों में स्व सहायता समूहों की महिलाओं की निजी भूमि पर मनरेगा के माध्यम से फलदार पौधों का रोपण कराया जा रहा है, जिससे आने वाले वर्षों में महिलाओं की आय बढ़ेगी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी। जिला पंचायत सीधी के CEO शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया है कि जिले में 500 परियोजनाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। प्रत्येक परियोजनाओं में लगभग 100 पौधे लगाने के मान से कुल 50,000 पौधे के रोपण का लक्ष्य तय किया जा रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने निर्धारित लक्ष्य 20 परियोजनाओं की स्वीकृति की है, जिनके लिए लगभग 9,48,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इन स्वीकृत परियोजनाओं पर फेंसिंग और पौधारोपण का कार्य पूरा किया जा चुका है, जबकि शेष परियोजनाओं में फेंसिंग का कार्य तेजी से जारी है। प्रादेशिक समाचार सचिंद्र मिश्र।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अगली खबर है श्योपुर जिले से। जहां स्व सहायता समूह से जुड़ी महिला सदस्यों के खेतों में फलोद्यान विकसित किए जाने की दृष्टि से प्रारंभ की गई माँ की बगिया योजना छोटे किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। यह योजना नगद कमाई का साधन भी बनी हुई है। विस्तार से बता रहे हैं श्योपुर से हमारे संवाददाता अश्विनी बालूठिया।
5: स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं सदस्यों के खेतों में फलोद्यान विकसित किए जाने की दृष्टि से प्रारंभ की गई माँ की बगिया छोटे किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना के अंतर्गत लगाए गए पौधों में अच्छी वृद्धि देखने को मिल रही है। किसानों द्वारा पौधों के बीच में हरी सब्जियां, मूंग इत्यादि की खेती की जा रही है, जिससे उन्हें गर्मियों के इस मौसम में नगद कमाई भी हो रही है। स्व सहायता समूह से जुड़ी दीदियों के खेत में योजना अंतर्गत समस्त कार्य जो है जमीन का चिन्हांकन, हितग्राही और संबंधित परिवार की जानकारी सीपी ऐप के माध्यम से कृषि सखियों द्वारा दी जा रही है। माँ की बगिया योजना अंतर्गत लगभग के पौधे रोपित किए गए हैं, जिसमें अमरूद, आम, नींबू, कटहल के पौधे दीदियों द्वारा लगाए गए तथा ये पौधे अब अच्छे लगे हैं। साथ ही जिन हितग्राहियों द्वारा पौधों की नियमित रूप से देखभाल की जा रही है, योजना के अंतर्गत हितग्राही द्वारा माँ की बगिया में पौध के बीच में खाली जगह पर सब्जी की खेती भी की जा रही है। समूह की दीदी द्वारा ककड़ी, भिंडी, लौकी, कद्दू इत्यादि की खेती की जा रही है तथा सब्जी बेचकर लगभग अतिरिक्त प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए श्योपुर से अश्विनी कुमार बालोटिया।
0: हमारी अगली खबर है शहडोल जिले से, जहां धान उत्पादन क्षमता प्रदेश की औसत उत्पादन क्षमता से अधिक है। जिले में इस खरीफ सीजन में धान का उत्पादन लक्ष्य बढ़ाया गया है। पेश है शहडोल से हमारे संवाददाता अरविंद पांडे की यह रिपोर्ट।
6: शहडोल जिले की धान उत्पादन क्षमता 4058 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। फिलहाल मध्य प्रदेश की औसत उत्पादन क्षमता 3551 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। वहीं राष्ट्रीय औसत 2825 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। उन्नत बीज, सिंचाई सुविधा और किसानों के प्रशिक्षण से यह संभव हुआ है। कृषि विभाग ने खरीफ 2026 के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। जिला 73,729 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान रखा गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 1787 टन अधिक है। मानसून की सामान्य वर्षा और कृषि की आधुनिक तकनीक के सहारे यह लक्ष्य हासिल करने की तैयारी है। खरीफ की मुख्य फसल धान का उत्पादन लक्ष्य 582,323 है। बीते साल यह लक्ष्य 5,78,000 मीट्रिक टन था। इस सीजन जिले में कोदो, कुटकी, अरहर और तिल की पैदावार बढ़ने की संभावना है। सरकार द्वारा मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ने के साथ पोषण सुरक्षा भी बेहतर होगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे।
0: अब हम रुख करते हैं आगरमालवा जिले की तरफ, जहां सोयाबीन फसल की बुवाई शुरू हो गई है। इस बार कृषि विभाग बदलते मौसम के अनुरूप खेती की तकनीक बदलने पर जोर दे रहा है। किसानों को पारंपरिक समतल बुवाई छोड़कर रेज्ड बेड, ब्रॉड बेड फरो और रिज एंड फरो जैसी वैज्ञानिक पद्धतियां अपनाने की सलाह दी जा रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे आगरमालवा संवाददाता महेश शर्मा।
7: खरीफ सीजन 2026 के तहत सोयाबीन फसल की बुआई आगर मालवा जिले में भी शुरू हो गई है। इस बार के अनुरूप खेती की तकनीक बदलने पर जोर दे रहा है। किसानों को पारंपरिक समतल बुआई छोड़कर रेज्ड बेड, ऊंची क्यारी बीएफ और रिज एंड फरो जैसी वैज्ञानिक पद्धतियां अपनाने की सलाह दी जा रही है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं कृषि विभाग की वरिष्ठ कृषि किरण ठाकुर।
8: जब हम बोने की विधि या अन्य तकनीकों के बारे में प्लानिंग करते हैं, तो इस बार बुआई के लिए प्लानिंग जो है, अगर बीबीएफ मेथड से करें बुआई, तो ये होता है ब्रॉड बेड एंड फरो, जिसमें क्यारियां चौड़ी होती हैं और क्यारियों के साथ नाली बनी हुई होती है आउट साइड में। तो जब ये मेथड से अगर अपन बुआई करते हैं, तो इसके तीन मुख्यतः फायदे हो जाएंगे। पहला है, अतिवृष्टि से बचाव हो जाएगा। जब पानी अधिक होता है, खेत से पानी बाहर निकालना होता है, तो जो आउट साइड की

0: डालियाँ होती हैं वो बहुत मददगार होती हैं, पौधे गलने से बच जाते हैं। और जैसे कि सूखा पड़ता है अगर कभी, तो सूखा पड़ेगा तो नारियों से सिंचाई देने के लिए भी यह मेथड उपयुक्त रहेगी।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगर मालवा से मैं महेश शर्मा।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अगली खबर है, जहां 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान चलाया गया। अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक और विभाग के अधिकारी गांव-गांव पहुंचे और किसानों को आधुनिक व वैज्ञानिक खेती के लिए। शिवपुरी से हमारे संवाददाता रंजीत गुप्ता।
3: केंद्र सरकार की पहल पर शिवपुरी जिले में कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग के संयुक्त तत्वावधान खेत बचाओ अभियान चलाया गया। अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक और विभाग के अधिकारी गांव-गांव पहुंचे और किसानों को आधुनिक व वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी। अभियान के दौरान आयुक्ता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किसानों को खरीफ सीजन से पहले भूमि की तैयारी, उन्नत बीज का चयन, संतुलित उर्वरक प्रबंधन और जल संरक्षण की तकनीकें, वैज्ञानिकों ने कीटनाशकों के सुरक्षित एवं विवेकपूर्ण उपयोग पर विशेष जोर दिया। किसानों को समझाया गया कि रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से मिट्टी की सेहत खराब होती है और मानव स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एम के भार्गव ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य उत्पादन लागत घटाकर किसानों की आय बढ़ाना और पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देना रहा। किसानों को जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट और फसल चक्र अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। अभियान में किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता।
2: हमारी अगली खबर है शाजापुर से, जहां साइबर अपराधों की रोकथाम और डिजिटल सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सेफ क्लिक 2.0 अभियान संचालित किया जा रहा है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं शाजापुर से हमारे संवाददाता अजी पाराशर।
4: मध्य प्रदेश पुलिस ने भी साइबर अपराधों और डिजिटल सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सेल्फ क्लिक 2.0 अभियान 1 जुलाई से प्रभावी रूप से संचालित, जो 15 जुलाई तक लगातार चलेगा। 15 दिवसीय इस विशेष जन जागरूकता अभियान की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत ने बताया कि
5: मार्केट में जो भी जो स्थान है जहां पे पब्लिक को हमको बार बार हम कह रहे हैं कि साइबर के संबंध में कोई भी आपके साथ में कोई भी घटना होती है तो उसमें 1930 नंबर पर डायल करके अपने रजिस्टर करें। कई प्रकार के जो साइबर ठगी होती है, ओटीपी से भी होती है, कोई अनजानी लिंक आती है, या कई बार फेसबुक पर वीडियो कॉल्स आते हैं, या हमने कई बार फर्जी लोन ले लिए जाते हैं, कई प्रकार की तरह तरह के प्रकार की, कई बार पेंशन से संबंधित भी आती है और जो सरकारी कई बार योजनाएं आती है तो फर्जी लिंक उस पर बन जाती हैं, इसी प्रकार की भी ठगी होती है, तो उस पर तत्काल आप 1930 पे लगाएं और इन सब चीजों से आप लोग बचे।
4: के लिए शाजापुर से अजीत पाराशर।
2: अब हम चलते हैं सिंगरौली जिले की तरफ, जहां अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर सिंगरौली जिले ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता की। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सिंगरौली से हमारे संवाददाता अमित द्विवेदी।
6: अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 2026 के अवसर पर सिंगरौली ने मध्य प्रदेश शासन के एसएमई विभाग एवं फिक्की द्वारा भोपाल में आयोजित उद्यमी मध्य प्रदेश 2026 कार्यक्रम में सभा आयोजित वेंडर डेवलपमेंट मीट में एनसीएल सिंगरौली की ओर से विपुल कुमार राय सहायक प्रबंधक सामग्री प्रबंधक ने भाग लिया। उन्होंने एसएमई विक्रेताओं एवं उद्यमियों को एनसीएल की निविदाओं में अधिकाधिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया है। इस दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्वामित्व वाले उद्योगों तथा महिला उद्यमियों को सहभागिता निभाने का विशेष बल दिया गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सिंगरौली से अमित द्विवेदी।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन में हमारी अंतिम खबर है विदिशा जिले से, जहां विदिशा जिले में जिला प्रशासन ने वर्षा काल के दौरान आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे विदिशा संवाददाता वेद प्रकाश शर्मा।
7: विदिशा जिले में जिला प्रशासन ने वर्षा काल के दौरान आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु व्यापक इंतजाम किए हैं। निचली बस्तियों सहित जल भराव क्षेत्रों में सतत निगरानी के प्रबंध और बाढ़ राहत शिविरों के लिए सुरक्षित स्थानों का चयन कर लिया है। उधर स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण स्थिति के साथ आवश्यक औषधियों का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया है। जिला होमगार्ड विभाग द्वारा पूर्व से चयनित नदियों के घाटों पर मोटर बोट खोरों की रिहर्सल करते हुए किसी भी प्रकार की जनहानि रोकने की मॉक ड्रिल पूरी कर ली है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए विदिशा से वेद प्रकाश शर्मा।
2: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, 7 बजने को हैं। समाचार हम दिल्ली से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
2: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया नीस के साथ 3रे भारतीय ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और ऐसी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। वे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली में भारतीय प्रबंधन संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषीय व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि द्विभाषीय व्यवस्था के कारण भारतीय प्रबंधन संस्थाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। सरकार ने कहा कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ सकता है। उधर महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन

0: के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल स्पेन से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, सुनिए आज की सभा के शेष कार्यक्रम और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज की सभा के शेष कार्यक्रम।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 बजे आज हम आपको सुनवाएंगे क्लेर कलाकार अब्दुल सलाम नौशाद से आज आप सुनेंगे राग बागेश्री। कों का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10 बजे आप सुन सकते हैं। पब्लिक स्पीक ये कार्यक्रम होगा रात 9:30 बजे से, इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम अब से कुछ ही देर में यानी 7:20 से प्रसारित किया जाएगा। सुर्खियों में ये कार्यक्रम रात 8 बजे आप आकाशवाणी भोपाल से सुन सकते हैं। दिल ने फिर याद किया, ये कार्यक्रम होगा रात 8:15 से।

अभी आप सुन रहे थे आज की सभा, लीजिए अब सुनी कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा आप सुनेंगे रात 10 बजे से, इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। उर्दू कार्यक्रम कहकशा रात 9:30 बजे, कल रात 9:30 बजे आकाशवाणी भोपाल से रिले किया जाएगा। सुर्खियों में ये कार्यक्रम रात 8 बजे, इसे भी हम भोपाल से रिले करेंगे। खेती गृहस्थी कार्यक्रम हर रोज की तरह आप सुनेंगे शाम 7:20 पर। संगीत के कार्यक्रम में हाजी असलम साबरी की गई रचनाएं आप सुनेंगे सुबह 9:15 बजे और शाम 6:30 बजे। लता पगारे की गई लोक रचनाएं आप सुन सकते हैं सुबह 9:00 बजे और शाम 6:45 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में MS गोपाल कृष्णन का वायलिन वादन होगा, प्रसारण समय सुबह 9:30 बजे से। फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन आप सुन सकते हैं सुबह 10:05 से। खेती की बातें सुबह 6:35 पर प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे बरसात के मौसम में किसानों के प्रमुख समसामयिक कृषि कार्य। युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी होगा हर रोज की तरह शाम 5:00 बजे से। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग आप सुन सकते हैं शाम 6:00 बजे से।

ये थे श्रोताओं कल के मुख्य कार्यक्रम। अभी आप सुन रहे थे आज की सभा और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आसीस के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस
3: दीप तुम्हें नहीं इसे मोबाइल चार्ज करना,
4: दिमाग चार्ज कर अपना।
5: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
4: देखा
3: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
5: अब क्या करोगे?
3: फ्री वाईफाई है ना?
4: बुद्धू सुधर जा।
5: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
3: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
5: RBI कहता है
6: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं ले बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भव्य स्वागत, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय चर्चा, प्रगति की होगी समीक्षा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के सतगड़ी में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला रखी, कहा बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश भी मध्य प्रदेश में कर रहे निवेश। ज्ञान भारतम ऐप पर दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियों को सहेजने और संरक्षित करने में देश में प्रथम मध्य प्रदेश, और प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय, आज 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे, जहां से उन्होंने अपने 3 देशों के हिंद प्रशांत दौरे की शुरुआत की। जकार्ता हवाई अड्डे पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और भारतीय प्रवासी समुदाय ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया, जिसमें पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशिया, ये प्रधानमंत्री श्री मोदी की इंडोनेशिया की चौथी यात्रा है और मई 2018 में भारत इंडोनेशिया संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। पेश है एक रिपोर्ट।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
7: अपनी यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करेंगे, वहीं तीसरे और अंतिम चरण में श्री मोदी 10 जुलाई को न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। राष्ट्रवादी चिंतक और भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इंडस्ट्रियल पार्क की सौगात दी। लगभग 173 एकड़ में विकसित होने वाला यह स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क भोपाल और आसपास के क्षेत्र औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार का नया आधार माना जा रहा है। इसमें आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, IT एवं AI आधारित सुविधाएं और लॉजिस्टिक तथा वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे। यह परियोजना वर्क लिव ग्रो मॉडल पर आधारित होगी, जिसमें उच्च मूल्य विनिर्माण, गारमेंट, टॉयज, IT और AI से जुड़े उद्योग स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यहां कहा कि अमेरिका, इंग्लैंड, जापान जैसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश मध्य प्रदेश में 10,000 करोड़ से अधिक का निवेश कर रहे हैं।
9: विश्व के बड़े बड़े देश अब हमारे साथ काम कर रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जापान, कोरिया, ऐसी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था 10,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे अपने राज्य में लगा रहे थे। ये है हमारे काम करने का तरीका।

0: काम करने आ रहे हैं उनका अगर कोई देनदारी है तो ये हमने गए महीने तक की देनदारी पूरी कर दी।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर ने कुवैत की अग्रणी मत्स्य कंपनी और कामदार्स केयर इंदौर के बीच 7,430 करोड़ रुपए के निवेश और बायबैक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। ये एग्रीमेंट मध्य प्रदेश मत्स्य उद्योग नीति 2026 के अंतर्गत हुआ है। इस करार के तहत कुवैत की कंपनी इंदिरा सागर, बर्गी, बाणसागर और बारना जलाशय में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेगी, जिससे 35,000 रोजगार सृजित होंगे। इस करार से प्रदेश के लगभग 6,000 करोड़ रुपए के मत्स्य निर्यात का अनुमान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ग्वालियर में संभाग स्तरीय उन्नत कृषक संवाद सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने किसानों से संवाद कर उनके प्राकृतिक खेती से संबंधित अनुभव भी सुने। मुख्यमंत्री ने यहां से हाईटेक नर्सरी और फ्लोरिकल्चर गार्डन का भूमि पूजन भी किया। इस नर्सरी और फ्लोरिकल्चर गार्डन के प्रथम चरण के कार्य के लिए सरकार द्वारा 13 करोड़ रूपये की धनराशि मंजूर की गई है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर, आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। भारत सरकार की डिजिटल पहल ज्ञान भारतम ऐप के अनुसार दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियों की सूचना दर्ज करने और उनके संरक्षण के मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। ज्ञान भारतम ऐप के माध्यम से 3 जुलाई 2026 को मध्य प्रदेश ने अब तक कुल 34,45,000 पन्नों का पंजीकरण किया है। 12,13,127 पांडुलिपियों का ज्ञान भारतम द्वारा सफलतापूर्वक सत्यापन हुआ है। शेष सत्यापन की प्रक्रिया में है, जिनका चरणबद्ध तरीके से परीक्षण एवं प्रमाणीकरण किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव संस्कृति धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग शिवशेखर शुक्ला ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि आज भी विश्वभर के मंदिरों, मठों, पुस्तकालयों और संग्रहालयों में संरक्षित भारतीय पांडुलिपियां हमारी समृद्ध ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर हैं। प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। आज प्रदेश के 23 जिलों में अति भारी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र भोपाल देवास, अलीराजपुर, उमरिया, सिवनी, छिंदवाड़ा और अनूपपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रतलाम, उज्जैन, धार, शाजापुर, सीहोर, विदिशा, गुना, उदयपुरम, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी और पन्ना में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया और शिवपुरी सहित प्रदेश के बाकी जिलों में भी कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मंडला शहर में आज शाम 4 बजे से शुरू हुई बारिश लगभग 2 घंटे तक लगातार होती रही। वहीं छिंदवाड़ा में बीते 24 घंटों के दौरान 24.2 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है। इंदौर जिले में इस सत्र में अब तक 314.3 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यूजी 2026 प्रवेश परीक्षा की फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की समय सीमा 7 जुलाई यानी कल तक बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में एनटीए ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाते विवरण की पुष्टि की है उनके लिए रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कर्नाटक के राज्यपाल गहलोत कल नीमच जिले के हरकिया खाल स्थित श्री बालाजी मंदिर पहुंचेंगे और वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। छतरपुर के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने औचक निरीक्षण कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के स्थापना दिवस पर वन स्टॉप सेंटर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। शहडोल के सरहट की आजीविका हल्दी प्रसंस्करण इकाई से जुड़े 135 किसानों ने रिकॉर्ड 130 मीट्रिक टन हल्दी का उत्पादन किया है। बैतूल विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आईकोर टैगोर वार्ड के आंगनवाड़ी केंद्र में विशेष शिविर में बिजली संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। सीहोर जिले के आष्टा पचोर शुजालपुर मार्ग पर एक कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 यात्री घायल हो गए हैं। खंडवा में 7 दिवसीय सिविल डिफेंस स्वयंसेवक प्रशिक्षण का आज शुभारंभ किया गया। कटनी पुलिस द्वारा सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। अशोकनगर पुलिस ने 88,000 रूपये के नकली नोटों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शौर्य स्मारक भोपाल में कल आदिवासी क्रांतिवीर स्मृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश के 50 से ज्यादा वक्ता काव्य गोष्ठी के माध्यम से आदिवासी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भव्य स्वागत। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय चर्चा और आपसी साझेदारी में हुई प्रगति। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के सतगढ़ी में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला रखी। कहा, बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश भी मध्य प्रदेश में कर रहे निवेश।

इन पांडुलिपियों को सहेजने और संरक्षित करने में देश में प्रथम मध्य प्रदेश, और प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय। आज 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: दी, ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका,
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो सही जगह, निवेश ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना,
5: RBI कहता है
6: तरो से ही शुरुआत बनो।
7: ये आकाशवाणी इंदौर है, प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी।

ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम सुनने वाला सभी किसान भाई बहन नख आपके बहन तुलसा के राम राम। भाई बहन होनी खरीफ की बुवाई चली रही होगा न कई भाई ने न तो बुवाई कसी बरसात लगा तो हम बुवाई की तैयारी तो पहले से करी लेवा जसो पानी पड़े न उसो बुवाई करी देवा। न आजकल तो खेती में नया नया आधुनिक उपकरण नई नई तकनीक न भी आई गई जेका से खेती करनू बहुत आसान भी हुई गई न समय की भी बचत हुई जाए। तो भाई बहन होनी ऐसी नई तकनीक के बारे में हम बात AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रांतिकारी बदलाव आई गई जेका से किसान भाई नख मौसम की सही जानकारी न मट्टी का स्वास्थ्य विश्लेषण होने से फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद मिले। AI की मदद से फसल में होने वाली बीमारी न को समय रही तो पतो चली जाए जेका से पानी उर्वरक न कीटनाशक न की खपत कम करी हम लागत घटी सकें। भाई उन AI आधारित मॉडल पारंपरिक तरीका न की तुलना में ज़्यादा सटीक मौसम की जानकारी दे जेका से हमारा किसान भाई बुआई सिंचाई न कटाई को सही समय तय करी सकें जेका से बेमौसम बरसात या सूखा से होने वाला नुकसान से भी हम बची सकें। सेंसर ड्रोन न सैटेलाइट तस्वीर न की मदद से AI खेती में नमी न पौधा न का स्वास्थ्य को लगातार विश्लेषण कर साथ ये भी पतो लगे ले कि किना हिस्सा में नाइट्रोजन न दूसरा पोषक तत्व न की कमी छे जेका पहले से पतो होने से किसान भाई सही उर्वरक को इस्तेमाल करें। खेत में पत्ती न की तस्वीर खींची न बीमारी न कीट न को तुरंत पतो लगे ले जेको फायदो ये हो कि पूरा खेत खराब होने से बची जाए न सिर्फ हिस्सा पर दवा को छिड़काव करनू पड़े। किसान भाई नोनी AI आधारित स्मार्ट इरिगेशन

ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफो मिली सका। AIC मृदा अपरदन, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन न वन न की कटाई में कमी आई गई जिका से हमारो दो हुई। तो भाई बहनों ने इतनी अच्छी जानकारी छे जिका से हमारो खेती में भी बड़ो फायदो हो न। भाई बहनों ने अब सुना।

0: भाई बहनों ने अभी हमने शारदा पगारे को गायली निमाड़ी लोकगीत सुनियो न भाई बहन। देखो हर साल 1 से 7 जुलाई तक पूरा देश में हरियाली महोत्सव मनावल जेको उद्देश्य लोग नख पर्यावरण संरक्षण न ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधा लगाना के लिए न प्रेरित करल जेका से जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव नख कम करी सकल। एक जगह जगह वृक्षारोपण अभियान भी चली रहा है। तो भाई बहन हम भी हर व्यक्ति एक पेड़ लगावा न पर्यावरण का प्रदूषण से बचाव। साथ भाई बहनों भी केस दरेन अभियान भी चली रो जे मा हमका बरसात की एक एक बूंद पानी का बचाणु न पानी को संचय करनु हमारा घर समाज कार्य क्षेत्र में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक का अपनावा भूमिगत जल को स्तर बढ़ावा बावड़ी कुआ न जो पारंपरिक जल संरचना न छे न ओका सवारा। साथ ही मानसून का ज्यादा से ज्यादा पानी कम आसपास का तालाब जलाशय से गाद निकाले न उकी जल धारण क्षमता बढ़ावा जल ग्रहण क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगाई न हरियाली का बढ़ावा। न भाई बहनों अपना कार्यक्रम में आवा सुना अपने कहानी। कहानी को शीर्षक छे प्रेरणा पुंज। तो न एक की जो कहानीकार छे वो छे उषा चोरघड़े। तो सुना जा पणी नी कहानी।
1: बस सरपट चली जा रही थी। सुबह का समय खुली हवा में गोते खाती विचार तंद्रा मुझे उन दिनों की यादों में पीछे ले जा रही थी जब मेरी पोस्टिंग धनवा गांव के स्कूल में हुई थी। तब डेली अप डाउन की भाग दौड़ सुबह घर के सारे काम करना और शाम को परिवार की चिंता के साथ वापस घर के लिए निकलना उत्साह कम टेंशन ज्यादा लगता था। लेकिन आज 10 साल बाद पुनः धनवा गांव जाना उत्साहित कर रहा था। रास्ते के दोनों ओर झाड़ों की पंक्तियां लेकिन ऊंची ऊंची बिल्डिंगें ज्यादा दिख रही थी। आधुनिकता और डेवलपमेंट की आंधी जो थी सो कुछ क्या कई झाड़ नदारद थे। पहुंचते ही कुछ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और कुछ बड़ी सुंदर सजी धजी आधुनिक सामानों से भरी दुकानें और एक मॉल भी दिखा। इन बदलावों के बीच राधिका का चेहरा रह रहकर सामने आ रहा था। वो छोटी सी साधारण लड़की हाथ में एक कॉपी और पेंसिल लिए एक पुरानी सी फ्रॉक पैरों में घिसी हुई पुरानी चप्पल जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उसी दिन से वो नियमित आ रही थी। एक झोपड़ी नुमा जगह यही था गांव का स्कूल। पढ़ाई के नाम पर बच्चे टहलते हुए आते थे। मुझे थोड़ा आश्चर्य होता जब वो रील्स वीडियो और सिनेमा की बातें करते। यहां मेरी धारणा थी कि गांव में गिने चुने ही मोबाइल होंगे लेकिन वो धारणा टूटी थी जब गांव में हर दूसरे बच्चे को मोबाइल से जुड़ा हुआ पाया। उनके लिए सबसे अधिक मनोरंजक साधन यदि कुछ था तो वो था मोबाइल। बातों में नहीं था। राधिका एक का एडमिशन फॉर्म भरते समय मुझे पता चल गया था कि उसके माता पिता दिहाड़ी मजदूर हैं। इतना इस तरह की आधुनिकता से जुड़ पाते हाँ लेकिन राधिका अन्य बच्चों के मोबाइल प्रेम से इतना तो जान गई थी कि मोबाइल एक साधन है यही नहीं पूरे संसार की बातें करता है गाता है सपने दिखाता है। स्कूल में सरपंच की बेटी रीना भी थी उससे राधिका की अच्छी पट्टी थी सो उसका मोबाइल कभी कभी वो देख लेती थी या यूं कहे रीना उसे दिखा देती थी। फिर भी क्लास में मैं क्या पढ़ा रही हूं उस पर राधिका का ध्यान पूरी तरह केंद्रित होता था। मेरे द्वारा जो कुछ भी पढ़ाया जाता उसकी कॉपी में नोट होता था। इतना मुझे समझ में आ गया था कि पढ़ाई वो पूरे मनयोग से करती है। दूसरे बच्चों की तरह ना ज्यादा धमा चौकड़ी ना फालतू की गपबाजी और ना ही कोई बहानेबाजी। तभी

अचानक जोर के ब्रेक के साथ बस रुकी। झटके से मेरी तंद्रा टूटी। कुईमक सामने आ गई थी। ड्राइवर और बाइक सवार के बीच झड़प होने लगी थी। कुछ नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हंगामा हो रहा था। मैंने कहा तो निगाह आसपास की दुकानों पर गई, जो कभी आधी कच्ची पत्थर या फर्शियों के ओटले और सीढ़ी वाली हुआ करती थी, अब टाइल्स वाली हो गई थी। लेकिन गांव के कुछ लोग जो पहले यहां बैठा करते थे, गप्पे मारा करते थे, वैसे ही आज भी दिखे। कुछ के हाथ में पेपर तो अधिकांश के हाथ में मोबाइल था। तभी बस जोर की घुर घुर की आवाज के साथ गांव के अंदर की सड़क की ओर चल पड़ी। गांव भी अब बदल गया था। घर कच्चे की जगह पक्के हो गए थे। आंगन में झाड़ी के आसपास पक्की मुंडेर बन गई थी। छोटे छोटे चौक और गली भी पक्की हो गई थी। लेकिन जहां इन चौकों में पहले बच्चे खेलते दिखाई देते थे, अब सुनसान लगे। कहीं कुछ दूर किशोर बाइक पर बैठे मोबाइल देखते दिखाई दिए। बस स्टॉप के आते ही सवारियां अपना सामान संभालते हुए उठने लगी थी, लेकिन मेरी निगाहें किसी को ढूंढ रही थी। बस से उतरते ही जिसे ढूंढ रही थी, उसने धीरे से मेरे हाथ से बैग लेते हुए मेरे पैर छुए। मैं देखते ही पहचान, अरे राधिका। सामान्य कदकाठी की सलीके से पहना हुआ सवार कुर्ता। बस स्टॉप के आते ही सवारियां अपना सामान संभालते हुए उठने लगी थी, लेकिन मेरी निगाहें किसी को ढूंढ रही थी। बस से उतरते ही जिसे ढूंढ रही थी, उसने धीरे से मेरे हाथ से बैग लेते हुए मेरे पैर छुए। मैं देखती ही पहचान गई, राधिका। सामान्य कदकाठी की लड़की, सलीके से पहना हुआ सलवार कुर्ता और कंधे पर ओढ़नी, ग्रेसफुल। अरे कैसी है बच्चा, कितनी प्यारी है रे, अनायास ही मुंह से निकल गया। थोड़ा लजाते हुए उसने मेरा हाथ थामा और हम वहां से पैदल ही चल दिए। सामान्य औपचारिक बातें करते हुए हम पहुंचे अगले चौक में। मंदिर के पास वाली कच्ची जमीन पर सिर्फ छत और प्रवेश किया। मैडम अभी इतनी ही व्यवस्था हो पाई है, यहीं पर छोटी सी पाठशाला शुरू की है मैंने। अभी लगभग गांव के दहें सरपंच काका यानी रीना के पिताजी के सहयोग से ही ये जगह मिली है। अब किसी को भी कोचिंग के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। मैं उन्हें इसी पाठशाला में अगली परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रिपेयर करती हूँ। वो बोल रही थी और मैं सोच रही थी कि वो छोटी सी राधिका, बेसिक सुविधाएं भी नहीं थी, वो इतना पढ़ कैसे पाई होगी। ऐसे विचार चल ही रहे थे कि 7-8 बच्चे बच्चियां वहां आ गए, साथ ही सरपंच जी, रीना, राधिका के माता पिता, भाई बहन, गांव के कुछ और लोग सब मेरे स्वागत में एकत्र हो गए थे। एक छोटा सा आयोजन, ना कोई विशेष तामझाम, ना हो हल्ला, बस शांत वातावरण में मन को बड़ा सुकून दे रहा था। दोपहर तक सभी जा चुके थे, नाश्ता खाना सब हो चुका था। मंदिर के पास पेड़ के नीचे मैं और राधिका बैठे उसकी पाठशाला की गतिविधियों, जैसे कैसे वो बच्चों को पढ़ाती है, स्किल कैसे डेवलप करती है, इस काम को कैसे आगे बढ़ाना, फंड की व्यवस्था कैसे करना, और सब मैं इन सब पर विचार विमर्श के बीच मैंने उससे पूछ ही लिया, बेटा तूने ये सब कैसे किया, पूरा शिक्षण आखिर कैसे ले पाई तू। महत्वपूर्ण ये बात है कि अपने आप को इस उच्च स्तर तक लाने के लिए ऐसा क्या किया, इतना नॉलेज तो लाई कहां से। आपके दीमा, ये कहते हुए राधिका कृतज्ञता से भर गई। मेरा मार्गदर्शन, मैं सब सक पका गई। मुझे अच्छे से याद है, स्कूल की पढ़ाई के अलावा मैंने उसे कुछ नहीं पढ़ाया था। बेटा मैंने तो कुछ भी, राधिका मेरी बात काटते हुए बोली, नहीं मैडम, आपने एक दिन क्लास में मोबाइल के बारे में कहा था। मैंने दिमाग पर थोड़ा जोर दिया, मोबाइल, अरे हाँ हाँ हाँ, उन दिनों मोबाइल नया नया ही तो आया था, तभी की बात है ना। राधिका ने बात को आगे बढ़ाया, तब कुछ बच्चों की शिकायत आपके सामने आई थी कि वो मोबाइल में ही आ, पढ़ाई तो छोड़ो किसी भी काम में ध्यान नहीं है उनका। तब आपने क्लास में सबको समझाया था कि इस तरह मोबाइल देखना ठीक नहीं है, और वो भी साफ सुथरा कंटेंट ही देखो, और आपने ये भी बताया था कि मोबाइल एक ऐसा साधन है कि जिस आप पर निर्भर करता है कि आप

0: क्या लेना चाहते हो? बुरी बातें लोगे तो कुछ समय अच्छा लग सकता है, लेकिन परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा। और अच्छी बातें तो हो सकता है शुरू में अच्छा ना लगे, लेकिन परिणाम निश्चित ही अच्छा मिलेगा और आपके जीवन को अच्छी दिशा देगा। यही बात मेरे मन में घर कर गई थी मैडम। आपके जाने के बाद स्कूल लगभग बंद सा हो गया था, एक सर परीक्षा के कुछ दिनों पहले से आने लगते थे बस, लेकिन पढ़ाई आगे जारी रखना मेरे लिए पहुंच से बहुत दूर हो गया था। रीना के मोबाइल देखने से मुझे मोबाइल की ताकत समझ में तो आ गई थी, मैं आगे बढ़ना भी चाहती थी। मोबाइल मुझे अच्छा विकल्प भी लगा, लेकिन इतना महंगा साधन खरीदना मेरे लिए कठिन था। तब एक उपाय सूझा, मैंने माँ बाबा के साथ दिहाड़ी पर जाना शुरू कर दिया और काम करने लगी। मजदूरी के पैसों से कुछ घर के खर्च में देती और बस जैसे ही मोबाइल खरीदने लायक पैसे जमा हुए, मैंने एक अच्छी क्वालिटी का मोबाइल खरीद लिया। लेकिन बहुत उलहाने भी सुनने को मिले। कोई कहता चली बिगड़ने के रास्ते पे, कोई कहता घर में खाने को दाने नहीं, अम्मा चली मतलब मोबाइल चलाने को, कोई सीधे मुंह पर कह दे तलरे लड़की। पर मैं चुप रही। जानती थी सबने मोबाइल के गलत परिणामों को ही देखा है, लेकिन मैं जिस तरह का मोबाइल का उपयोग करना चाहती थी उसके बारे में कुछ लोग जानते होंगे, और वो जानने वाले मेरे गांव में तो नहीं थे। इस चुप्पी में गनीमत है, मेरे माता-पिता ने मेरा साथ दिया। हाँ, मेरे भाई बहन जरूर नेट चलाने और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए झगड़ते थे मुझसे। धीरे धीरे उनका मोबाइल देखने का समय निश्चित करके मैंने उन्हें थोड़ा अपने पक्ष में कर लिया था। बस मैडम, पढ़ाई से लेकर सब कुछ जानने की मेरी उत्कंठा मोबाइल ने शांत की। लेक्चर, वीडियो, कहानियां, सब्जेक्ट वाइज कंटेंट, जनरल नॉलेज, सब कुछ पढ़ा, सुना, देखा और सीखा। धीरे धीरे ज्ञानार्जन के सारे मार्ग खुलते चले गए। आगे की पढ़ाई मैंने ऑनलाइन पूरी की। गांव के कई बच्चे योग्य दिशा के अभाव में बस मोबाइल टाइम पास कर रहे थे, उन्हें मैंने अपने पास बुलाकर पढ़ाना शुरू कर दिया। ये पाठशाला खोलने का आइडिया भी मुझे ऑनलाइन ही मिला। रिजल्ट ने गांव में मेरे प्रति विश्वास का माहौल बनाया, कई बच्चों की कोचिंग, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाई। हाँ, कि बेटी नौकरी के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी मेरे पास ही कर रही है मैडम। और हाँ, ज्यादा तो नहीं, कुछ आर्थिक मदद भी होने लगी है। ध्यान से सब सुन रही थी और देख रही थी एक सकारात्मक सोच के साथ मोबाइल की ताकत को। जिस मोबाइल को देख देख कर बच्चे और युवा पीढ़ी नकारात्मक रास्तों पर जा रही है, अपनी रातों की नींद, स्वास्थ्य और समय गंवा रही है। समाज में हर जगह मोबाइल के दुष्परिणामों की चर्चा, संगोष्ठियां, काउंसलिंग की बातें हो रही है। वहां गांव की एक साधारण लड़की राधिका ने मोबाइल के द्वारा क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या नहीं सबको बता दिया था। तभी मेरी बेटी के फोन कॉल ने हमारी बातों और विचारों के सिलसिलों को तोड़ा। शाम होने को आई थी, मुझे वापस शहर जाना था। सरपंच जी ने चाय पान किए बिना निकलने नहीं दिया। मन भर आया था मेरा। मैंने राधिका को जैसे ही हृदय से लगाया, दिल से ना जाने कितनी मौन शुभकामनाएं उसे आशीर्वाद दे रही थी। बस मुंह से इतना ही निकला, बेटा तुम प्रेरणा पुंज हो। बच्चों और युवाओं को प्रेरित करने शहर से अभिवादन किया और बस मैं निकल पड़ी।
1: भाई बहनों, अभी हम सुनी रहा था कहानी प्रेरणा पुंज। कहानीकार थी उषा चोरगड़े। न अब अपना कार्यक्रम सुनांगा अपन घरेलू नुस्खा का बारे में बातचीत करांगा। भाई बहनों ने देखो, बरसात को मौसम से न अदरक की चाय को काई करनू, पर एक साथ साथ अदरक आरू भी कई तरह से हमारे लिए ना फायदेमंद करज। जैसो कि अदरक भोजन का जल्दी पचाई दे, न पेट फूलना, न गैस की समस्या कभी कम करना में मदद करज। एका में आशा तत्व रहे जो मांसपेशी न खा दर्द को दर्द, गठिया को दर्द, न मासिक धर्म का समय होने वाली पीड़ा कभी कम करज। अदरक हमारा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ावज, न खांसी या गला की खराश से हमको राहत दे। हमारा शरीर में शक्कर की मात्रा का संतुलित करें, न इंसुलिन का सही उपयोग का बढ़ावा देना में भी मदद करें। एक कारण हमको थोड़ी सी अदरक कुटी न सब्जी भाजी में उपयोग करी सकान, या फिर स्वाद को बढ़ावज, न शरीर का लेना भी फायदेमंद रहे, न एको सूखो रूप सोट रहे जिसका हम उपयोग करी सकान जब अदरक नहीं है। अब बात करा घरेलू व्यंजन की, तो भाई बहनों ने देखो,

बैरी न बाजार में आई गई न इना समय हमारी बैर न अचार डालने की तैयारी भी करी रही होगा न, तो हम भी अपना कार्यक्रम बात करांगा। कच्ची कैरी को अचार बनाने के लिए ना हमको सामग्री लगेगा। कच्ची कैरी 1 किलो का करी बिना गुटले वाले, सरसों को तेल 1/2 किलो, नमक 3 से 4 बड़ा चम्मच या फिर स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर 2 बड़ा चम्मच, सौंफ 50 ग्राम जिसे हम दरदरी पीसी लेवा, पीली या काली सरसों राई का करीब एक हम दरदरी पीसी लेवा, मेथी दाना 20 ग्राम का करीब एक हम हल्का सा भुनी लेवा, कलौंजी 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 से 3 बड़ा चम्मच, हींग 1 छोटा चम्मच। हम सबसे पहले कच्ची कैरी ने अच्छी तरह से पानी से धोई न साफ सूती कपड़ा से पोछी लेवा। हम एक छोटा छोटा टुकड़ा काटी लेवा न भीतर की कड़क गुठली ने की निकल देवा। कटेल कैरी का टुकड़ा न हल्दी 2 चम्मच नमक डाली न अच्छी तरह से मिला लेवा। एक कोई कांच या चीनी मिट्टी का बर्तन में 24 घंटा के लिए ढाकी न रखी देवा। अगला दिन कैरी अपनो पानी छोड़ी

लगा। फिर गैस बंद करी देवा, नंडो होने देवा। अवई ना तेल में थोड़ो सो तेल मसालो में डाली ना मिक्स करा। आवा सूखी केरी का टुकड़ा ख मसाला में मिश्रण में डाला न अच्छी तरह मिलावा, जिका सी मसालो केरी न पर अच्छी तरह से चिपकी जाए। अवई ना अचार ख एक साफ न सूखा

है 20 ग्राम का करीब, एक हम हल्का सा भुनी लेवा। कलौंजी 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 से 3 बड़ा चम्मच, हींग 1 छोटा चम्मच। हम सबसे पहले कच्ची कैरी ना अच्छी तरह से पानी से धोई ना साफ सूती कपड़ा से पोछी लेवा। हम एक छोटा छोटा टुकड़ा काटी लेवा ना।

लेना घामा सुखाड़ा, पर बहुत ज़्यादा भी सुखाड़ू नहीं है, सिर्फ उतनी देर सुखाड़ा क्योंकि नमी सूखी जाए। अब एक बड़ा कटोरा में सोप, राई, मेथी दाना, कलोई, लाल मिर्च, हींग न बचे नमक मिलावा। अब सरसों का तेल ख एक कढ़ाई में तवा तक गरम करा, जब तक ओका मसी धो नहीं निकलने लगा, फिर गैस बंद करी देवा, नंडो होने देवा। अब इना तेल में थोड़ा सो तेल मसालो में डाली न मिक्स करा। अब सूखी केरी का टुकड़ा ख मसाला में मिश्रण में डाला न अच्छी तरह मिलावा, जिका सी मसालो केरी न पर अच्छी तरह से चिपकी जाए। अब इना अचार ख एक साफ न सूखा

की आवक रही 22 क्विंटल जिसको भाव रहे 5,085 रुपया। तिल्ली की आवक रही 2 क्विंटल जिसको 10,710 रुपया। सोयाबीन की आवक रही

या दूसरा किडने की समस्या होए तो ठीक पहले बीज नख राइजोबियम या एजोटोवेक्टर जैसा जैविक कल्चर से उपचारित करा। शुरुआती अवस्था में फफूंद दूसरी बीमारी नको।

अरे भारत के गणतंत्र दिवस पर गेस्ट ऑफ ऑनर थे और राष्ट्रपति प्रबोस की प्रधानमंत्री मोदी की लगातार बैठकें होती रही हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दोनों ही देशों के नेता अपने संबंधों को लेकर के सजग हैं और संबंधों को

0: पूरी तीनों देशों की यात्रा को अगर हम पिछली जो यात्राएं हुई हैं प्रधानमंत्री देखें और साथ जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकायची की भारत यात्रा से जोड़कर देखें तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तमाम जो उभरती हुई शक्ति पावर्स हैं, भारत जैसे राइजिंग पावर्स और ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया जैसे जो मिडिल पावर्स हैं, ये सभी साथ मिलकर अपनी ऊर्जाओं को, अपनी जो चिंताएं हैं सामरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, उनको मिलकर साझा करना चाहते हैं, उनको मिलकर बैठकर उनको साझा करना चाहते हैं और उनको बात के मद्देनजर की चीन और अमेरिका के जो दोनों ही देशों की जो विदेश और सामरिक नीतियां हैं वो इंडो पैसिफिक के छोटे और मझोले देशों के हितों में नहीं है, तो कैसे उन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ये देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी विदेश और सामरिक नीति को आगे बढ़ाए, ये मुझे लगता है कि एक बड़ा
1: जी
0: कनेक्टिंग। अरे भारत के गणतंत्र दिवस पर गेस्ट ऑफ ऑनर थे और राष्ट्रपति प्रबोस की, प्रधानमंत्री मोदी की लगातार बैठकें होती रही हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दोनों ही देश के नेता अपने संबंधों को लेकर के सजग हैं और संबंधों को
1: एवं खुले हिंद प्रशांत यानी कि फ्री एंड ओपन पैसिफिक के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं?
0: देखिए, इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है उस

इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी विदेश और सामरिक नीति को आगे बढ़ाएं। ये मुझे लगता है कि एक बड़ा कनेक्टिंग रक्षा और रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में, कॉर्पोरेटर में और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निवेश को लेकर के भारत ने न्यूजीलैंड को एक बड़ा साझेदार माना है।

0: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
1: इतनी आजकल कौन सोचता है ये सब, जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का अधिक होता है, इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: धर्मात्मा, ये है फिल्म का नाम, आवाज मुकेश और कंचन की, हिंदी वर्ग की रचना कल्याण जी आनंद जी का, संगीत

किशोर कुमार की आवाज में सुनिए इंदिवर की रचना, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, फिल्म का नाम है सफर। जिंदा नहीं छोड़ेंगी दिलदार तेरी आंखें, खंजर है तेरी आंखें तलवार।

लता मंगेशकर की आवाज़ में, साथी कलाकार किशोर कुमार की आवाज़ में आंधी फिल्म का गीत, बोल आर डी बर्मन का संगीत।

इस गीत के साथ ही दिल ने फिर याद किया। ये कार्यक्रम समाप्त करने के अपने दोस्त राजेश जैन को अनुमति दीजिए। ख्याल रखिएगा अपना और अपनों का।

राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम

0: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक
1: फिर याद किया। ये आकाशवाणी इंदौर है, 8:45 हुए हैं। समाचार हम दिल्ली से रिले करेंगे।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं

दौरे के लिए भारतीय अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।

आकाशवाणी इंदौर है। चित्रगीत लीजिए, इस कार्यक्रम में सुनिए जॉनी में बोल इंदिवर के संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
1: क्या?
0: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
1: वो कैसे?
0: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: और सुनेंगे कैसे?
0: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
2: ये आकाशवाणी इंदौर है। 9:30 होने को है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
3: सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है डिजिटल इंडिया, प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण। पिछले एक दशक में आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर, आयुष्मान भारत, डिजिटल मिशन और सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन होना, इन सब ने आम नागरिक अब मोबाइल फोन से अपना बैंक खाता चला रही है, किसान घर बैठे सब्सिडी ले रहा है और विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हर नागरिक डिजिटल रूप से साक्षर है? साइबर ठगी, डेटा सुरक्षा और डिजिटल डिवाइड जैसी चुनौतियों से हम कैसे पार पा सकेंगे? इस विषय पर चर्चा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय। आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। जुड़े रहिए हमारे साथ विशेष चर्चा में और जानिए कि कैसे प्रौद्योगिकी एक आदमी को सशक्त बना रही है और डिजिटल सफर में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हो। की फोन लाइन खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो की फोन नंबर 2331-0481-2371-7116-2331-7106 और 2334-4444 पर फोन कर अपने सवाल एक एक लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस नंबर पर केवल संदेश ही भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में नंद कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे पिछले 10 साल में डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा बदलाव आप क्या मानते हैं जिसने सीधे आम नागरिक को फायदा पहुंचाया है?
1: सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आज एक कोई भी गृहिणी अथवा कोई भी व्यक्ति जो छोटा व्यवसाय करता है, जो किसान है, वो एक मोबाइल के माध्यम से पैसे ले सकता है, पैसे दे सकता है, बिना किसी कागज और सरकारी दफ्तर गए वो आधा है, किसी भी अपने यार दोस्त साथी से व्हाट्सएप पर बातें कर सकता है, या किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूजिक या देश के कल्चरल चीजों का यूट्यूब पर लाभ उठा सकता है एट ए रेट जो कि बहुत ही कम है, पूरी दुनिया में सबसे कम रेट पर, और ये सब उसके एक छोटे से हाथ में मोबाइल के माध्यम से। तो अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी भारत की रही है कुछ सालों की।

0: इस दौरान।
1: बिल्कुल गुरशन राय जी, डिजिटल अरेस्ट, ओटीपी फ्रॉड, फर्जी लोन ऐप जैसी साइबर ठगी बहुत बढ़ गई हैं। एक आम नागरिक को इनसे बचने के लिए तुरंत क्या करना चाहिए?
2: इसके लिए तुरंत तो ये करना चाहिए, देखिए किसी कोई भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन संस्था जो है वो किसी से फोन पे कोई डेटा नहीं मांगते हैं, किसी का अकाउंट नंबर, किसी का क्रेडिट कार्ड नंबर और कोई डिटेल, इसकी जानकारी कोई भी नहीं मांगता है। और सब बैंक्स में बार बार वो एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं सब है कि कोई भी जानकारी किसी को मत दीजिए, हम किसी से जानकारी फोन पे और SMS से और व्हाट्सएप द्वारा नहीं मांगते
1: जी।
2: लेकिन फिर भी हमारे यहाँ काफी लोग, आज की डेट में प्रौद्योगिकी का ऐसा प्रभाव पड़ गया है, नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देते हैं वो, और पूरा ऐसा सिनेरियो बना देते हैं कि जैसे ये पुलिस का दफ्तर है जिसमें पुलिस कमिश्नर बोल रहा है कि आपका ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो उस संदर्भ में आप नागरिकों को और हमारे ये याद रखना चाहिए, जैसा कि सब बैंक्स कहते हैं और जैसा मैं भी कह रहा हूं, कि संस्था इस भारत में किसी से कोई इंफॉर्मेशन वैसे नहीं मांगती
1: जी।
2: और ऐसा है, इसका एक थंब रूल है, थंब रूल ये है कि अगर आपको कोई कॉल करता है और वो कॉल उसकी आप सुन लेते हैं और उसकी उठा के कॉल कर लेते हैं और आपसे कुछ एक तो परिचय मांगता है तो परिचय मत दीजिए, अपना डिटेल मांगते हैं तो डिटेल मत दीजिए, अगर आपसे कोई कुछ करने के लिए कहता है तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ा सा बिजी हूं और आपका मैं अभी एक मिनट में तुरंत में आपको फोन करता हूं,
1: ठीक
2: है, नहीं होती है
1: जी,
2: रिटर्न कॉल नहीं
1: होती, सबसे बड़ी बात।
2: हाँ
1: जी, बिल्कुल।
2: और आज ये पहला एक वो है कि रिटर्न कॉल करें और रिटर्न कॉल में उससे सब पूछे, क्योंकि रिटर्न कॉल करने में पुलिस जो है उसको ट्रेस करने की कोशिश हो जाती है, रिकॉर्ड मिल जाता है, तो उसका रिकॉर्ड मिल जाता है, उसका गिर गया है, कुछ थाना है, कुछ भी करके करें और वो रिटर्न कॉल करें, वो बहुत जरूरी है, ये सबसे बड़ा थंब रूल है
1: जी।
2: और किसी को जानकारी मत दीजिए इस बारे में कि मैं कौन हूं, मैं कौन नहीं हूं। आजकल बहुत बड़े फ्रॉड हो गए हैं, वो जो ऐप आती है एक जिसमें होता है जिसमें आप नंबर डालिए आपको बता देता है कौन सा क्या आता है उसका क्या आता है, और वो आजकल उसमें भी लोग फ्रॉड करते हैं, अपना नाम लिख देते हैं करते हैं, तो आप उसका जवाब मत दीजिए कहीं हम आपसे आएंगे। और आज जो है दूर संचार विभाग ने, सरकार ने क्या किया कि जब आपको कॉल आती है तो उस पे नाम फ्लैश होता है कि ये कहां से किसका नाम आ रहा है, कौन आ रहा है, वो सब सर्विस प्रोवाइडर उसको स्पैम भी लिखते हैं कि ये फेक कॉल है या ऐसी कॉल है, तो आप पहले तो कॉल को देखें कि कॉल पे किसका नाम आ रहा है और कॉल पे क्या मैसेज आ रहा है, कॉल देखें पहले गौर से, जब को जान पहचान का नाम नहीं है तो मत उठाइए, अगर आप गलती से उठा लेते हैं तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ी देर में कॉल आपको एक मिनट में कॉल करते हैं, रिटर्न कॉल जब करेंगे तो वो मैच्योर नहीं हो
1: पकड़ जी। और इस समय हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं रवि जवालिया, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हमारे विशेषज्ञों से क्या सवाल पूछना चाहते हैं?
3: हाँ धन्यवाद सर। सर नमस्कार, मेरा नाम रवि जवालिया है
1: जी, रवि
3: हरिद्वार से बोल रहा हूँ
1: जी
3: जी। सबसे पहले से विशेषज्ञों को भी मेरा नमस्कार सर।
2: नमस्कार नमस्कार रवि जी, नमस्कार।
3: हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, एक मतलब जो नया युवा है जो मतलब टेक्निक का यूज करना चाहता है वो डिजिटल साक्षर कैसे हो, क्योंकि आजकल ट्रांजेक्शन हम सभी जानते हैं कि AI भी है, फ्रॉड भी है, तो डिजिटल साक्षर कैसे प्राप्त करो, इसके लिए क्या मतलब स्पेशल कोई नंबर है?
2: देखिए डिजिटल साक्षर के उस संदर्भ में सरकार ने बहुत काम किया है और सरकार की वेबसाइट पे इस बारे में बहुत ज्यादा उसमें काम है, इनकी एक नाइलेट है सरकार की, मिनिस्ट्री ऑफ प्रौद्योगिकी विभाग की एक संस्था है नाइलेट, NILIET नाइलेट है, कोर्सेस उस पे डिजिटल साक्षरता पे लिख रखे हैं
1: जी।
2: लेकिन डिजिटल साक्षरता आज की डेट में जरूर काम करने के लिए बहुत सिंपल सा है, आप मोबाइल चला लेते हैं, आप स्मार्टफोन चला लेते हैं, आज की डेट में इतने यंग लोग हैं वो सब संभाल लेते हैं, और जो हम जैसे उम्र वाले हैं लोग हम उन्हीं बच्चों से सीखते हैं।

0: हमारा मोबाइल कॉन्फ़िगर कर दीजिए। तो ये तो एक डिजिटल के बारे में बच्चों को आज यंग जनरेशन को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, पर आपको अगर आपकी इसके एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर आपको देखना है तो नाइलेट की साइट पे जाके आप कोर्स देखिए, और उनमें काफ़ी मटेरियल है, उस पर काफ़ी इंफॉर्मेशन है, काफ़ी शॉर्ट मॉड्यूल्स हैं, आप उसमें देखेंगे आपको उसके बारे में पता लगेगा, और आप उसमें नाइलेट का नंबर भी होगा और जिसपे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, हमारे जो श्रोता हैं वो नाइलेट पे जाकर साक्षरता प्राप्त कर सकते हैं, के लिए एक मॉडल बन गया है। ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में डिजिटल पेमेंट को 100% अपनाने के लिए सरकार की अगली क्या प्राथमिकता हो सकती है?
2: यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से तकरीबन आज के देश में अगर अंदाजन से एवरी टू और इवन 1.2 इन एवरी टू, मतलब 50-70% ट्रांजेक्शन पूरी दुनिया का यूपीआई के माध्यम से होता है।
1: बहुत बड़ी बात।
2: और भारत, न केवल भारत में बल्कि अन्य कई देशों में उसको व्यवस्थित कर चुका है
1: जी।
2: और एक समय में जो यूएस डोमिनेटेड पेमेंट सिस्टम थे उसको हम लोगों ने वहां तक जाकर के उससे बहुत ही सस्ते रूप में बनाया। अब जो उसके ऊपर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कि उसके ऊपर इंश्योरेंस, उसके ऊपर लेंडिंग आपस में, जो पीयर टू पीयर मतलब आपस में लेन देन या उधार देना या बैंक का कर्ज देना या जो हमारे पेमेंट हो जाना या क्रेडिट स्कीम्स लाना जो कंपनीज लाती हैं कि ये खरीदो तो ये पाओ या ये वॉलेट में रख लो तो कल वो पाओ, इस तरह की जो छोटे छोटे स्कीम्स हैं वो उसके ऊपर धीरे धीरे बन रहे हैं। यह बड़ी खुशी की बात है कि देश में, जो हमारे देश में यह भी एक सच है कि कैपिटल का अभाव है, लोग हैं उनका क्रेडिट हमेशा कमी रहता है, तो उस कैपिटल को सपोर्ट करने के लिए यूपीआई एक बड़ा ही सिबिल और बाकी सारे स्कोर के माध्यम से इजी लेंडिंग कर पाता है। तो धीरे धीरे एनबीएफसी का काफी पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है, बैंक्स उस कस्टमर तक पहुंच पा रहे हैं जहां तक कि वो पहले नहीं पहुंच पा रहे थे। तो आने वाला जो समय है अगले 5 सालों में, कैपिटल फॉर बिजनेस या इंडिविजुअल्स यूपीआई के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश,
1: बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार के सासाराम से अमित उपाध्याय। अमित जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है
3: जी। मेरा ये सवाल था
1: जी
3: कि जैसे कि एक ओटीपी का जो फ्रॉड बढ़ते जा रहा है बहुत सारे केस में, उसके लिए हमें कैसे इसको व्यापक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग इसको जागरूक अभियान चला सकते हैं, क्या कि इसको क्या हो सकता है? और दूसरी चीज ये, मैं एक सुझाव भी था, जितना भी सरकारी विद्यालय है या विश्वविद्यालय है, लोग समय समय पर सरकार और उसके के माध्यम से समय समय पर इसको कैसे हम लोग उस पर चर्चा करके ताकि लोगों को जागरूक कर सकते हैं जी।
0: आपका सवाल बहुत ही अहम सवाल है। ओटीपी का फ्रॉड काफी पहले से काफी बढ़ गया है, पर आप ये देखिए क्यों आता है और कैसे आता है। ओटीपी जब भी आता है जब आप किसी सर्विस को देख लेने की कोशिश करते हैं, आप किसी को लॉग इन करते हैं मोबाइल पे, किसी के वेबसाइट पे करते हैं, कोई वेबसाइट करते हैं या कुछ पैसा कुछ करने की कोशिश करते हैं, और आपको ये देखने के लिए कि ये सही ट्रांजेक्शन है आपको ओटीपी भेजते हैं। आपके फोन पे ओटीपी आता है, जो रजिस्टर्ड फोन होता है उनके पास उसी पे ओटीपी आता है। कोई भी ओटीपी तभी आप देखिए जब आपने मांगा हो, कोई सर्विस करने के लिए मांगा हो, आपने कुछ कोशिश की हो। अगर आपने नहीं की, आपकी डिजायर नहीं है, आपकी रिक्वेस्ट नहीं है, तो आप किसी भी ओटीपी को मत रिकॉग्नाइज करिए, मत देखिएगा, आप ओटीपी को लीजिएगा ही नहीं। ऐसे को ओटीपी आता रहता है, अपने आप ही ओटीपी भेजते रहेंगे उनको, आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। उसी ओटीपी को देखिए जब आप किसी सर्विस को कोशिश करते हैं और वो आपको जी जानने के लिए कोशिश करता है कि आप सही आदमी हैं जो कि सर्विस ले रहे हैं, तभी आपको ओटीपी भेजता है। ओटीपी एक माध्यम है आपको आइडेंटिफाई करने का। तो ऐसे कोई बगैर आपके कहे को ओटीपी भेजता है उसको मत लीजिएगा, उसके पे मत ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मत ध्यान दीजिए।
1: सिंपल सा है, जो आपने मांगा तभी ओटीपी आया, अदरवाइज ओटीपी नहीं आएगा। चलिए एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं कि सागर से विपिन। विपिन, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका।
4: सभी को नमस्कार
1: जी।
4: मैं विपिन बात

0: पहला सर मैं ये जानना चाह रहा था, आजकल देखा जाता है सोशल मीडिया पे और अलग अलग जगह कि बहुत सारे ऐप हैं जो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए कहते हैं कि इसे डाउनलोड करें, आपका इससे एक्सपर्ट जो आपको सलाह देंगे उस हिसाब से आपका क्रेडिट स्कोर ग्रो करेगा, तो ये कैसे हम जाने कि सही या गलत है ऐप हम जो डाउनलोड करें। था सर की जो हेल्पलाइन है 1930, सर इस पे कॉल करते हैं तो क्या होता है कि हमारा कॉल ऑटोमेटिकली इमरजेंसी नंबर इमरजेंसी कॉल में ट्रांसफर हो जाता है यानी 112 पर, तो ये नॉर्मल है ऐसे ही लगता है कॉल की 1930 पे करते हैं और इमरजेंसी में ट्रांसफर होता है, या फिर ये हेल्पलाइन अलग होती है, कोई प्रॉब्लम चल रही है अभी?
1: मैं पहला सवाल का जवाब देता हूं। पहले जो आपने कहा कि हम अगर कोई भी प्रश्न मतलब इस तरह से पूछते हैं कि हमारा एक बार आप इनका पहला सवाल जो था
2: एक बार फिर से सवाल करें,
1: फिर से सवाल करेंगे आप?
2: गुड, गया उन्होंने उनका
1: डिस्कनेक्ट
2: हो गया है। लेकिन 1930 के बारे में कुछ,
1: अच्छा 1930 के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा बाकी श्रोताओं के लिए जो जुड़े हुए हैं कि 1930 और 112 इस तरह से कनेक्टेड है कि कुछ 1930 के कॉल इमरजेंसी कॉल होता, कोई इमीडिएट कहीं पुलिस की गाड़ी पहुंचानी है, कहीं स्वास्थ्य की गाड़ी पहुंचानी है, तो इमरजेंसी रिलीफ में भी लोग 1930 में लगा देते हैं, या इमरजेंसी कोई एक्शन लेना है ब्लॉकिंग ऑफ एन अकाउंट, 1930 में ये भी सुविधाएं हैं कि उससे रिलेटेड बैंक का भी एक प्रोसेस है, तो कई बार आपको डायवर्जन ऐसा मिल जाता होगा। ऐसे एज ए पॉलिसी 1930 स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेडिकेटेड, जो साइबर फ्रॉड या अकाउंट फ्रॉड या उस तरह की चीजों के लिए रहता है, न कि दूसरे चीजों के लिए। और जो आपका

बैंकिंग ब्यूरो के डेटा के आधार पर बनता है कि आपने पहले क्या लोन लिया है, आपका लोन में पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसा था, आप कितने डिसिप्लिन वे में पे करते चले गए, तो आपके बैंक का ट्रांजैक्शन के आधार पर बनता है। आपके किसी ऐप में कोई एक्टिविटी का स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ता, बार बार देखने से या बार बार किसी पेमेंट कर दिया, ये फैक्ट्स है जिसके आधार पर सिबिल स्कोर बनाता है या अन्य क्रेडिट एजेंसी आपका स्कोर बनाती है। ये सब केवल लोगों को समझाने के लिए कि देखिए

0: जानकारी मिली होगी। तो जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और आज हम डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर चर्चा की जवाब दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम जी और प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय जी। बढ़ते हैं और ओडिशा से देश पांडे देशदीप दास जी जुड़ गए हैं। देशदीप दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल पूछना चाहेंगे
1: जी? नमस्कार।
0: नमस्कार जी। नमस्कार
1: जी। कुमारम महोदय और राय महोदय को मेरा सादर नमन।
2: नमस्कार जी।
3: नमस्कार, आपको भी सादर नमन।
1: केंद्रापड़ा उड़ीसा से बोल रहा हूँ। तो मेरा सवाल है, शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने वाली प्रमुख डिजिटल सेवाएं कौन सी है?
2: शिक्षार्थियों मतलब विद्यार्थी
0: जी,
2: स्टूडेंट्स
1: जी, सर।
2: तो स्टूडेंट्स के लिए तो जैसे दो है, अगर आप किंडल स्कूल से 12वीं तक में हैं तो दीक्षा

0: संबंधित, मान लीजिए कोई छठी क्लास का मैथ्स का बच्चा है या कोई सातवीं क्लास का मैथ्स का बच्चा है, तो अगर वो सातवीं पढ़ रहा है और उसे छठी में डाउट है, तो बड़ा इंटरकनेक्टेड, बड़े इजी वे में दीक्षा प्लेटफॉर्म उसके माध्यम से, और कई लाख बच्चे इससे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। अगर आप बड़े क्लास में बच्चे या किसी प्रोफेशनल कोर्स में हैं, तो स्वयं करके एक पोर्टल है, या NPTEL नाम से जो पोर्टल पहले चलता था, जिस पर कि बड़े हाई लेवल के जो कोर्सेज राइट फ्रॉम, आपको उसमें IIT कानपुर या IIT के बड़े MTech मास्टर्स PhD के कोर्स से लेकर के, और जो आपके IIMs के, मैनेजमेंट के, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, इवन कमर्शियल चार्टर अकाउंटेंसी वगैरह के। तो ये एक पूरा जूनियर क्लास से लेके सीनियर तक का कोर्सेज है। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस ने, राज्य सरकार ने अपने कोर्स को पब्लिक किया है, तो वहां पर भी जाकर के आप सब्जेक्ट वाइज, सेशन वाइज ऐसे कोर्सेज का लाभ देखकर ले सकते हैं।
1: नंद कुमारम जी, वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं अक्सर डिजिटल सेवाओं से घबराती हैं, उन्हें डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए आपके मंत्रालय की क्या विशेष योजना है?
0: दो विषय पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। एक तो उनका अकाउंट खोलना सबसे बड़ा काम, और उनके हाथ में स्मार्टफोन होना। तो स्मार्टफोन

रेट्स आप अगर कंपेयर करेंगे, जैसे डेटा बहुत कम रेट पे था, तो स्मार्टफोन भी भारत में बहुत ही लो स्तर लो कॉस्ट पर बिक रहा है आजकल, और भारत की पीएलआई स्कीम्स ने बड़ा उसमें कारगर रोल प्ले किया है। अब जहां तक रहा उनके सीखने और व्यवहार की बात, तो लोकल भाषा में कंटेंट उपलब्ध करा करके कि वो जिस भाषा में, अगर वो तमिल में बात करते हैं, अगर वो हिंदी में बात करते हैं, जिस भी गुजराती में बात करते हैं, साइट को उपलब्ध कराया गया है। आप भाषणी के माध्यम से या अन्य एआई टूल्स के माध्यम से सभी शासकीय पोर्टल्स को उस लोकल भाषा में उपलब्ध कराने का प्रयास है, जिसके माध्यम से आप इजी से उसे समझ सकें। और हेल्पलाइन भी सिटीजन के लिए अलग लागू हो गया है, जो सीनियर सिटीजन का अलग एक डेस्क है जो उनको फॉर को सपोर्ट देता है, ताकि वो 1930 में तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल हेल्पलाइंस भी हैं।

0: इस टाइम से बच्चों को ये फ्रॉड के बारे में स्मार्टफोन के बारे में बताएं, तो आपको उसको छूना नहीं है, जो भी जैसे भी तरीके से समझ बताया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, नर्सरी से ही स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आपको पता ही है आजकल हर बच्चा शुरू से ही लेके फोन लेके बैठ जाता है, और जो फोन हमें नहीं चलाना आता वो बच्चा वो खोल के बैठ जाता है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि स्कूलों में भी, ये मेरा सुझाव भी समझ लिया जाए, मेरा क्वेश्चन है।
1: आपका जो पहला प्रश्न है कि उसमें स्मार्टफोन और फीचर्स फोन की बात है, देखिए दोनों में बहुत अंतर होता है। स्मार्टफोन फीचर्स फोन जो होता है बहुत सिंपल फोन होता है और उसपे बहुत फीचर्स नहीं होते हैं, के द्वारा आते हैं व्हाट्सएप और किसी उसके द्वारा नहीं आते हैं, तो वो ओटीपी आना या कोई मैसेज आना वो ऐसा ही है जैसे कि एक स्मार्टफोन में आता है। तो अगर आप उस पर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका वही इफेक्ट है जो कि स्मार्टफोन के अंदर होता है। तो अगर आपने उससे किया है या की फोन से की फीचर फोन से किया है उसका इफेक्ट सेम है। जहां तक ओटीपी और मैसेजेस का सवाल है उसका दोनों का इफेक्ट सेम ही है, बिल्कुल सेम है, उसमें कोई अंतर में फीचर्स बहुत कम होते हैं, ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते आप, कोई भी ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते, और आपको वो जो दूसरी किस्म की जो अटैक्स होते हैं, साइबर अटैक्स साइबर इंसिडेंट्स होते हैं, वो उस फीचर्स फोन पे नहीं होती हैं, वो सब स्मार्टफोन पे होते हैं वो सब। इसलिए दोनों में बहुत अंतर है। कॉस्ट अगर आप बैंक से इंटरेक्ट करते हैं आपका ओटीपी आता है, आप कोई नंबर एक्सेस करते हैं वो आप फीचर्स फोन पे एक्सेस कर सकते हैं। कुछ चीजें आज की डेट में की फीचर्स फोन भी बहुत अच्छे हो गए हैं जिसपे आप वेबसाइट भी देख सकते हैं, अपना ओपन कर सकते हैं, ऐसे भी की फीचर्स अंतर मोटा अंतर से आपको मैंने बता दिया है। और की फीचर्स फोन नॉर्मल पर्पज के लिए काफी सेफ होता है स्मार्टफोन में थोड़ा सा।
2: गुलशन जी एक और सवाल हमारा है, गांव का किसान पहली बार जब स्मार्टफोन चलाता है तो उसे साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए सबसे जरूरी क्या बातें हो सकती हैं?
1: देखिए एक तो उसको कहा जाता है कि अपने एंटीवायरस रखना चाहिए
2: जी।
1: एक दूसरी बात यह है कि वो जो भी ऐप डाउनलोड करे वो जो इतनी जो स्टोर है गूगल से प्ले आप ऐप डाउनलोड करिए और एप्पल का प्ले स्टोर है वहां से डाउनलोड करिए, ऐसे किसी वेबसाइट पे जाके आप ऐप मत डाउनलोड करिए, वो दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल तो वो है कि आपको ऐसे मैसेज
2: बिल्कुल नंद कुमारम जी सोशल मीडिया एक आम गृहिणी इसे कैसे पहचाने?
3: देखिए ये डिजिटलाइजेशन और इसकी एक अच्छी चीज है कि और उसका लाभ उठा रही है, लेकिन कुछ लोग इस अच्छी चीज का दुरुपयोग करने के लिए लालच देकर या कोई काम का गलत चीज बताकर उनके अकाउंट्स या कोई फ्रॉड या कुछ पिक्चर्स या कुछ ऐसी चीजों में इन्होंने बताया कि आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और अपने वर्क को समझें अच्छे से कि आप कब उनको ओटीपी दे रहे हैं, कब अपना आइडेंटिटी दे रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी थेफ्ट भी एक बड़ा कॉमन हो रहा है कि आपसे बात करी सारे कागज इकट्ठे किए और फिर वो चले गए, या फिर आपसे बैंक अकाउंट मांगा बोला हाँ साहब कुछ क्रेडिट कर रहे हैं आप ये कर रहे हैं साहब आपसे फिर निकाल ले जाते हैं। तो इस तरह के समय में धरना अपना वेबसाइट चेक कराना और लोगों का रेफरेंस देना चार लोगों से बात करना कि क्या सच में कोई हमारी दूसरी बहन दूसरी साथी वहां कनेक्शन प्रोसेस करना इस तरह से कोई ट्रस्टेड माध्यम से ही जॉब करें क्योंकि कई बार आप जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब के पीछे क्या काम हो रहा है ये आपको पता नहीं चलता और आप उसकी जिम्मेवारी या फेस बन जाते हैं।
2: तो और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के पन्ना से हर्षवर्धन पांडे। हर्षवर्धन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: हाँ तो मैं ये कहना चाहता कि ये जो

0: साइबर अपराध जो चल रहा है इस पर सरकार द्वारा कभी ये नियम कानून बनाकर रोक लगाई जाएगी कि वो ये जो अकाल करते हैं तो कार्रवाई कभी
1: जी जी जी हर्षवर्धन जी, आपका प्रश्न मैं सुनकर के प्रयास करता हूं। जो विषय लोगों का कि 1930 में दो तरह के सवाल आते हैं, या तो कुछ जानकारी के लिए या अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए या एक ट्रांजैक्शन रिवर्ट करने के लिए, और कुछ केसेस में वो कानून अपराध में कन्वर्ट। तो 1930 के बाद वो चला जाता है आपके जो थाना संबंधित जो थाना है जहां पर या तो क्राइम ओरिजिन हो रहा है या जहां पर क्राइम टर्मिनेट हो रहा है, दो तीन तरह के जगहों पर केस रजिस्टर हो सकता है। तो

0: इस तरह के केसेस में वो उस संबंधित थाना में या उस जिले के साइबर थाना अगर कोई चिन्हित हो तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण दर्ज होते हैं और उस पर कार्रवाई होती है हमारे जो बीएनएसएस और जो न्याय संहिता के क्रम के रूप में, और इसमें बहुत अधिक कार्रवाइयां होती हैं। ये बात जरूर है कि चूंकि केस भी बहुत दर्ज होते हैं तो शायद थोड़ी देरी हो जाती हो।
1: सशक्त नागरिक बनने की सलाह देनी हो तो क्या कहना चाहेंगे?
2: ये बहुत अहम सवाल है
1: जी।
2: डिजिटल रूप सशक्त बनने के लिए आपको, जैसे हमारे एक्सपर्ट श्री नंद कुमार जी ने बोला कि आपको इस टाइप का थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए कि जो चीज रहे हैं वो गलत तो नहीं है, ऐप जो आप डाउनलोड करें गलत तो नहीं है, आप ओटीपी सर्विस मांगी नहीं है वो नहीं करना चाहिए। ज्यादातर आपको ये जब तक आप चीज को एक्सेस मांगते नहीं हैं तब तक उस पर ध्यान गौर करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान करिए, थोड़ा सा सशक्त हो जाइए तो आप डिजिटल ट्रांजेक्शन बहुत आसान है।
0: भारत डिजिटल में दुनिया भर में अग्रणी है और एकाध दो देशों को छोड़ दें तो शायद गिनती के नंबर 3 पे। तो हम ये एक नया युग का समय है, नया युग बनता जा रहा है हमारी आंखों के सामने। एआई के माध्यम से, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने संबंधियों को मजबूत करें और जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स इसके मिल रहे हैं आज और आने वाले समय में उसका पूरा लाभ उठाएं और अपना भविष्य।
1: हम अपने सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और

pubspeak@gmail.com .nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। और साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। मुकेश कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी इंदौर है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। ये आकाशवाणी दीपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम।
1: इस माह के रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक ऐसे शहर की कहानी जो न केवल लोहे को पिघलाकर राष्ट्र की रीढ़ बनाता है बल्कि अपने आसपास के पर्याय इस्पात संस्कृति और सपनों का शहर जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। आलेख है शाहिद अनवर का और इसे प्रस्तुत किया है राजीव रंजन तिवारी ने।

0: हर हिंदुस्तान आया है मिनी इंडिया, एक ऐसा शहर जिसका इतिहास राष्ट्र के स्वाभिमान का पहला तकनीकी और औद्योगिक घोषणा पत्र है। हर शहर की अपनी एक कहानी होती है, कुछ शहर इतिहास और कुछ लोगों के दिलों में। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जो कभी जंगल था, जो कभी काली माटी नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां स्वर्ण रेखा और खरकई नदियां मिलकर धरती को हरियाली का आशीर्वाद देती थी। फिर एक सपना आया, एक दूरदर्शी आंखों में पलता अपना, और उस सपने ने जंगलों के बीच बसाया एक ऐसा नगर जो आज उद्योग का प्रतीक है, खेलों की राजधानी है, सौ का संगम है और आधुनिक भारत के आत्मविश्वास की पहचान है। ये है जमशेदपुर, टाटा नाथ, संस्कृति और सपनों का शहर। वर्ष 1907, भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन एक भारतीय उद्योगपति ने स्वतंत्र भारत का सपना देख लिया था। वो सपना था भारत को आत्मनिर्भर बनाना। नाम था जमशेद जी नसरवान जी टाटा। उन्होंने कहा था, यदि भारत को मजबूत बनाना है तो उद्योग, शिक्षा और विज्ञान को साथ लेकर चलना होगा। और फिर काली माटी की धरती पर जन्म हुआ। दृष्टि थी, एक भविष्य था। आज वही नगर विश्व में जमशेदपुर और टाटा नगर दोनों नामों से जाना जाता है। ये शहर केवल बसा नहीं है, इसे सपनों ने गढ़ा है, दूर दृष्टि ने सवारा है और लाखों अपने श्रम की ऊष्मा से जीवन दिया है। किसी शहर की पहचान सिर्फ उसकी ऊंचे इमारतें नहीं बनाती, बल्कि वो रिश्ता बनाता है जो शहर और उसके लोगता जमशेदपुर को दुनिया के दूसरे औद्योगिक नगरों से अलग बनाता है। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज डीबी सुंदर रामम बतेतपुर केवल कंपनी टाउन नहीं है, ये सामाजिक उत्तरदायित्व, सुनियोजित नगरीय विकास और नागरिक साझेदारी का एक वैश्विक मॉडल है।
1: फाउंडर का जो सपना है उसको साकार करने में जितने भी जनरेशन है, जितने भी चेयरमैन आए, जितने भी MDs आए हैं और जितने भी लोग हैं साथ में, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज यूनियन, शिरपुर का नाम रोशन होना चाहिए। रिसेंटली वी वर डिक्लेयर्ड थर्ड बेस्ट क्लीनेस्ट सिटी, तो कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग पूछते हैं कि एक नंबर में क्यों नहीं आ सकते। वो दैट कॉम्पिटेटिव स्पिरिट भी है, यही हम लोगों को आगे लेके चलता है एंड टू ब्रिंग इन मोर एंड मोर फैसिलिटीज टू द सिटी।
0: अमूमन बड़े औद्योगिक शहरों को प्रदूषण और कंक्रीट के जंगलों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन जमशेदपुर में स्टील प्लांट के ठीक बगल में जुबली पार्क और सघन ग्रीन कवर यानी हरियाली है। उद्योग और पर्यावरण के इस बेहतर

0: और सस्टेनेबिलिटी को लेकर टाटा स्टील का विजन साफ है, विशेषकर जब हम नेट जीरो कार्बन के राष्ट्रीय लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। द रामम रेखांकित करते हैं।
1: आज के दिन जमशेदपुर डेफिनेटली वन ऑफ द बेंचमार्क प्लांट्स विद 2.2 टन ऑफ कार्बन इमिशन पर टन ऑफ क्रूड स्टील, और हम कम कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है सिटीजन्स है, किसी का भी घर में जिसका बंगलो है, घर है, कुछ भी है, अब देखेगा पेड़ पौधा जरूर रहता है। एवरी ईयर गार्डन कॉम्पिटिशन होता है एंड ऑल्सो लोगों में हम लोग लाते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन को यू हैव टू लव नेचर। आज के दिन आप हमसे पूछेगा तो अराउंड 28% जो है ग्रीन कवर किए हैं। हमारा टारगेट है कि कैसे हम 33-35% करें। लास्ट 3-4 साल में बहुत सारा ओपन जिम आए हैं, पार्क्स आए हैं, जहां ये सबको हम लोग बढ़ावा देते हैं तो टीएमएच में लोड कम होता है। बाकी जितना हमारा एनवायरमेंट पैरामीटर्स है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। वी आर स्पेंडिंग 1000-1200 crores एवरी ईयर टू ब्रिंग इट टू लेवल वेयर पीपल इवन एट फायर हो कि प्रदूषण यहाँ बढ़ा।
0: जमशेदपुर के बारे में एक बेहद मशहूर पंक्ति कही जाती है, यहाँ टाटा स्टील शहर की देखभाल नहीं करती बल्कि शहर टाटा देखभाल करता है। कंपनी और यहाँ के आम नागरिकों के बीच इस बेहद भावुक, आत्मीय और 100 साल से भी ज्यादा पुराने अनूठे रिश्ते की जमम कहते हैं।
1: आज के जनरेशन के एम्प्लॉयज से पूछेगा वो जरूर बोलेंगे हम 3rd generation है, 4th generation है। कुछ एम्प्लॉयज मिलेंगे जो बोलेगा 5th generation है। नॉट ओनली एम्प्लॉयज, जितना एस्टेब्लिशमेंट है, सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जितना भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो उनके अंदर में भी लॉयल्टी है और हमारे अंदर में भी लॉयल्टी है कि जब हमको जरूरत है उस समय लोग बाहर से आए हैं यहाँ पे। उस भी बात हो रहा है कि हम लोग कूड़ा से कैसे बिजली को उत्पन्न कर सकेंगे या चारकोल को कैसे उत्पन्न कर सकेंगे। बहुत अच्छा अच्छा आइडिया सर है, जितना भी आइडिया है वो शहर को और कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं उसके लिए।
0: ईंट, पत्थर और लोहे से केवल इमारतें बनती हैं, लेकिन विश्वास, संवेदना और साझेदारी से एक शहर जन्म लेता है। सड़कों के किनारे फैले वृक्ष, साफ सुथरे उद्यान, झीलें, खुले मैदान और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर बढ़ता विकास। यहाँ उद्योग और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं, बर्फ और हरियाली ने यहाँ एक दूसरे का हाथ थाम लिया हो। यहाँ हर सड़क एक मंजिल की ओर जाती है और हर मंजिल किसी नए सपने का आरंभ बन जाती है। अगर उद्योग किसी राष्ट्र की शान, उसकी बुद्धि है, जमशेदपुर की धरती पर विज्ञान ने भी अनेक स्वर्णिम अध्याय लिखे हैं। यहाँ सन 1950 में स्थापित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला यानी CSIR NML ने देश की धातु कर्म में आत्मनिर्भरता को नई दिशा दी। आज जब दुनिया सतत विकास और ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, भविष्य के भारत का निर्माण कर रहे हैं। विज्ञान में युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला NML के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन क्रिटिकल मिनरल्स एंड मेटल्स के प्रमुख सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभिलाष उजागर करते हैं।
2: काफी सारे इंडस्ट्रीज ने फायदा उठाया, अभी भी उठा रही इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल में काम करती है, अपने फेरोलॉयज लेके जाती है, स्पेशलिटी फेरोलॉयज जो यूज होता है डिफेंस में, न्यूक्लियर सेक्टर में, ऑल दैट। ऑब्जेक्टिव ये रहा कि जो कंपनी कोल की माइनिंग, आयरन ओर की माइनिंग या डिफरेंट ओर्स की माइनिंग करती है, उनका ग्रेड अगर लो रहता है तो उसको एक ऐसे इंडस्ट्रियल ग्रेड पे लेकर किया जाए जहां से लेकर एक कंपनी अपना मेटल एक्सट्रैक्शन खुद से कर लेती है। कोई भी रेल एक्सीडेंट हुआ है, अगले ही महीने वहां का वो रेल पटरी चक्का सब कुछ NML आ जाता है, उसको इन्वेस्टिगेशन होता है कि वो स्टील क्रैक क्यों हुआ, टूट क्यों गया। ऐसे ही थर्मल पावर प्लांट है या ऑयल रिफाइनरी है, इनमें जो क्रैक्स आती हैं कभी कुछ, उनका इन्वेस्टिगेशन होने वाली है, इनको रोका जा सके।
0: भारतीय रेलवे ट्रैकों की मजबूती से लेकर डिफेंस और एयरोस्पेस के क्षेत्र के लिए विशेष अलॉय विकसित करने तक देश के औद्योगिक विज्ञान को आत्मनिर्भर बनाने में जमशेदपुर की इस प्रयोगशाला ने महत्वपूर्ण तकनीकी क्रांतियां की हैं।
2: स्टार्टअप्स फॉर young people who are want to enter into chemistry field, mechanical metallurgy, all these kind of fields.
0: एक भटनागर पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर अभिलाष का औद्योगिक कचरे से लिथियम कोबाल्ट निकालने की स्वदेशी तकनीक पर बहुत बड़ा काम कर रहा है। पर्यावरण संरक्षण यानी सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी, वैश्विक इस शोध का काफी महत्व है। डॉक्टर अभिलाष प्रकाश डालते हैं।
2: हमारा उद्देश्य ये है, कचरे में जो बैटरी है उससे लेके जो मेटल आप हाइपर बनाते हैं उससे नई बैटरी अगर

0: बन जाएगी, बैच 1.8 कम हो जाएगी। कल आपको जो ईवी का कॉस्ट 15 लाख 16 लाख की कार है, शायद कुछ पैसे कम हो जाए उसमें, एंड इंडिया बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। सो दैट इज वॉट वी फील दैट द ग्रीन केमिस्ट्री वॉट वर्क इन मेटलर्जी इज वेरी वेल सूटिंग फॉर ई वेस्ट रिसाइकलिंग।
1: विकसित भारत 2047 के लो मटेरियल्स जैसे भविष्य की तकनीक में जमशेदपुर की ये प्रयोगशाला भारत को वैश्विक स्तर पर एक लीडर के रूप में स्थापित कर रही है। विज्ञान की प्रयोगशालाओं में जन्म लेने वाले विचार जब उद्योगों में उतरते हैं तो राष्ट्र की प्रगति का नया अध्याय लिखते हैं। अध्याय जमशेदपुर दशकों से लिख रहा है, लेकिन विकास केवल कारखानों और प्रयोगशालाओं से नहीं होता। विकास के लिए चाहिए शिक्षित मस्तिष्क, जिज्ञासु युवा और नवाचार का साहस। जमशेदपुर का शैक्षणिक इतिहास भी उतना ही गौरवशाली है। कभी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के महत्व का संस्थान NIT जमशेदपुर, इसके निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधर बताते हैं, RIT से NIT तक का ये सफर केवल नाम परिवर्तन नहीं है, बल्कि शोध, नवाचार और राष्ट्र निर्माण की सतत।
2: NIT से देश का एक NIT है। क्रिटिकल मिनरल्स में बहुत ही उपयोगिता है सोलर सेल में, तो अभी ये सोलर सेल रिसाइकलिंग इज ए प्रोजेक्ट। रिसेंटली वी गॉट ए वेरी बिग प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 1.5 करोड़। जो हम लोग का उधर में सिल्वर रहता है, सिलिकॉन रहता है, कॉपर रहता है, उसको कैसे मैं डिसिनरेटर में फोटोवोल्टिक सेल में हम लोग फीड उपलब्ध कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं।
1: 1960 में RIT के रूप में शुरू हुई इस संस्था का इतिहास जमशेदपुर के औद्योगिक विकास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया जैसी देश के सबसे बड़ी औद्योगिक इकाइयों के ठीक बीच में स्थित होना यहाँ के छात्रों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और देश के औद्योगिक विज्ञान को मजबूती देने में वरदान साबित हुआ है, प्रोफेसर सूत्रधर कहते हैं।
2: इवन लास्ट ईयर में मैं 4 बंदा को अमेरिका भेजे थे फॉर कॉम्पिटिशन में, गया इधर से, एक लड़की था, 3 लड़का था, वो लोग को हम लोग भेजे थे। तो इधर में देश में बहुत जगह में ये लोग ईवी, रोबोटिक्स, अभी AI का जो आ गया, IIoT, इसमें बहुत काम चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। इसमें इनोवेशन के रूप में हम लोग इसको सपोर्ट भी करता है।
1: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए NIT उन तकनीकी लीडर्स को तैयार कर रहा है जो न केवल वैश्विक स्तर पर भारत का परचम लहराएंगे बल्कि देश की जमीनी समस्याओं का भी तकनीकी समाधान निकालेंगे, प्रोफेसर सूत्रधर रूबरू कराते हैं।
2: प्रधानमंत्री जी का जो लोग को बोलना है, भाई ये इट्स नॉट ए वन डे कंपटीशन, यू हैव टू टेक इट लॉन्ग टर्म, यू डोंट रन बिहाइंड द पैकेज, आप ज्ञान बढ़ाने के लिए कोशिश कर, वही हम लोग का सबसे महत्व उद्देश्य है।
1: विज्ञान के इस तकनीकी विकास को जब तक मानवीय संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी का साथ ना मिले वो अधूरा है। जमशेदपुर का प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान XLRI दशकों से देश को ह्यूमन फेस वाला नेतृत्व है, इसके निदेशक फादर सेबेस्टियन जॉर्ज SJ कहते हैं, भविष्य उन्हीं का होगा जो ज्ञान के साथ संवेदना भी रखते हों।
3: मैनेजमेंट विचार या नारा नहीं है बल्कि XLRI की एजुकेशन फिलॉसफी का मूल आधार है। हमारा मानना है कि मैनेजमेंट एजेंसी केवल कुशल मैनेजर तैयार करना नहीं बल्कि ऐसा उत्तरदायी और वैल्यू बेस्ड लीडर्स विकसित करना है जो समाज के लिए प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। हमारे करिकुलम में एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक पॉलिसी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट जैसे विषयों को विशेष महत्व दिया जाता है। क्लासरूम के बाहर भी स्टूडेंट्स को रूरल कम्युनिटीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और डेवलपमेंट ओरिएंटेड इनिशिएटिव से जुड़ने का अवसर मिलते हैं। ये अनुभव उनमें एम्पैथी, सोशल अवेयरनेस को समझने की क्षमता विकसित करती है।
1: विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए XLRI ग्रेट लीडर्स को तैयार कर रहा है जो न केवल आर्थिक प्रगति के संवाहक बने बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास के प्रति भी।

0: उन विरले नगरों में है जो इतिहास को साथ लेकर भविष्य की ओर चलता है। आदिवासी लोक धुनों से लेकर वैश्विक उद्योगों तक यहाँ विविधता किसी उत्सव की तरह प्रतिदिन सांस लेती है। जमशेदपुर की आत्मा केवल उद्योग नहीं, यहाँ की मिट्टी में बसती है आदिवासी संस्कृति। यहाँ के पर्व, यहाँ के गीत, यहाँ की लोक कलाएं और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान इस भूमि की पहचान है। पद्मश्री चामी मुर्मू ने हजारों महिलाओं को जोड़कर पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण की ऐसी मिसाल प्रस्तुत की है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। झारखंड की धरती को हरा भरा बनाने वाली लेडी टार्जन के रूप में मशहूर पद्मश्री चामी मुर्मू ने लाखों पेड़ लगाकर बंजर धरती को हरी भरी चादर। समाज में तो जल, जंगल और जमीन को भगवान की तरह पूजा जाता है। आज के इस आधुनिक दौर में जब जंगल सिमट रहे हैं, हमारे आदिवासी विरासत और पर्यावरण के इस गहरे रिश्ते को चामी मुर्मू इस तरह देखती हैं।
1: किसान भी समझने लगा कि हाँ, हम अगर पौधा लगाएंगे तो मेरा भी फायदा, यहाँ जितना भी बंजर भूमि था सब ये में लगाए। हम लोग 17 लाख तक पौधा लगाए, हम लोग कम लिए और अपना क्षेत्र में काम किया, उस ऋषि मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो उसमें और जिम्मेवारी लगा और जोश लगा तो और लगाने का मन किया, और उसके बाद हम लोग महिला लोग भी जागरूक हो गए, तो उसके बाद हम लोग एसएचजी ग्रुप का काम किए।
0: चामी मुर्मू ने हजारों महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाया बल्कि लकड़ी माफियाओं और अवैध शिकार के खिलाफ खड़े होने का हौसला भी दिया। इस जमीनी बदलाव और महिलाओं के इस संघर्ष की यात्रा को वो बयां करती हैं।
1: बहुत कोशिश की है, बहुत संघर्ष किए, ये करके बाद में हम लोग बंजर भूमि में लगाना शुरू किए। फल दे नहीं दे लेकिन हमारे लिए बहुत, और आगे भी करते रहेंगे, लगाते रहेंगे और समाज में सेवा करते रहेंगे।
0: एक सुदूर गांव से राष्ट्रपति भवन तक चामी मुर्मू का ये सफर देश की करोड़ों ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। अपनी आत्मीय आवाज
1: पद्मश्री में पहुंच गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत सबको धन्यवाद दूंगी, और आगे जो है वो तो हम पहले से भी बोल रहे, करते ही रहूंगी।
0: प्रकृति के इसी जुड़ाव से जब दीवारों पर रंग बोलते हैं तो वहाँ जन्म लेती है सोहराई कला। सोहराई के रंगों में धरती की मुस्कान है और उन रंगों में छिपी है पीढ़ियों की स्मृति। इस कला को विश्व पटल तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं स्थानीय जनजातीय कलाकार हीरा मांझी। वो कहती हैं, संस्कृति को बचाना केवल अतीत को बचाना नहीं बल्कि भविष्य को पहचान देना है।
2: सोहराई पेंटिंग प्रकृति से लिया जाता है, उसमें हम लोग जुड़े हुए हैं। हम इंसानों का अस्तित्व पशु पक्षी प्रकृति के बिना अधूरे हैं। आज के जो पीढ़ी है कंप्यूटर मोबाइल की दुनिया में खोए हुए हैं, उनको हम बता रहे हैं जो असली दौलत जल, जंगल और जमीन है। युवाओं को यही सिखाने बना के समझाते हैं, अपनी भाषा को बचाए रखना है। उनको कहानी लिखना, नाटक लिखना सिखा रहे हैं संथाली में रहा है। ये जो लड़ाई है बहुत कठिन है लेकिन समाज का अगर साथ मिलता है तो आसान हो जाता है।
0: हीरा मांझी की बातें हमारे सांस्कृतिक को बढ़ाती हैं। उनकी आंखों में सपना है, वो कहती हैं, सोहराई पेंटिंग हमारी परंपरा है, प्रकृति के प्रति हमारा धन्यवाद है।
2: एक और दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, फैक्ट्री हैं, दूसरी तरफ शाम को नगाड़ा मादर की थाप घुसती है। यही सही मानव में मिनी इंडिया है जहाँ हर राज्य के लोग रहते हैं। बहुरंगी पहचान को जिंदा रखने में हमारे जनजातियाँ कलाकारों, विचारकों और साहित्यकारों बहुत बड़ी भूमिका है। हम अपनी कला साहित्य के जरिए इस आधुनिक शहर को उसकी आत्मा से जुड़े रखते हैं। हम याद दिलाते हैं तरक्की की ऊंचाई को छूते हुए
0: उन्हीं को मिलती है जो कदम बढ़ाने का साहस रखते हैं। अगर जमशेदपुर उद्योग का शहर है तो ये खेलों का तीर्थ है। जमशेदपुर देश की खेल राजधानी भी है। ये वो भूमि है जो युवाओं में साहस का संचार करती है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर विजय पताका फहराने वाली और टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के माध्यम से देश को साहसी बनाने वाली पद्म भूषण बचेंद्री पाल

0: की बातें रोमांच से भर देती हैं।
1: आज कोई मुझे पूछे कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए, जो मुझे लगातार पूछते रहते थे गांव में हर जगह, पढ़े लिखे लोग भी, लेकिन आज हमारे पास जवाब है कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए। पहाड़ कौन चढ़ते हैं? जो बहुत साहसिक होते हैं, जो बहुत ब्रेव होते हैं, जिनका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है, जो अपने लिए बहुत बड़े जोखिम भरा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, क्योंकि जिंदगी में हर जगह ही चुनौती है।
0: रोमांच और खेल इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं, जिससे वे जीवन के हर ऊंचे शिखर को।
1: जब हमारे प्रोग्राम में लड़के लोग आते हैं, यूथ लोग आते हैं, जीटी लोग आते हैं, एमटी जाते हैं, रूरल यूथ आते हैं और डरे हुए रहते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है, उनमें फंस जाते हैं, पूरा बदल के जाते हैं, तो मैं सोचूं लाइफ जिंदगी सार्थक है। और बार बार यही सोचती हूं कि एक लाइफ एक जिंदगी बहुत छोटा है, बहुत कुछ और भी करने के लिए।
0: साहस की अति ने विश्व विजेता धनुर्धर पैदा किए हैं, जिन्होंने ओलंपिक तक का सफर तय किया। इस यात्रा में टाटा आर्चरी अकादमी का योगदान अविस्मरणीय है। इसके मुख्य कोच और मेंटर के रूप में अपने अनुभव साझा करते हुए पद्मश्री और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पूर्णिमा महतो कहती हैं कि सफल खिलाड़ी केवल प्रतिभा से नहीं, अनुशासन और निरंतर अभ्यास से बनता है।
2: दीपिका जैसे कैडेट एंड जूनियर वर्ल्ड चैंपियन है, उसके बाद हमारी एकेडमी से कोमोलिका बनी, हमारी एकेडमी से कैडेट वर्ल्ड चैंपियन भी बनी और जूनियर भी बनी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर निकले हैं। दीपिका एक बहुत बड़ा नाम है हमारे एकेडमी का। दीपिका जब कैडेट वर्ल्ड चैंपियन बनी और पीछे खड़े थे, बहुत अपने आप को प्राउड फील हुआ। मतलब हम तो एक ये मानते हैं कि अब इंडियन आर्ट आर्चरी एकेडमी।
0: धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ा एक तीर केवल लक्ष्य नहीं भेदता देता है, फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स पर फुटबॉल के क्षेत्र में भी जमशेदपुर को भारतीय फुटबॉल की नर्सरी कहा जाता है। टाटा स्टील के खेल प्रमुख और जमशेदपुर चौधरी कहते हैं,
3: इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन शायद ही किसी एकेडमी या किसी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन ने किया होगा। करीब करीब 300 बच्चे TFA से ग्रेजुएट हुए, उससे 150 बच्चे नेशनल खेल चुके हैं इंडिया को रिप्रेजेंट, उसमें से कुछ 19 अलग अलग एज ग्रुप में कैप्टन हो चुके हैं। बट ये एक एकेडमी करती थी और इनका बेसिकली अगर देखा जाए तो 20 बच्चों को हमेशा लेते थे और क्वालिटी पे हमेशा ध्यान दिया जाता, क्वांटिटी पे नहीं था। कल्याण चौबे है, रणिडी सिंह है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर है आज की तारीख में भी जो हर टीम में तीन चार क्वेश्चन शायद ही किसी इंस्टीट्यूशन का होगा। एंड इंडियन फुटबॉल में इसको काफी अच्छी तरह सम्मानित भी किया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने एक स्पेशल रिकॉग्निशन फुटबॉल एकेडमी को फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन। और ये सब कब हुआ? 1987 में, जब 83 में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला था। तो हम इसका बड़ा सा श्रेय हमारे लीडर को देते हैं, जिन्होंने इसका बारे में तब सोचे, अपनी पीक पे था, वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और सारा कॉन्सेंट्रेशन क्रिकेट की तरफ था। तभी एक रेसिडेंशियल स्कूल पहली बार और वो भी जमशेदपुर में शुरू की गई और पूरे हिंदुस्तान से इन बेहतरीन फुटबॉलर्स को यहाँ लाके उनको ट्रेन किया गया। तो आई थिंक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है TFA का।
0: आज वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की तकनीक और गति बहुत बदल चुकी है। 2026 के इस आधुनिक दौर में TFA अपने युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए किस आधुनिक तकनीकों, विदेशी एक्सपोजर और वैज्ञानिक ट्रेनिंग से लैस कर रहा है, मुकुल चौधरी बताते हैं।
3: शुरुआत से ही सबसे बेस्ट ट्रेनिंग देने के लिए है। काफी साल पहले TFA शायद पहला इंस्टीट्यूशन जहां वीडियो एनालिसिस शुरू हो गया एकेडमी लेवल पे। उसके बाद हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है। ये सारी चीजें नई है जो हम कोशिश कर रहे हैं जिससे बेसिकली बच्चों को इंजरी ना हो। नॉर्मल बच्चों से ज्यादा अपने आप को स्ट्रेच करके मेहनत करनी पड़ती है ग्राउंड पे और ये फिजिकली डिमांडिंग स्पोर्ट है तो इंजरी काफी कॉमन है। हमारी ना और अगर हो तो उनको जल्दी से जल्दी फिट करके ग्राउंड पे कैसे लेके आए। तो ये इसके लिए हमारा एक स्पोर्ट्स साइंस टीम है जो कि खासकर जमशेदपुर में, काफी हिंदुस्तान में उसमें से एक जमशेदपुर में सेंटर है। उस एक को बाहर किस लेवल का फुटबॉलर, ज्यादातर ये यूरोप में होता है क्योंकि यूरोपियन फुटबॉल अपने आप में बहुत ही इवॉल्व है और हम चाहते हैं कि उसी को देखे और वो अपने एक सेल्फ बिलीफ भी बनाए कि आपको भी इस स्तर पे जाके खेलना है। ISL में भी काफी प्लेयर है, इनफैक्ट टीम में ओवरऑल 8 प्लेयर है जो हमारे यूथ सिस्टम से निकले हैं। तो कोशिश यही है कि हम यूथ को प्रमोट करें, यूथ को एनकरेज करें और उनको बेहतरीन से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट है।
0: हॉकी भारत के दिल में बसती है और जमशेदपुर में नवल टाटा हॉकी अकादमी ने जमीनी स्तर पर काम करके इस खेल को नई ऊर्जा दी है। विशेषकर झारखंड के सुदूर और ग्रामीण इलाकों से आदिवासी प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने में

0: अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी के बारे में बता रहे हैं नवल टाटा हॉकी अकादमी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुरमीत सिंह राव।
1: हमारे दो बच्चे एट प्रेजेंट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पोडियम फिनिश कर चुके हैं, वो भी गोल्ड एशिया कप, और उसी के साथ में एक बच्चा हमारा हाईएस्ट स्कोरर का परफॉर्मेंस उठाता है, तो ये एक हमारा एक एग्जाम्पल सेट होता है। आशीष तानीपुरती जिसने हैट्रिक भी मारी है सेमीफाइनल्स और फाइनल्स दोनों मैचेस में, और उसी के साथ में उसने एक एग्जाम्पल सेट करता है हमारी एकेडमी किस लेवल पे काम कर रही है।
0: योजनाएं भारतीय हॉकी के सुनहरे दौर को वापस लाने की है।
1: हमारे पास एट प्रेजेंट कुछ 54 ग्रासरूट सेंटर्स हैं टोटल सिनी और टाटा स्टील फाउंडेशन के मिला के, जिसमें अराउंड 4000 बच्चे ट्रेन होते हैं। ये एज ग्रुप है 8 साल से 12 साल के बीच में। इसी से बच्चे कुछ सिलेक्ट होके आते हैं रीजनल डेवलपमेंट सेंटर, जहां पे उनको थोड़ा अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है और टर्फ का एक्सपीरियंस मिलता है। इस आरडी
0: दौड़ते खिलाड़ी सिर्फ पदक नहीं जीतते, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के दीप जलाते हैं। एक शिष्य मृत्यु में उतरना पड़ता है। प्रगति, विज्ञान, खेल, संस्कृति और कला के इन तमाम रंगों को अपने भीतर समेटे ये शहर पिछले 40-50 वर्षों में कैसे बदला, इसकी सबसे खूबसूरत और प्रामाणिक झलक, और विश्व के 40 देशों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके वयोवृद्ध प्रबुद्ध नागरिक प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रेश्वर खां की बातों से, जो इस शहर को मिनी भारत का सबसे सुंदर विजन मानते हैं।
2: जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो आंखों के जोर था जब सायरन से पूरा शहर अपने कक्षी या विष्णुपुर के बाजारों में थके हारे कर्मचारी एक कप चाय पर दुनिया जहान की बातें करते थे। जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी थी लेकिन आत्मीयता बहुत गहरी थी। शहर का रूप रंग बदला है लेकिन इसकी आत्मीयता का जो कोर है, जो अंतःस्थल है, वो आज भी वैसा ही महक रहा है, चमक रहा है। और आगे बढ़कर दफ्तर जाने वाला एक एग्जीक्यूटिव शाम को सरहुल या टूसू के अखाड़े में मानदर की थाप पर थिरकता हुआ मिल जाएगा। यहाँ का कॉरपोरेट कल्चर लोक संस्कृति को दबाता नहीं बल्कि उसे स्पॉन्सर करता है, उसे आगे बढ़ाता है। अब टाटा मोटर या टाटा स्टील अपने परिसरों को एक आम नागरिक को लगता है कि उसकी पहचान एक ही कैनवास पर बिना किसी टकराव के सह अस्तित्व में रहते हैं। हमारी जड़ें मजबूत है, इसलिए चकाचौंध की इस दुनिया में इस आने कभी भी हमें हिलाया नहीं। जमशेदपुर कारीगरी का, दिमागी काम का और हृदय के आंतरिक भावनाओं का अनोखा त्रिवेणी और संगम है।
0: काली माटी से जमशेदपुर और टाटा नगर तक, जंगलों से विज्ञान तक, इस्पात से इंसानियत तक, ये केवल एक शहर की कहानी नहीं, ये आधुनिक भारत की कहानी है। पिघलते लोहे से लिखी जिसने आत्मनिर्भरता की नई इबारत, जहाँ की माटी में बसता है एक मुस्कुराता हुआ लघु भारत। प्रगति की रफ्तार में भी जिसने अपनी जड़ों को संभाला है, वो जमशेदपुर आज पूरे राष्ट्र की आंखों का उजाला है। जमशेदपुर जहाँ कारखानों की चिमनियों के साथ सपने भी उड़ते हैं, जमले अर्थ केवल प्रगति नहीं बल्कि मानवता भी है। जमशेदपुर एक शहर नहीं, एक विचार है, एक सपना है, और उस सपने का नाम है मिनी भारत। उद्योग, विज्ञान, खेल, संस्कृति, शिक्षा और पर्यावरण का ये अनूठा सह अस्तित्व पूरे देश के लिए एक महान प्रेरणा है। तरक्की की ऊंचाइयों को छूते हुए भी अपनी माटी को चूमे रखना ही जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान है। इसी जोहार और शुभकामना के साथ कि इस शहर की ऊर्जा पूरे हिंदुस्तान को यूं ही रोशन करती रहे, जोहार जमशेदपुर। जो

0: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रूपक इस्पात संस्कृत की बहुरंगी पहचान, आलेख शाहिद अनवर, वाचन स्वर तासीर शाहिद, प्रस्तुतकर्ता राजीव रंजन तिवारी और संयोजन था राजेश कुमार राय का। जमशेदपुर केंद्र के द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: ये आकाशवाणी इंदौर है। शास्त्रीय संगीत लीजिए, इस कार्यक्रम में सुनिए अब्दुल नौशाद खान का क्लेरिनेट वादन, राग बागेश्री।

0: अभी आप सुन रहे थे अब्दुल सलात खान का क्लेरिनेट पर बजाया राग बागेश्री, और इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त तो होता है। ये आकाशवाणी इंदौर है, समाचार अब हम दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों को सुदृढ़ कर व्यापक बनाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बन तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाकर अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्य समिति बनाई गई है, जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं,
2: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमरीका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले 1 महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और